0: and sports will be very limited for that child. It takes a very strong mother to walk out of those offices. If he wants to be a tennis player, he'll be a tennis player.
1: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill. Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
2: वेदर के हालचाल जान लेते हैं. 17 डिग्रीज आज का मैक्सिमम टेम्परेचर रहने वाला है, 10 डिग्रीज आज का मिनिमम टेम्परेचर रहेगा. काफी खूबसूरत दिन है आज, 0% चांस है बारिश के, लेकिन आज का सनसेट होगा 6:11 पे.

0: with Ketan.
1: Kia ora, namaste, sat sri akaal, assalamu alaikum, bula, aapka swagat karte hain aaj ke is khoobsurat din ke khoobsurat show mein, naya hafta leke aa chuka hoon main Ketan. Well, yes, main hoon abhi se leke 3 baje tak bahut sari baatein karni hai, bahut sari gapshe karni hai, ek se badhkar ek topic leke aane hain taki aapko bas baithe baithe sari khabrein mil jaye. Yani ki aapko kya karna hai, aapko bas hame sunna hai. From now until 7, I know, पहले भी आपने सुना होगा तो अभी तो हाल फिलहाल आप लंच बॉक्स शो सुनेंगे, उसके बाद कॉफी ब्रेक, और उसके बाद कॉफी ब्रेक के बाद उसके बाद आप ड्राइव शो में रुजबे का भी साथ सुनेंगे. यू माइट सी हिम टुडे एज वेल, लाइक बिफोर इन द कॉफी ब्रेक एज वेल, बट अगेन डिपेंड्स ऑन हिम वेदर ही कैन कम ऑन टाइम और नॉट. बट अभी के लिए आप मेरा इन शो एंजॉय करिए. बहुत सारी मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं. अभी आपका काम क्या है, आप मुझे मैसेजेस भेजिए रिगार्डिंग होम सिक रेमेडीज, या फिर आप मुझे बता सकते हैं वीकेंड में आपने क्या क्या किया, लाइक यू नो हाउ वाज योर वीकेंड. डू लेट मी नो, हैव यू बीन आउटसाइड समवेयर आउट ऑफ योर होम, आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, हैव यू बीन, डिड यू लर्न एनीथिंग ऑन AIs, या फिर अभी हॉट टॉपिक चल रहा है आईफोन्स का, बिकॉज द थिंग इज द कॉम्पिटिशन इज लाइक वेरी फनी, यू नो, जैसे इन्होंने अनाउंस किया है दैट वी आर कमिंग विद द दिस थिंग, और उसी के बाद सारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं सैमसंग शायमी दे स्टार्टेड कमिंग विद द फोल्ड वाले ऑप्शंस. बट यस, बताना मुझे 5599 पे कैसा लगा आपको, एंड ऑफ कोर्स हाउ वाज योर वीकेंड.
0: बचाओ क्या,

ये रहा मैसेज होम सिक रेमेडीज के सेगमेंट के लिए. वैसे उन्होंने ये भी बोला है कि हे केतन हाउ आर यू, I am listening to your show from Papa Totoy, your neighbor. I know you also live there. Oh, नहीं बताना था. Just kidding. आप क्या, मैं खुद ही बता देता हूँ यहाँ पे कि हाँ मैं वहाँ पे रहता हूँ. So yeah, साल डेढ़ साल हो गया हमने वहाँ पे shift हुए. बहुत बढ़िया लगता है मुझे जगह यार, very convenient. और जहाँ पे भी जाना है, especially मेरे parents यहाँ पे हैं तो उनके लिए इतना convenience हो गया. Not just mine, but मेरे जब in-laws आए थे उनके लिए भी इतना convenience हो गया. Because अब देखिए, नई जगह है, नए लोग हैं, और सबसे बड़ी बात है लैंग्वेज बैरियर. बट इन पापा टोटो यू डोंट फील द सेम. वहाँ पे आपको अपने लोग ही ज़्यादा मिलते हैं, अपनी कम्युनिटी के लोग. एंड सबसे खास बात, घूमने फिरने जाना हो, बाय चांस कहीं भटक जाओ तो एटलीस्ट यू कैन आस्क समवन, यू कैन टॉक टू विदाउट नोइंग द लैंग्वेज. आई मीन अगर आपको उनकी भाषा नहीं आती, ऐसा यहाँ पे नहीं है. यू नो, अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती है तो भी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स हिंदी हो गया, पंजाबी हो गया, या फिर फीजी इंडियन लैंग्वेज होती है वो हो गया, कोई भी लैंग्वेज वहाँ पे मिल ही जाते हैं. सो या आई लव द प्लेस. बट ये अभी का जो इन्होंने कहा था, वो कह था कि हे केतन हाउ आर यू, लिसनिंग टू यू फ्रॉम पापा टोटो योर नेबर. एंड बट यस, माय वीकेंड वाज क्वाइट लेजी टाइम. बट यस, एज यू ऑलवेज मेंशन अबाउट द एआई थिंग, आई एक्चुअली वेंट इनसाइड एंड डिग इनटू इट, एंड आई एम वेरी फैसिनेट अबाउट हाउ द एआई इज चेंजिंग. इट हैज बीन लवली बट स्कैरी एज वेल. But finally, I know that this is what the future gonna be. So we definitely have no option, and we can't avoid this. That is so true, yeah. That is so true. And this is what I always say ki aapko definitely ye cheez karni chahiye. But thank you, yaar, aapne ye cheez samjhi and you started doing it. So yeah, your actual message says yesterday I had a tiny leaking tap in my kitchen flat. I called a local number and he quoted me around $180 call out fee just to come and take a look. Back home you call a local number or electrician. He showed up in 15 minutes, fixes the issue, chat over a cup of tea, and charges almost nothing. Here in Auckland, everyone told me to go to this shop. I obviously cannot mention the name, but ek warehouse hai jo ye sari cheeze rakhta hai. Buy a wrench and watch YouTube tutorials. I spent 3 hours trying to fix it myself, ended up completely flooding the kitchen floor and stood there drenched in cold water. This extreme DIY culture, where you have to do every single repair yourself, feels so overwhelming and lonely. How do we deal with the tradie price shock in New Zealand? Vikram bhai, sabse pehle thank you aapke message ke liye. But yes, ye baat to hai yaar, yahan pe expensive itni sari cheeze hain that you feel like yaar kya kare, and you end up learning yourself and you end up doing your own thing. But obviously not every time you're gonna you will be able to fix it nicely. मतलब ऐसा नहीं होता है कि आप YouTube पे अवेलेबल है तो कुछ भी हो जाएगा. But I'm pretty sure यहाँ पे best prices वाले भी होंगे. You know, it's just the matter of that you know the people and all. But yes, हमारी आदत पता क्या है, एक फ़ोन घुमाओ, अब बैक होम की बात कर रहा हूँ, एक फ़ोन घुमाओ, प्लम्बर भैया 10 मिनट में अंकल वाली स्टाइल में आते हैं एंड नल ठीक करके, और हमारे साथ थोड़ा चाय वाय भी पीते हैं, मोहल्ले की बातें भी हो जाती है. बट यहाँ ये सब कुछ नहीं होता, वो आते अपने काम करते हैं और चले जाते हैं. बट यस, दैट इज़ नॉट द मेन इंटेंशन. मेन इंटेंशन इज़ कि भाई तुम आओ, इतना एक्सपेंसिव क्यों, राइट? वेल, ये जो होम सिक रेमेडीज़ है, ये है

0: हर घर की कहानी DIY YouTube देखकर मत करो, अपने देसी दोस्तों या फिर फ्लैटमेट्स की एक हैंडीमैन स्क्वाड बनाओ, यानी कि जस्ट अंडरस्टैंड ईच अदर्स एंड क्योंकि ऑब्वियसली कहीं मेरे को लगता है कि हर एक ग्रुप में कोई ना कोई तो होता ही है जो कुछ नॉलेज रखता है इन सारी चीज़ों में. किसी दोस्त के पास टूल्स होते हैं, किसी को वायरिंग की समझ होती है और किसी को कुकिंग आती है. जब भी घर में कोई छोटा मोटा रिपेयर हो दोस्तों को बुलाओ, और या फिर सबसे बेस्ट बताऊँ मतलब या फिर नहीं, आप दोस्तों को बुलाओ, रो ऐप शुरू करो, हम रेडियो को फुल वॉल्यूम पर चलाओ और उन्हें मस्त घर के खाने या चाय पिलाओ और मिलकर काम निपटाओ. पैसा भी बचेगा और वही पुरानी मोहल्ले वाली हेल्प जो आप मिस करते हैं वो चीज़ तो डेफिनेटली हो सकती है, राइट?
1: लंच बॉक्स विद केतन.
2: मुझे पसंद है लड़का. हम
3: लेडीज एंड जेंटलमैन,
1: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पे, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई

0: और anywhere you get your podcast.
1: नया हाइब्रिड ढूंढ रहे हो तो हैवेल ही लो. Right now, Andrew Sims Melukau में brand new Hevel H6 Hybrid drive away सिर्फ 40,990 से. Plus on-road cost, no deposit finance लो. अपनी trade-in के लिए जबरदस्त price पाओ. और discover करो कि क्यों ज्यादा kiwis Hevel choose कर रहे हैं. Stylish, spacious और technology से भरा हुआ. वो भी hybrid efficiency के साथ. आज ही visit करो Andrew Sims JWM Melukau. Hevel Hybrid. More for your money. Terms and conditions apply.
2: Thinking of renovating or extending your home? Greystone Builders specializes in renovations and extensions of kitchen and bathrooms, decks and fences, and offer professional house painting. Licensed builders providing quality work at reasonable prices. Call Greystone Builders on 021-165-9362. That's 021-165-9362 for a free quote. Or visit greystonebuilders.co.nz.
3: MediaWorks Complaints. How can I help?
4: Yeah, hi. You guys made some ads for my local business.
3: Nice.
4: And you talked me into creating this funny character.
3: Great.
4: And now everybody comes into the shop asking for Bobby.
3: Are you?
4: Yes.
3: Are you Bobby the Baker?
4: Yes.
3: What's that thing you do again?
4: Stop it.
3: You bring the mouth.
4: Stop it.
3: I'll bring the pie.
4: Stop it, please.
3: Okay.
4: Yeah, sure. I might have 3 stores now, but Bobby's more famous than me.
3: So what's the problem?
4: My name's Bruce.
5: Advertise with MediaWorks.
3: New Zealand listens to us.
6: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ? बोली, बस मेरा फोकस है.
7: अच्छा,
6: बताओ तुम्हारा फोकस साडा कुछ नहीं.
7: मिसेस सिंह,
8: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने.
9: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू. कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz.
10: It's time to protect your health, and NIB's got your back. For a limited time, get a $200 gift card when you sign up for NIB's hospital policy cover. Offer available after paying for your first 3 months. Eligibility criteria and terms and conditions apply, including the insured person to be over 16 years old. Offer ends 30 November 2026. Future you will thank you for it. Find out more at nib.co.nz.
0: Non-stop Bollywood. Playing Bollywood's biggest hits.
11: Lunchbox with Ketan.
12: Heera ladka hai. Telescope leke dhoondega na to bhi isse better ladka nahi milega tujhe.
11: Hum. Office shout out.
13: ऑफिस शाउटआउट के सेगमेंट में आपका स्वागत है. आप बस बने रहिए, बिकॉज बहुत सारी बातें लेके आनी है. अभी कुछ मैसेजेस आए हैं मुझे ऑफिस शाउटआउट के लिए, उनसे हम पूछेंगे कि एक्चुअली मैंने पूछा था थोड़ी देर पहले, और जस्ट अ रिमाइंडर अगेन, अगर आप भी चाहते हैं मुझे बताना दैट व्हाट यू गाइज आर हैविंग राइट नाउ. आर यू वर्किंग फ्रॉम होम, और यू आर वर्किंग फ्रॉम ऑफिस, और यू वर्किंग इन द गार्डन लाइक सम पीपल डेफिनेटली डू इट. क्योंकि ऑब्वियसली कभी भी लगता है कि यार संडे हुआ है, अच्छे से वीकेंड बीता है, एंड देन सडनली यू आर बैक टू वर्क. तो वो माहौल के लिए थोड़ा वो वही चीज़ करते हैं दैट दे टेक द जॉब एज अ वर्क फ्रॉम होम, एंड देन दे गो आउट एंड दे सेट अप देयर सिस्टम लाइक ऑब्वियसली लैपटॉप एंड ऑल एट द पार्क, एंड देन दे एन्जॉय द मूड एज वेल द एनवायरमेंट. आज एक्चुअली वेदर भी बहुत अच्छा है, तो उस वजह से यू नो मैनी पीपल डज दैट. सो कुछ मैसेजेस मिले हैं, आप भी मुझे भेज सकते हैं. दो मैसेजेस मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ मीनवाइल, बिकॉज आई थिंक एक डुप्लीकेट हो चुका है, एक फिर से रिपीट हो गया, तो ऑफकोर्स दैट इज नो पॉइंट ऑफ रिपीटिंग इट. बट यस, पहला मैसेज तो है आयशा का, वो कहती है एब्सेंट से वर्किंग फ्रॉम ऑफिस, वर्क फ्रॉम ऑफिस, ग्रैब्ड अ चिकन टेरियाकी बोल फॉर लंच, माई फेवरेट कुजीन इज जैपनीज. ये मेरे को ट्राई करना है यार, चिकन टेरियाकी, ये कैसा होता है, मैंने कभी किया नहीं. लाइक आई हर्ड अ लॉट बट आई नेवर ट्राइड इट. विजय कहते हैं मैंगरी से, वर्किंग फ्रॉम होम टुडे, डैड मेड कसावा एंड फिश करी फॉर लंच, माय फेवरेट कुजीन इज फिजियन. अरे नाइस, ये भी मैंने ट्राई तो नहीं किया, मोस्टली खाता नहीं हूँ ना फिश. आई वो जो क्रंची टाइप होता है ना, लाइक यू नो डीप फ्राई वाले, मैंने वो फिर भी ट्राई किए. लाइक आई नेवर ट्राइड द, हाँ टूना फिश मैंने ज़रूर ट्राई किया, बट काफ़ी लोग बोलते हैं टूना फिश डजंट कंसिडर एज प्रॉपर फिश. ये सही है क्या, मुझे बताइए आप. 5599 पे.
0: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: वेलकम बैक, यू आर लिस्टिंग टू लंच बॉक्स। यहाँ पे हम बात करते हैं आज के हिस्ट्री ऑफ न्यूजीलैंड में, यानी कि आज के दिन क्या हुआ था यहाँ पे, उस पे थोड़ी चर्चा करेंगे। वेल, आज के दिन यानी कि 14 सितंबर 1938 की कहानी है, जब न्यूजीलैंड में सोशल सिक्योरिटी एक्ट पास हुआ था। जी हाँ, सोशल सिक्योरिटी एक्ट, ये फर्स्ट लेबर गवर्नमेंट का मेजर वेलफेयर रिफॉर्म था, जिसमें पेंशन्स को इम्प्रूव किया और फैमिलीज अनएम्प्लॉयड और डिसेबल्ड इनवैलिड लोगों के लिए बेनिफिट बढ़ाए। फ्री एट द पॉइंट ऑफ यूज हेल्थ केयर भी यहां पे इंट्रोड्यूस किया गया। इसका मेन एम था कि डिफिकल्ट सिचुएशन में लोगों को गवर्नमेंट सपोर्ट करे, बेसिकली क्रेडल टू ग्रेव वेलफेयर सिस्टम, ये इंट्रोड्यूस उन्होंने किया था ताकि इन ऐसे लोगों को सपोर्ट मिल सके। और इस स्कीम को फंड करने के लिए 5% टैक्स सरचार्ज लगाया गया, ये भी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। सिंपल शब्दों में कहें तो 1938 जब सोशल सिक्योरिटी एक्ट न्यूजीलैंड में मॉडर्न वेलफेयर स्टेट की फाउंडेशन रखी गई।
1: लंच बॉक्स विद केतन,
2: इसके पीछे ना 3-4 लड़कियां पड़ी हुई हैं।
1: इसके पीछे वो दिन जब मोहब्बत खत्म होती थी।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: रिवाइंड सिर्फ रोवा पर। सुनो, आज फिर प्रॉपर्टी एजेंट्स का फोन आया, घर बेचने को कह रहे थे।
1: बेचना तो कभी भी बेच सकते हैं, लेकिन मार्केट में उतना मिलेगा नहीं। डेवलप करना बेहतर लगता है, पर पैसों का डर है।
0: इसीलिए NZPMI से बात कर लो, वो फीजिबिलिटी देखते हैं और प्लानिंग से फंडिंग तक सब संभाल लेते हैं।
2: हर प्रॉपर्टी बेचना जरूरी नहीं, आपकी जमीन की असली वैल्यू उसके डेवलपमेंट में हो सकती है। आज ही NZPMI के पॉल से बात कीजिए। NZPMI, टुगेदर वी बिल्ड सक्सेस। कॉल पॉल ऑन 0800-4NZPMI।
0: The kids depend on us for everything. Meals, rides, band-aids, bedtime stories. But who do we depend on?
3: Hi, I'm Nitesh Hira from Assure One. School holidays remind us how much our families rely on us. My job is making sure reliance never becomes a risk. Helping you understand your options so your family is covered whatever happens. Call Assure One on 0800-77-HIRA or visit assureone.co.nz. North and Vale Advisory Limited. Trading as Assure One is a licensed financial advice provider.
4: Great news. Flu vaccinations are now free for all children aged 6 months to under 5 years. It's not too late to help protect your little ones from serious illness this flu season. So book now with your healthcare provider or visit bookmyvaccine.nz.
5: Lunchbox with Ketan.
6: ऐसा बजाऊंगा ना कि तेरे कानों में रोज मेरी आवाज गूंजेगी.
7: चटनी शॉट्स. Welcome back. You are listening to Lunchbox. ये वैसे एक नई खबर आई है. Women in hunting and fishing. चटनी शॉट्स में यही मैं पढ़ने वाला हूँ. रिपोर्ट्स के मुताबिक दो वुमेन के बारे में है जो और वुमेन को हंटिंग और फिशिंग जैसे आउटडोर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए एंकरेज कर रही है. वेल, उनका मेन गोल है कि वुमेन को कॉन्फिडेंस और प्रैक्टिकल स्किल्स मिले. हंटिंग और फिशिंग को ट्रेडिशनली मेल डोमिनेटेड एक्टिविटीज माना जाता है, जाता आ रहा है. ये इनिशिएटिव वुमेन को आउटडोर में इंडिपेंडेंट, कंफर्टेबल और कनेक्टेड फील करने में हेल्प करता है. और सिंपल मैसेज है उनका यार, आउटडोर एंड आउटडोर एडवेंचर जो है, जो वो सिर्फ मेन के लिए ही नहीं, वुमेन भी एंजॉय कर सकती है. सो या, इफ एनी वुमेन आउट देयर वॉन्ट्स टू परस्यू समथिंग लाइक दिस, वॉन्ट्स टू लर्न समथिंग लाइक दिस, गो फॉर इट. या, यू कैन डू इट.
5: Lock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800-4-NZPMI.

0: हुए ब्रांच भी है।
1: Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. इधर उधर जाने से बचना। Call करो 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: वेदर की हालचाल, आज 17 डिग्रीज मैक्सिमम टेम्परेचर रहने वाला है, 10 डिग्रीज आज का मिनिमम टेम्परेचर रहने वाला है। आज बारिश नहीं है, लेकिन सनसेट होगा 6:11 पे, यानी कि बहुत ही खूबसूरत दिन है आज ओवरऑल।
0: लंच बॉक्स विद केतन,
2: ऐसा बजाऊंगा ना कि तेरे कानों में रोज मेरी आवाज गूंजेगी।
0: लंच के मंच पे
1: Kiran, namaste, welcome back. You are listening to Lunchbox. Thank you so much for keep yourself tuned in for the Lunchbox show. आप 104.2 FM के जरिए मुझे सुनते हैं, and ये साथ में आप Roa app के जरिए भी सुनते हैं। Roa app यार डाउनलोड कर लीजिए अभी, प्ले स्टोर ऐप स्टोर जहां से भी आपका मन हो वहां से डाउनलोड कर लीजिए। मन इन द सेंस, मन वैसा नहीं कि भाई आपका आईफोन है और आप है ना वहां पे चाहते हैं कि भाई मैं प्ले स्टोर से करूं, तो ऐसा नहीं होता है। बट यस, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम योर जो भी स्टोर है आपके फ़ोन में, और सुनिए हमें कंप्लीटली फ्री ओवर देयर, एज लॉन्ग एज ऑफकोर्स इंटरनेट है, और इंटरनेट की भी कोई टेंशन नहीं है, बिकॉज आप एक स्टोरी जो डालते हैं उसमें जितना डेटा यूज होता है कोई और स्टोरी, तो उसमें 1 घंटे तक आप हमें सुन सकते हैं। मतलब कहें तो ना के बराबर ही पैसा, मतलब इतना है नहीं, लाइक लिटरली यू नो, यू आई थिंक उससे ज़्यादा तो आप स्क्रॉल करने में डाल देते होंगे। पर ये साहब बने रहिए, बहुत सारी बातें करनी है इस आर में आपके लिए, एक से बढ़कर एक कंटेंट है। आपको लास्ट आर में मैंने हिस्ट्री ऑफ न्यूजीलैंड में बताया था कि कैसे इनिशिएटिव जो है वो शुरू हुआ था, उससे रिलेटेड कुछ और भी बातें करेंगे इस आर में, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप बस बने रहिए, सुनते रहिए लंच बॉक्स शो अनटिल 3। जी हाँ, लेटेस्ट न्यूज़ के साथ साथ कुछ बॉलीवुड की खबर भी मैं लेके आऊंगा इस आर में।
0: बचाओ क्या,

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स। अभी थोड़ी देर में आपके लिए लंच टाइम रेंट लाइन की लिए कॉल्स खुल जाएगी, तो आप मुझे कॉल करेंगे। काफी टाइम का किसी से बात नहीं की, तो यस लेट्स ट्राई दैट टुडे। पर यस एक मैसेज है, ये मैं पढ़ लेता हूँ यहाँ पे। इट्स वेरी नॉर्मल टू फील लो समटाइम्स, इट्स वेरी नॉर्मल टू फील लो समटाइम्स, जस्ट लाइक द वेदर चेंजेस। पे अटेंशन टू योर फीलिंग्स, रीच इन एंड चेक हाउ यू आर डूइंग, रीच आउट एंड टॉक टू ट्रस्टेड प्रोफेशनल। सपोर्ट इज अवेलेबल एट एशियन फैमिली सर्विसेज, कॉल Asian Helpline on 0800-862-342 for free and confidential mental health support.

0: हम फीजी भजन्स, दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फीजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फीजी भजन्स।
1: Reliance Ventilation System.
2: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
1: Moisture और ventilation का problem लगता है।
2: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है।
1: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं।
3: Contact Reliance Ventilation System on 0800-787-111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.
4: It's a client who tried DIY. It did not work. It's that five-minute job still going 5 weeks later. It's a supplier. Everything is out of stock. There's a lot on the line starting a business. To see how ANZ can help, search ANZ How To. Eligibility criteria, T's and C's apply.
5: TradeDepot.co.nz. Spend $30 at Trade Depot and get fast free delivery anywhere in Auckland. Vogue dishwasher, just $299. Iceland fridge freezer, just $299. My Dia washing machine, just $299. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast free delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
6: Okay, we've got a handful of coffee beans, hot water, full fat milk, 3 packets of sugar, oh, and a nice little chalky fish on top. That sound like you?
7: That does sound like me. But wait, how much is that? You know what? I'm actually good. I'm just going to make my own fancy flat white with stuff from Pack and Save.
6: Oh, well, that's sick, man.
7: Close. It's Stick Man. Make your own takeaways for less at Pack and Save. Some assembly required.
6: Assembly? Oh, we used to have that at school.
8: हैवान इंसान नहीं होता, पर हर इंसान हैवान बन सकता है।
9: अंधा होने से बुरा पता है क्या होता है? बेवकूफ होना।
8: हैवान स्टारिंग अक्षय कुमार, सैफ अली खान एंड बोमन ईरानी।
10: अपने बदले की आग में और कितने मासूमों की जान लोगे तुम?
9: ये आखिरी
8: हैवान नाउ शोइंग इन सिनेमास। डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फोरम फिल्म्स। रेटिंग TBC.
11: Get ready, Auckland City. This Thursday, be first through the doors at Nolene and Queen Street for grand opening deals too good to miss. Save big on a huge range of tech. Enjoy giveaways, a live DJ and more at Nolene and Queen Street. T's and C's apply.
12: Lunchbox with Ketan.
9: Mujhe pasand hai ladka.
12: Hum. Lunchtime Rant Line.
13: लंच टाइम रेंट लाइन के लिए आपका स्वागत है। इस टॉपिक पे हम बात करते हैं यहाँ पे बेसिकली कि भाई कुछ अगर ऐसा हुआ है आपके साथ जो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। आज फ़ोन ट्राई करते हैं, लाइक यू पिक अप द फोन एंड मुझे कॉल करिए 0800-004-866 पे और शेयर करिए थॉट्स। एक मैसेज तो आया है जिसमें मैं पढ़ूंगा थोड़ी देर में, बट यस फील फ्री टू डू सो। 0800-004-866 आज कॉल पे बात होगी किसी से और बताइए कुछ अगर ऐसा हुआ है आपके साथ जो सचमुच बहुत ज़्यादा इरिटेट किया हो आपको। बट पूजा का मैसेज है, तब तक पढ़ लेते हैं। कहती हैं, हाय केतन, आई एम पूजा फ्रॉम बॉटनी। माई रेंट इज अबाउट पीपल हु टेक योर पार्किंग स्पॉट वाइल यू आर क्लियरली वेटिंग फॉर इट। I was waiting for my indicator on with my indicator on and someone just drove in and took the spot. Honestly, so annoying. Definitely, yaar, bahut hi zyada annoying lagta hai. Like, you know, you prepared to get there and you've been waiting for so long and suddenly koi aur aata hai. Like, abhi hume na yahan gaye the hum, matlab not of course se parking se related nahi hai, but it is something you know, other kind of relatable but not exactly the parking. तो हम basically एक queue में थे, we were waiting for that one food जिसे हमें taste करना था. So she definitely asked us to be in the line. So we were there and we literally waited. Me, my wife, my family, they were waiting over there for literally, you know, 5 to 6 minutes. And जैसे ही उसने वहाँ पर serve किया and then suddenly उधर से कोई बंदा आया और 3-4 cups लेके निकल लिया. And I'm like, not just me actually, वहाँ पे ना और भी लोग थे तो वो सब बहुत ही ज़्यादा इरीटेट हो रहे थे कि यार ये क्या था, ये क्या था। बट ऑब्वियसली कुछ कर नहीं पाया यार, मतलब क्या करें क्या यहाँ पे, तो ऑब्वियसली अंडरस्टैंडिंग है या फिर समवन फ्रॉम देन ऑल्सो नीड टू क्विकली रिस्पॉन्स, ये हो सकता है। बट पूजा जी, अगर आपने जो बात बोली उसमें रिस्पॉन्स में अगर

0: बताऊं तो दैट्स डेफिनेटली फ्रस्ट्रेटिंग इफ समवन इज ऑलरेडी वेटिंग फॉर देयर यू नो इंडिकेटर इज ऑन. बेसिक कर्सी होनी चाहिए यार इज टू लेट देम हैव द स्पॉट. पार्किंग इज इन ऑकलैंड इज वेरी हार्ड यार. मतलब ये थोड़ा सा सोचना तो चाहिए. बट आई थिंक इट इज गेटिंग बेटर. आई वुड से आई डोंट नो इफ इट इज नॉट देन बताइए मेरे को अगर इज देयर एनी बेटर सोल्यूशन देन दिस. आप मुझे बताइए क्या एग्जैक्टली होना चाहिए यहाँ पे अगर इन केस अगर ऐसी होती तो. एक बार तो शायद मैं बहस तो नहीं बट उनको जाके मैंने बोला कि एक्सक्यूज मी व्हाट लैंग्वेज डू यू अंडरस्टैंड. तो लकी उसको हिंदी, तो मैंने हिंदी में बोला उसको कि भाई क्या तेरे को क्या दिखता नहीं है. आई वॉज वेटिंग फॉर हियर. तो बट उसने पोलाइटली बोला कि ओ आई एम सो सॉरी ब्रो, आई एम सो सॉरी, डू यू वॉन्ट मी टू रिमूव इट. आई लाइक इट्स ओके, आई गेट इट. बट हाँ लकीली मुझे थोड़ी सी आगे दूसरी पार्किंग मिल गई थी, सो आई सेड यप दैट्स फाइन. बट हाँ थोड़ा सा अवेयरनेस तो होनी चाहिए.
1: लंच के मंच पे टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स.

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: वेलकम बैक। चलिए फटाफट से आपको पॉडकास्ट के बारे में बताते हैं, उसके बाद बॉलीवुड की खबर भी आपको बतानी है। वेल, सबसे पहले बात करते हैं सक्सेस। सक्सेस का मतलब क्या है एक्चुअली? आई नो आप वही बोल रहे हैं कि भाई सक्सेस का मतलब ये कि आपके पास पैसा हो, शोहरत हो, गुड फैमिली टाइम हो, ये सारी चीजें, राइट? बट एक्चुअली इट माइट बी समथिंग एल्स एज वेल। क्या होगा वो आपको जरूर पता पड़ेगा इस पॉडकास्ट में, इस टॉपिक पे जहां पे विजय एंड पूजा ने बात की है इस बारे में। सोसाइटी सक्सेस को क्या बोलती है? यूजली होम लोन्स, मैरिज हाउस और फाइनेंशियल सेटलमेंट होना उससे मेजर करती है। शो लिसनर्स को डिफरेंट व्यू एक्सप्लोर करने को देती है। सेटल्ड होने का क्या मतलब है? जी हाँ, तो ये बहुत ही बड़े टॉपिक है जहां पे ब्रेकफास्ट शो में विजय पूजा ने बात की है। अनफिल्टर्ड टॉपिक है जहां पे विल एंड इनहेरिटेंस इन न्यूजीलैंड, यानी कि सैंडी न्यूज में डिस्कस करते हैं कि अगर कोई विल के बिना मर जाए या उन्हें कुछ हो जाए तो व्हाट विल गोइंग टू हैपन। उनकी प्रॉपर्टी जो है वो कीवी सेवर, ज्वेलरीज या बिजनेस ऑटोमेटिकली पार्टनर को मिले ये जरूरी नहीं है, इस बारे में बात हुई है। तो यस, ये जो पॉडकास्ट है इसको सुनने के लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपल हमें 5599 पे ड्राइव लिख के भेज देना है। और जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको सक्सेस के बारे में बताया था उसे सुनने के लिए आप हमें BF लिखिए और 5599 पे भेज दीजिए। ट्रेंड मेकर्स, डेफिनेटली अबाउट दिस म्यूजिकल पॉडकास्ट, ट्रेंड मेकर्स इज अ वेरी पावरफुल पाव पैक्ड म्यूजिकल जर्नी जहाँ पे हर तरह के गाने एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से और एक यूनिक थीम के साथ जोड़े गए हैं, बनाए गए हैं प्लेलिस्ट ऑफ कोर्स, ताकि आप ड्राइव शो हो या फिर यू नो लॉन्ग ड्राइव हो, किसी भी तरह के आप यू नो इवेंट में यू नो यू गोइंग फॉर अ गुड राइड, तो ये आप सुन सकते हैं। उसके लिए आप हमें बस TM बोले तो ट्रेंड मेकर का इनिशियल है TM, उसे हमें 5599 पे भेज दीजिए ताकि आप तक लिंक पहुंच जाए एंड आप एंजॉय कर सकें ट्रेंड मेकर्स भी।

0: Download Rover to listen Hum 80s Jukebox.
1: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With multiple branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास हैं. Go Bananas Childcare's 12th birthday offer, 6 months completely free, and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो जल्दी join करो और enjoy करो special offers. Call 0800 46 26 26 today. Terms and conditions apply.
2: Thinking of an EV? Think MG. Thinking of fast charging, clever tech, impressive range, and electrifying performance? Think MG. Thinking of safety features like a 360-degree camera or a 10-year warranty? Think MG. If you're thinking of an EV, you know who to think. See your nearest MG dealer today. Terms and conditions apply.
3: It's normal to feel low sometimes. Just like how the weather changes, so can our moods. Pay attention to your feelings. Reach in and check how you're doing. Reach out and talk to someone you trust. If you need to talk with a trusted professional, Asian Family Services is here to support. Call the Asian Helpline on 0800-862-342 for free, confidential support. If you or someone you know is in immediate danger, please call 111 or emergency services.
4: Lunchbox with Ketan.
5: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
4: इसके पीछे?
6: हम।
4: Lunch के मंच पे।
7: Welcome back. You are listening to Lunchbox. Well, फटाफट से अब आपको Bollywood की खबर बता देते हैं। Bollywood खबर ये है that हनुमान अंश इतना ज्यादा वायरल हो रही है उसकी खबर। You know, just 2 crore में बनी है और 200 के पार हो चुके हैं कल के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में। जी हाँ, सच अ ग्रेट थिंग, राइट? वेल यस, हनुमान अंश इंडिया की 2026 ऑस्कर एंट्री के लिए सबमिट नहीं हो पाई। ये थोड़ा ड्रॉबैक हुआ है, विच इज नॉट गुड, ऑफ कोर्स गुड, नॉट अ गुड न्यूज, बट प्रोड्यूसर नम्रता सिंह के अकॉर्डिंग सबमिशन की डेडलाइन जो थी वो 7 सितंबर की थी, लेकिन टीम को डेडलाइन का पता ही नहीं था और उन्होंने कहा कि टीम बहुत छोटी है और साइमल्टेनियसली तेलुगु डबिंग, ओवरसीज रिलीज, सेंसर प्रोसेस और एक्सेसिबिलिटी वर्क हैंडल कर रही थी। फिल्म के तेलुगु वर्जन त्रिविक्रम श्रीनिवास के इन्वॉल्वमेंट के साथ बनाया गया है। टीम फिल्म के साथ एक गेम और कॉमिक बुक भी डेवलप करने जा रही है, जो कि बहुत ही सही चीज़ है। वेल यस, ये थोड़ा ऑब्वियसली होता है व्हेन यू डोंट हैव अ, आई वोंट से गुड टीम, बट व्हेन यू डोंट हैव अ गुड नंबर ऑफ टीम, बिकॉज क्या होता है कि हर एक इंसान बहुत सारे काम करता है, सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट जहाँ पे आप ऑफकोर्स अप्रोच नहीं कर पाए होंगे एंड यू मस्ट हैव मिस्ड इट। बट सिंपल शब्दों में अगर कहूँ तो फिल्म के ऑस्कर रेस से बाहर होने की वजह फिल्म की क्वालिटी नहीं बल्कि ऑस्कर सबमिशन डेडलाइन मिस होना है। सो आई वुड हाईली से कि भाई डोंट जज, लाइक यू नो, डोंट थिंक कि भाई मूवी अच्छी नहीं इस वजह सबमिशन नहीं हो पाई, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना। एंड प्रोड्यूसर ने ऑनेस्टली एडमिट किया है कि स्मॉल टीम और मल्टीपल रिलीज रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के चक्कर में सबमिशन नहीं हो सके, यानी कि उन्हें पता ही नहीं था कि ये डेडलाइन होती है। बट सच लुक एट इट यार, लाइक मतलब 2 crore मनी जहाँ पे स्टार्टिंग में इनका जो कमाने का तो तरीका था वो सब था, बहुत ही स्लो से शुरुआत हुआ, बट यूजली लोगों का माउंटेन्स जो है वो नीचे की तरफ जाता है, इनका डायरेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, विच इज़ अमेजिंग यार। तो ओवरऑल अगर देखें कल तक तो यही था कि 200 मैंने प्लस देखा था, आज के तारीख में देखते हैं इनका कलेक्शन क्या हुआ है। मिर्ज़ापुर की अगर बात करें तो मिर्ज़ापुर ऑन 176 यानी 200 crore वो भी हो चुकी है वर्ल्ड वाइड। उसके साथ हनुमान अंश कहाँ है ये यार, इतने एक तो ना इतनी मूवीज रिलीज होती है। आवर अपन 2 ऑल्सो इज 146 रुक चुकी है अब आई थिंक, लेट मी जस्ट टाइप एंड सी कि अगर आज, हाँ मिल गया। सो 215 सिर्फ इंडिया से, यानी कि वर्ल्ड वाइड आई फील लाइक यू नो आई डोंट नो कौन कौन सी कंट्री में रिलीज हुई, बट 230-240 तक तो होना ही चाहिए इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट डेफिनेटली थिएटर में मैंने सुना शायद यहाँ पे भी रिलीज होने वाली है, ऐसा कुछ भी है। सो अगर किसी को पता है कि कब और कहाँ रिलीज होनी आप मुझे बताइए ताकि मैं यहाँ पे बता सकूँ, बोल सकूँ लोगों को, प्लीज़ अगर जब भी मौका मिले प्लीज़ जाइए एंजॉय करिए, बिकॉज इस तरह की मूवी सच में डिजर्व करती है टू गेट रिलीज ऑन बड़े पर्दे। बट यस, लेट्स सी कौन कौन सी फिल्में जो हैं अब रिलीज होने वाली है इन कुछ दिनों में, उस पे भी थोड़ी नजर डाल देते हैं। तो यस, आज 14 है तो इस 18 को 5, 6, 7 अरे पाप इतनी मूवी रिलीज होने वाली है। ओम का हरी, लव स्टोरी 3, ये डिजिटली रिलीज हो, लाइक यू डोंट नीड टू गो टू द थिएटर। उसके बाद दायरा, लव लॉटरी, भारत देश है मेरा और वाइब 18 को रिलीज हो रही है। उसके नेक्स्ट वीकेंड पे द पैराडाइज, महाकाव्य श्री रामायण कथा श्री राम की, ये रिलीज होने वाली है। वान ही होगा, डबल वी आ रहा है। उसके बाद मैजिकल वॉलेट, काफी कुछ रिलीज होने वाले। दृश्यम 2 अक्टूबर को रिलीज होना है, 2 अक्टूबर को। द कंक्लूजन, पता नहीं ये आखिरी है, कंक्लूजन लिखा तो है बट आखिरी है नहीं है वो तो पता पड़ेगा जब रिलीज होती है। बट बताइए आप कौन सी फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 5599 इज द नंबर।
4: Lock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800 4NZPMI.

0: Ευκαιρία να βάσκουν, Τζέκη.
1: Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
2: वेलकम बैक। चलिए बात करते हैं वेदर की, जो अभी आने वाले कुछ दिनों में होने वाला है। एक न्यूज़ के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग न्यूजीलैंड में स्प्रिंग वेदर काफी अनप्रेडिक्टेबल रहने वाला है। वेल यस, अनप्रेडिक्टेबल बोले तो कुछ एरियाज में रेन और कोल्ड टेम्परेचर हो सकते हैं। साउथ आइलैंड के हायर एरियाज में स्नोफॉल हो सकती है, वहाँ के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। उसके बाद वेदर क्विकली चेंज भी हो सकता है, यानी कि अभी अगर गर्मी है तो कुछ देर बाद ठंड भी हो सकती है। वेल दिस इज़ नॉट न्यू, एक्चुअली दिस इज़ नथिंग न्यू, ये तो हम वैसे भी महसूस करते ही हैं। एक दिन माइल्ड सनी और नेक्स्ट डे विंटर चिल वैसा। इसलिए स्प्रिंग स्टार्ट होने के बाद भी वार्म क्लोथ्स और रेन गियर हैंडी रखें, अपने बॉक्सेस या परमानेंट यू नो कुछ टाइमली टेम्परेरी में मत रखिएगा। स्टिल कीप इट आउटसाइड एंड यूज दोज, बिकॉज यू डोंट नो व्हेन यू विल हैव टू यूज दोज अगेन। बट ये सिंपल शब्दों में कुछ वेदर की अगर बात करूं तो आज ठीक ठाक है, 16 रहने वाला है। कल थोड़ा और गर्म होगा। वेडनेसडे बैक टू द सेम थिंग। थर्सडे को थोड़ी बारिश भी दिखा रहा है, वहां से ड्रॉप होना शुरू होगा। थर्सडे को थोड़ी ठंड भी लगेगी, थर्सडे एंड सैटरडे को। उसके अलावा थोड़ा नॉर्मल रहेगा, बट लेट्स सी कैसा रहता है। आज तो वैसे कोई बारिश नहीं है, बट होपफुली अगर ये कंटिन्यू रहे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। एनी प्लान फॉर यू गाइज टू गो अराउंड, आप मुझे बताइए 555-99 पे।

0: किरण नमस्ते, वेलकम बैक। यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स। इस आर में बहुत सारी बात करनी, स्पेशली माय फेवरेट स्पोर्ट्स के बारे में। इंडिया जीत चुकी है एशिया कप अगेंस्ट श्रीलंका, उसके बारे में बात होगी। कुछ हल्ला वल्ला भी हुआ है, बट दैट्स वी कांट कंट्रोल, वी कांट डू एनीथिंग विद दैट। बट यस, द मेन थिंग इज स्पोर्ट्स खेल रही है, मजा आ रहा है, जीत रही है, हार रही है, ये सब चलता रहता है। बट उसके अलावा और भी बातें बताऊंगा, लेटेस्ट खबर भी बताऊंगा, और एक और आपको इन्फॉर्मेशन देनी है अबाउट द फीजी कीर्तन रिकॉर्डिंग। जी हाँ, फीजी कीर्तन रिकॉर्डिंग, यानी कि किसी कीर्तन का आप हिस्सा होना चाहते हैं, यू वांट टू रिकॉर्ड समथिंग। सो यस, हियर इज द अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइस। कैसे, कब, मैं बताऊंगा थोड़ी देर में, बट अभी के लिए एंजॉय करें ये बहुत ही खूबसूरत गाना जिसका नाम है सूरमा एंथम, शंकर महादेवन की आवाज में।
1: बचाओ क्या,

0: Lunchbox with Ketan.
1: Heera ladka hai. Telescope leke dhoondega na, to bhi isse bade ladka nahi milega tujhe.
2: वेलकम बैक। चलिए अभी के लेटेस्ट खबर पढ़ लेते हैं क्राइस्टचर्च गोल्फ कोर्स इंसिडेंट के बारे में। क्राइस्टचर्च के हैगली गोल्फ कोर्स में एक गोल्फर पर एक इंडियन फैमिली के साथ रेशियल अब्यूज और फिजिकल असॉल्ट के एलिगेशन लगे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक गोल्फर ने फैमिली के यंग चाइल्ड पर गुस्सा किया, फिर फादर के साथ रेसिस्ट अब्यूज भी किया और एलिजली उसे दो बार पुश भी किया। हैगली गोल्फ कोर्स के प्रेसिडेंट हैमिश गैलोवे ने इंसिडेंट को स्ट्रांगली कंडेम किया और कहा कि क्लब इसे डिवास्टेटिंग मानता है। क्लब के अकॉर्डिंग सस्पेक्ट क्लब मेंबर नहीं लगता और उसकी आइडेंटिटी एस्टैब्लिश्ड करने की कोशिश चल रही है। वैसे पुलिस ने असॉल्ट की रिपोर्ट रिसीव की है और इन्वेस्टिगेशन इज ऑन गोइंग। तो यस, अगर सिंपल शब्दों में कहूं तो गोल्फ कोर्स ने क्लियरली कहा है कि रेसिज्म और वायलेंस उनके डाइवर्स कम्युनिटी के वैल्यूज के बिल्कुल अगेंस्ट है। दिस इज व्हाट पीपल हैव सेड, बट लेट्स सी यार क्या अपडेट आता है। जैसे ही आएगा हम आपको जरूर बताएंगे।
3: कीप काम बिकॉज पंजाबी स्वैग इज ऑन।
4: और कुड़ी दा ना दिल मंगिए ते।

0: It's normal to feel low sometimes. Just like how the weather changes, so can our moods. Pay attention to your feelings. Reach in and check how you're doing. Reach out and talk to someone you trust. If you need to talk with a trusted professional, Asian Family Services is here to support. Call the Asian Helpline on 0800 862 342 for free, confidential support. If you or someone you know is in immediate danger, please call 111 or emergency services.
1: Fuel prices got you feeling? Score 6 cents per litre off every fill with Caltex pumped, plus more on Super Pump Days. Fill up, scan your Caltex app or Kodu card and save instantly. Discount applies up to 50 litres. Caltex pump T's and C's apply. See caltex.co.nz.
2: Naya hybrid dhoond rahe ho? To Havel Hilo. Right now, Andrew Sims Melukao mein brand new Havel H6 hybrid drive away sirf 40,990 se. Plus on-road cost. No deposit finance low. Apni trade-in ke liye zabardast price pao. Aur discover karo ki kyun zyada kiwis Havel choose kar rahe hain. Stylish, spacious aur technology se bhara hua. Wo bhi hybrid efficiency ke saath. Aaj hi visit karo Andrew Sims JWM Melukao. Havel hybrid. More for your money. Terms and conditions apply.
3: Adore your floor for less with Flooring Extra's Affordable Floor Makeover Sale. Save on their best-selling range, including 15% off all Quickstep. Visit your local Flooring Extra showroom today.
4: Flooring Extra. Adore your floor.
5: MediaWorks complaints. How can I help?
6: Yeah. Hello?
5: Hi.
6: Hi. Yeah. Can you guys take a radio jingle out of my brain?
5: Oh, you mean like a jingle extraction? It's our job to put advertising in there.
6: Well, okay. Well, what about something like a brain surgeon?
5: They'll probably just explain how repeat hearing puts things deep in your emotional memory, and I really don't think it's necessary. But yes, if you must, I do have the name of one.
6: Great. Sing it to me.
7: Advertise with
8: MediaWorks.
7: New Zealand listens to us.
9: Bollywood ke sabse bade hit gaane
10: kabhi bhi kahin bhi
11: mast malang jo
10: lunchbox with Ketan
12: iske piche na 3-4 ladkiyan padi hui hain
10: iske piche
9: hum
10: skip your replay.
13: Welcome back. Well, ek message aaya mujhe, request aayi hai. Hey bro, can you play Sapphire 2.0? Definitely bro, definitely. I'll try my best. In do gaano ke baad main aapke liye gaana chalaunga. But aap bas tune in rahiye, sunte rahiye aur keep supporting yaar, keep supporting me. But yes, ek nayi baat leke aaya hu, kaafi interesting hai. Us pe hum charcha karte hain. Topic hai, is your brain at maximum capacity? How to respect your limits and reap benefits? Ye article aaya hai, is pe hum thodi baat karte hain. बट मेरा सवाल है, आप अपने ब्रेन को, एक नॉर्मल ह्यूमन बींग कितना परसेंट अपने ब्रेन को यूज़ करता है? आप मुझे भेजिए 5599 पे, आप विदाउट गूगलिंग यार, थोड़ा बीइंग ऑनेस्ट, हाँ आप ऑनेस्ट रहिएगा और जो आपको लगता है जस्ट सेंड इट, लाइक नो वन गोना जज इट. और आपको उस पर नहीं जाना कि भाई मेरे को सही जवाब ही देना, ऐसा नहीं है. व्हाटएवर यू फील लाइक यू जस्ट टेल मी एंड विदाउट नेम ऑल्सो, इफ यू डोंट वॉन्ट टू मैंशन दैट्स फाइन. बट यस, मेरा सवाल है कि एक नॉर्मल ह्यूमन बींग कितना परसेंट अपना ब्रेन यूज कर सकता है? मतलब जो अपन आविष्कार देख रहे हैं अगल बगल जो भी है, वो उस उतने परसेंटेज का यूज करने के बाद हो रहा है? तो आप मुझे बताइए 5599 पे कि कितना परसेंट हो रहा है यूज, एक करता है बेसिकली, नॉट हो रहा है बट कितना यूज करता है एक नॉर्मल ह्यूमन बींग. बट ये जो आर्टिकल है उसमें है कि अगेन इस न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक मेन पॉइंट ये है कि हमारा ब्रेन जो है अनलिमिटेड स्टोरेज नहीं है. यानी कि जिस तरह की आपकी हार्ड ड्राइव होती है या जिस तरह का आपका जो ये यू नो फोन होता है उसमें आपको पता ही होगा स्पेस स्टोरेज जो होती है वो कितना होता है, वैसा ही हमारा ब्रेन भी होता है. टेक्नोलॉजी और डेली लाइफ की डिमांड्स बहुत ज़्यादा हो जाती है तो मेंटल ओवरलोड और बर्नआउट हो सकता है. जी हाँ, ये काफ़ी चीज़ें होती हैं. साथ में ऑफकोर्स AI ने वर्कलोड हमेशा कम किया है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और डिसीजन की वजह से मेंटल लोड और बढ़ सकता है इस कारण. और अगर सितंबर तक देखें तो न्यूजीलैंड में लोग ऑफन मेंटली टायर्ड फील करते हैं, स्पेशली क्रिसमस समर ब्रेक का वेट करते हुए. ऑथर के सजेशन, एक कॉल आ रहा है, एक मिनट मेरे को कॉल उठा लेते हैं, देन आई विल कंटिन्यू दिस टॉपिक. हेलो
14: हेलो,
13: हाय जय, हाउ आर यू? यू आर ऑन एयर नाउ.
14: नहीं,
13: आपसे
14: वही से बात करना है.
13: अच्छा ठीक है, तो मैं टॉपिक खत्म करके देन आई विल कॉल यू बैक. ओके ओके, परफेक्ट, थैंक यू.

0: चर्चे हैं हमारे, जलवे हैं हमारे. Anyways, we'll just continue the topic. I thought maybe he's calling something to discuss with this one, but no. So yes, author ke suggestion hai ki brain ko bhi regular pause chahiye. Yani ki har time 24 ghante aapko, 24 nahi, matlab whenever you are awake and you think that you're gonna use your brain, maybe us time bhi thoda break lene ki bahut zarurat hai. Aur that's why, you know, एक चीज़ काफ़ी मेरी मतलब वाइफ है या फिर फैमिली काफ़ी हेट करती थी, इनफैक्ट मेरे दोस्त भी हेट करते थे कि क्या तो दिन भर गेम खेलता रहता है. अभी नहीं, पहले, यू नो, अब तो ऑब्वियसली टाइम नहीं मिल रहा है मुझे, बट आई हैव प्लेंटी ऑफ ऐसे बच्चों वाले गेम्स है ना मेरे फ़ोन पे इंस्टॉल्ड है. एंड आई टेल यू व्हाई, वो इसलिए है बिकॉज यार हो सकता है लोगों को बहुत ही वैसा लगता है कि यार क्या है क्या नहीं है, क्या है बच्चों वाले गेम्स खेलता है, कलर फिल करना, गेम्स करना, पोकेमोन वाला, एटसेट्रा एटसेट्रा, प्ले सम, यू नो. बट मैं आपको बताता हूँ, मैं एंटरटेनमेंट के लिए गेम्स नहीं खेलता हूँ. मैं गेम्स खेलता हूँ कि मेरे बॉडी को, लाइक जो मेन ब्रेन है मेरा, वो थोड़ा रिलैक्स रहे. एंड ही, यू नो, क्योंकि उन गेम्स में ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. यू जस्ट प्ले अराउंड, थोड़ा रिलैक्स फील करता है. मेरे लिए, मेरे हिसाब से दोज गेम्स आर स्ट्रेस रिलीफ. जी हाँ, यहाँ पे आप मुझे बताइए 5599 पे किस तरह के गेम्स आप खेलना पसंद करते हैं, ये आप मुझे बताइए. और इज इट एक्चुअली हेल्पिंग यू? मैसेज नहीं, एक्चुअली कॉल करिए मुझे 0800-004-866 पे. कितना वो गेम्स आपके फ़ोन में रहने से यू फील सो स्ट्रेसलेस, यू नो, स्ट्रेस फ्री आपको फील होता है, तो आप मुझे बताइए 5599 पे. सॉरी, कॉल करिए मुझे 0800-004-866 पे, उस पे थोड़ी बात करेंगे यार, किसी से तो बात करनी है आज यार, आज फ़ोन करिए मुझे. बट ये जो टॉपिक है, जो आर्टिकल चल रहा है, उस पर ये भी है कि सिंपल हैबिट्स हेल्प कर सकती है ब्रेक लेना, एक टाइम पर एक टास्क करना, एनर्जी को मॉनिटर करना, और थोड़ा नेचर आउटडोर्स में टाइम स्पेंड करना. बट इसमें एक इंटरेस्टिंग आइडिया पता है क्या है, टी कॉफी ब्रेक को प्रॉपर पॉज और रिचुअल्स बनाओ. सिर्फ स्क्रीन के सामने जल्दी से ड्रिंक मत करो. जी हाँ, यानी कि व्हेन यू हैविंग ड्रिंक और एनीथिंग, टेक अ ब्रेक, टेक, कीप योरसेल्फ अवे फ्रॉम द स्क्रीन. यू, दैट डेफिनेटली गोना हेल्प यू इन लिटिल वे और व्हाटएवर. मैसेज नहीं, कॉल आता तो बहुत बढ़िया था, कॉल तो चलो आ गया, गया, क्या बात है. हेलो, हेलो,
1: आपने एक अच्छा ये टॉपिक है, आपने बहुत अच्छी बात की है.
0: राइट, बताइए किससे बात हो रही है वैसे?
1: मैं राहुल बोल रहा हूँ.
0: हाय राहुल, हाँ जी बताइए.
1: हाँ जी, एक्चुअली क्या है कि हाँ बिल्कुल ब्रेक जरूर लेना चाहिए. और चार्ली चैपलिन की मैं कुछ बात सुन रहा था, आई मीन कहीं पढ़ रहा था, तो चार्ली चैपलिन ने 4-10 चीजें बोली है जो एक वेलबींग के लिए बहुत जरूरी है, अच्छी प्रोग्रेस अपना, मतलब एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और एक ह्यूमन को, मतलब इन चीजों में जरूर रहना चाहिए.
0: राइट,
1: मतलब उसकी वो 10 पूरी बातें याद नहीं, लेकिन मुझे उसकी कुछ जो है बड़ी इंपॉर्टेंट बात अच्छी लगी. पहला उसने बोला कि सनशाइन जरूर लेना चाहिए. कोशिश करके हफ्ते में, हम भूल जाते हैं सारी चीजें, हफ्ते में आपको 2-3 बार जरूर सन में एटलीस्ट 1 घंटा आराम से, आधे घंटे, और कुछ नहीं करना आपको उसमें, सिर्फ कॉफी पीनी है या कुछ पढ़ना है, कोई स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए वहां पर. दूसरा, हफ्ते में बस सोशल होना बहुत जरूरी है, फ्रेंड्स से मिलना, लोगों से बातचीत करना, आउटिंग करना. और खाना पीना तो वैसे उसने डेफिनेटली बोला है कि टाइम से खाना, सोना, बेडिंग में, तो मतलब 10 उसके बड़े सॉलिड पॉइंट थे, मुझे अभी वो पूरे याद नहीं आ रहे, लेकिन एक जो उसका सनशाइन वाली बात है मुझे बड़ी अच्छी लगी.
0: Right.
1: और सोशलाइज करना, तो वो सारी चीजें जरूरी है. मैं ऐसा समझता हूँ क्योंकि ये एज के अकॉर्डिंग भी, जैसे आप बोल रहे हो कि गेम खेलने से, वो क्या होता है कि जैसे अब 50 या 60 ईयर्स का बंदा गेम तो खेलेगा नहीं, वो कुछ और तरीके से अपने आप को इंगेज करेगा.
0: True.
1: समझ रहे हो, अपना माइंड रिलैक्सिंग के लिए वॉक करेगा, वॉक करना बहुत अच्छी चीज है, एक्सरसाइजिंग, ये चीजें
0: जी.
1: तो अगर आप आधा आधा घंटा सुबह शाम, जैसे अक्षय कुमार जी हमेशा बोलते हैं फेसबुक या वीडियोस में आते हैं कि जो बंदा अपने शरीर पे 45 मिनट नहीं दे सकता तो कोई फायदा नहीं है उसका.
0: That's so true,
1: 45 मिनट की वॉक, मतलब वॉक ही कर लो आप. और मैं तो ये बोलूंगा कि आपको ना, जैसे आजकल जैसे ठीक है हर एक बंदा जिम अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है $20 देने पड़ते हैं.
0: Yeah.
1: तो आप वेयर हाउस में आपको डंबल्स मिलते हैं बहुत सारी. मैंने अभी एक्सरसाइजिंग की टेमू से, सरप्राइजिंगली सबको पता टेमू कितना फेमस हुआ है ऑनलाइन शॉपिंग, तो वहां से मैंने चीजें ऑर्डर की अपने लिए, मतलब स्ट्रेचिंग बॉडी करने के लिए, और इतना चीप सामान और इतना अच्छा, बेस्ट.
0: क्या बात है, बट होपफुली वो इतना चीप नहीं हो कि आप 15 किलो का लेके आए और 2 किलो का ही वेट है. ऐसा तो नहीं है ना?
1: नहीं अभी तक तो जो केनू के प्रोडक्ट मुझे लगे वो ठीक लगे, अभी तक मैं वो ऑनलाइन से अपना सामान भेज रहे हैं।
0: राइट।
1: और बिल्कुल जो जो मैंने शॉपिंग में उनका देखा है, जैसे स्ट्रेचिंग स्ट्रेचिंग के ग्रबर का कुछ है वो पांडा मार्ट में भी मिलता है, तो मतलब प्राइसिंग अच्छी है। और आप ऑर्डर कर सकते हैं, और के मार्ट में डंबल्स मिल जाते हैं, जरूरी नहीं आपको जिम में ज्वाइन करना।
0: राइट।
1: बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है जो आप
0: घर बैठे बैठे भी आप कर सकते हो।
1: घर बैठ के, बाहर न्यूजीलैंड इतना ब्यूटीफुल है, हर एक के घर के बाहर पार्क है, पोल्यूशन नहीं है, तो कम से कम स्क्रीन टाइम तो सच में दूर ही होना चाहिए।
0: दैट्स सो ट्रू।
1: कैसे टीवी देख लो लेकिन नो स्क्रीन नो सोशल मीडिया।
0: दैट्स सो ट्रू। बहुत अच्छा लगा राहुल भाई, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग ऑल दीज नाइसली एडवाइज्ड। इसी तरह से होता है, आपने कहीं और से सुना है?
1: हाँ जी, जब आप एक्सपीरियंस खुद अपने अपने पे करते हैं, जब उसके खुद के जब आपको लगता है साइड इफेक्ट हो रहे हैं उसके, तो फिर आप एक मिसाल बन जाते हैं, ओ मैंने तो ऐसे किया था, क्यों ना मैं इसके लिए शेयर करूँ।
0: ट्रू ट्रू।
1: बहुत सारी चीज होती है, ज्यादा सोशल मीडिया आपका माइंड ब्लॉक कर देता है, और मेरे ख्याल से भी अच्छा डिसीजन जो होने वाला है, अंडर 13 जो है विल नॉट अलाउड टू यूज सोशल मीडिया, यू नो लाइक दिस थिंग। तो हम प्रैक्टिकल चीजों से तो दूर जा रहे हैं, जो मतलब अच्छी चीज है, और चक्करों में ज्यादा जा रहे हैं, तो विच इज नॉट राइट।
0: दैट इज सो ट्रू। बट कूल यार, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं आपको इनवॉइस भेजता हूँ, और व्हेनेवर यू फील लाइक यू जस्ट मेक अ पेमेंट एंड इन माय पर्सनल अकाउंट, ठीक है? आपने इतनी बार ब्रांडिंग कर ली है हमारे यहाँ के लोकल बिजनेसेस की, तो बट कूल, बहुत अच्छा लगा बात करके, एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सम वैल्यूएबल यू नो थिंग्स। बट थैंक यू सो मच, हैव अ लवली डे राहुल भाई।
1: यू टू, थैंक यू, बाय।
2: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स। मेरा नाम केतन है। वैसे स्पोर्ट्स में बात करते हैं, इंडिया और श्रीलंका का फाइनल हुआ है एशिया कप में, एशिया वुमेन कप में, जिसमें इंडिया ने ये जीत लिया है। पहले खेलते हुए 183 रन बनाए हैं 5 विकेट खोकर, और उसके जवाब में श्रीलंका की तरफ से सिर्फ 111 रन ही बने 20 ओवर में, और वो 10 विकेट गंवाकर हार गए, यानी कि आखिरी बॉल पर भी विकेट गया होगा शायद। स्मृति मंदाना 59 रन, शेफाली वर्मा 68 रन, एंड देन ऑफकोर्स फ्यू मोर एड्स ऑन जिन्होंने बढ़ोतरी करी थी, और पहला विकेट ही 129 पे गया था शेफाली वर्मा की तरफ से, यानी कि उन्होंने सिर्फ 39 बॉल्स खेली यार, 39 बॉल्स, वाओ, और काफी अच्छा खेला, लाइक 174 की स्ट्राइक रेट के साथ। जवाब में श्रीलंका की इनिंग कुछ वैसे मेजर नहीं रही। चमरी अथावत्तू, उन्होंने वो कैप्टन भी है, उन्होंने 36 रन बनाए, उनके बाद हाईएस्ट स्कोर था नीलाक्षी का सिल्वा का, जिन्होंने 22 रन बनाए हैं। विश्मी ने भी 20 रन बनाए हैं, बट उसके अलावा कोई भी डबल नंबर्स पे नहीं जा पाया, डबल फिगर्स पे नहीं जा पाया। और इसी के साथ डीपी वर्ल्ड्स वुमेन्स T20 एशिया कप 2025 के जो विनर है वो रही है इंडिया बाय 72 रन्स।

0: This Mega Finance and Spindle Home, Zeal Group, Perfect Panel Beaters and Paint Limited, Port Poles Supermarket Newlyn, Namaste New Zealand Immigration Services, Indelible Homes, Gem Entertainment, Tradeworks Group, Classic Automotive Solutions Limited, Malolo Rentals and Tours, or AAA Science. Jankariyon ke liye hum sunte rahein.
1: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With multiple branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास हैं. Go Bananas Childcare's 12th birthday offer, 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces. First come, first served. तो जल्दी join करो और enjoy करो special offers. Call 0800 46 26 26 today. Terms and conditions apply.
2: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो
3: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स नोटरी पब्लिक बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स
4: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी लीजेस सब डिविजन इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 0927994 39 और विजिट legalassociates.co.nz
5: It's normal to feel low sometimes. Just like how the weather changes, so can our moods. Pay attention to your feelings. Reach in and check how you're doing. Reach out and talk to someone you trust. If you need to talk with a trusted professional, Asian Family Services is here to support. Call the Asian Helpline on 0800-862-342 for free, confidential support. If you or someone you know is in immediate danger, please call 111 or emergency services.
6: Non-stop Bollywood.
7: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं.
6: हम playing Bollywood's biggest hits. Lunchbox with Ketan.
8: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं.
6: इसके पीछे हम.
9: Welcome back. You are listening to Lunchbox. Well, yes, अभी campaign चल रहा है बहुत ही बढ़िया. अलग अलग elections के माहौल आप देख ही रहे होंगे बाहर. And if you have सवाल, यानी कि अगर आपके पास सवाल है, definitely, but जरिया नहीं है कि कैसे उन सवालों को हम जो बड़े बड़े खिलाड़ी उन तक पहुंचाएं तो उसके लिए हम आते हैं ना आप क्यों टेंशन लेते हो आप बस हमें सुनते रहिए वेल ये मौका आपके लिए बहुत ही अच्छा है अगर आपके पास सवाल है तो प्लीज़ उसे नोट डाउन कर लीजिए और ठीक 5 बजे थर्सडे को हम बात करने वाले हैं डेविड सीमर से जो कि एक्ट पार्टी लीडर हैं उनसे लाइव बातें होने वाली है तो आप उस टाइम जो सवाल है आपका वो 5599 पे ड्राइव कीवर्ड के साथ आप लिख के सवाल को भेज सकते हैं ताकि हम रिप्रेजेंट कर सकें वो सवाल और आपके थ्रू उनसे पूछ सकें सो यस आप और भी बढ़िया कन्वर्सेशन के लिए हमसे बस जुड़ते रहिए सुनते रहिए ताकि हम और भी बातें ये लाते रहेंगे एंड यस एज आई प्रॉमिस बिफोर एज वेल अबाउट कीर्तन काफ़ी आपने सपोर्ट किया है उसको बरकरार रखिए बट यस कीर्तन संग्रह रिकॉर्डिंग जो कि 25 सितंबर को होने वाली फ्राइडे वैदिक सेंटर में पापाटोटे में होने वाली है रिकॉर्डिंग जो है वो काफ़ी आर्टिस्ट को कीर्तन ऐप रोवा पर हम फीजी कीर्तन संग्रह पर सुन सकेंगे यानी कि ये जो भी रिकॉर्डिंग होगी उसे आप डेफिनेटली वहाँ पे सुन सकते हैं बट आपको कैसे करना है ज्वाइन द हम टीम टू सी हाउ इट ऑल हैपेंस एंट्री इज फ्री फॉर ऑल रिफ्रेशमेंट्स एंड कावा विल बी ऑन सेल सो यू विल ऑल्सो हैव द अपॉर्चुनिटी जहां पे आपको मिलेंगे बहुत सारे इनाम स्टे ट्यून रहिए और हम आपको बताएंगे बट 25 सितंबर को वैदिक सेंटर पापाटोटे में होने वाला है ये रिकॉर्डेड कलाकारों के कीर्तन ऐप
6: दिल से दिल तक अनलॉक योर प्रॉपर्टीज ट्रू सेल वैल्यू विद NZPMI योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स फॉर फ्री साइट असेसमेंट विजिट nzpmi.co.nz और कॉल 0800 4NZPMI

यू बाई 0800 रचना। इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना, दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन।

एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं कल सेम टाइम 12 से 3, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं, एंड यस सैंडी विल बी जॉइनिंग शॉर्टली फॉर द कॉफी ब्रेक, बट आई विल टेक अ लीव एंड आई विल सी यू टुमॉरो सेम टाइम, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।

0: मुझे पसंद है लड़का।
1: हम
2: मार्च 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
3: रुस्बे, टिकट्स बुक हो गए।
4: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
3: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
4: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
3: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
5: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
6: हेलो एवरीबॉडी।
2: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
7: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
2: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुस्बे, ओनली ऑन हम।
1: Time check.
8: Brought to you by Maan Tires. For all kinds of tires and mechanical services, open 7 days. Call Maan Tires on 0800-00010.
1: Hum News. Brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with logic.
9: Good afternoon, I'm Bridget Hasty with the latest at 3. Two people are dead and another is in hospital after a boat capsized in Manawatū. Emergency services were called to the mouth of the Tangimoana River at around 8:30 this morning. St John says the hospitalised patient was in a moderate condition. Kiwis heading to Fiji are being urged to take extra precautions as the country battles a growing HIV epidemic. MFAT advises avoiding activities that may increase the risk of infection. It's hoped Wellington's public transport woes will be eased by a new waterfront corridor. The regional council's endorsed the Harbour Keys business case. It now goes to the City Council. Councillor Roz Connolly says if approved, it will help ease congestion on the capital's Golden Mile.
10: We've known about the capacity issues for a while. This decision is creating what we call a second spine, second route for buses to transit through Wellington City along the Harbour Keys.
9: Tourist numbers have finally bounced back to pre-COVID levels. New figures compiled by Infometrics show particularly strong growth in South Island airports during the year to July. Spokesperson Nick Brunsden says it's great to see.
11: Pretty big milestone for New Zealand. International visitor arrivals were at 100% of pre-pandemic levels, so that signals that we're well on the path to recovering that market.
9: To sport, Netball New Zealand has confirmed an 18-player Silver Fern squad. Tactics defender Laura Barmer has earned her first selection. Shooters Aaliyah Dunn and Tapaia Selby-Rickett both return. The four-match Constellation Cup series against the Aussies is next month. And to rugby league with Machinery House in a league of their own, Panthers playmaker Nathan Cleary has been fined but has escaped suspension over a dangerous contact charge against the Roosters.
2: Sports News.
1: Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Draw Skill. Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800-462626.
12: मौसम के हालचाल मेट सर्विस के अनुसार इस समय टेम्परेचर बाहर का 15.7 डिग्रीज और आज का ओवरनाइट 9 डिग्रीज टेम्परेचर रहने वाला है।
1: The beat of Bollywood.
4: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
2: Coffee break with Sandy.
12: 3:02 हो चुके हैं। अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। कॉफी ब्रेक आपके लिए शुरू हो चुका है। यू हम एक अलोंग विद सैंडी और अभी से लेके 4 तक मेरा और आपका साथ यहाँ पे रहने वाला है। सो कैसे हैं आप और आपका डे आज का कैसा जा रहा है? सो फार हाउ इज इट गोइंग, हाउ इज मंडे गोइंग फॉर यू? यहाँ पे जरूर शेयर कर सकते हैं। ओवर द वीकेंड आपने क्या किया, कुछ शेयर करना चाहते हैं, कोई नई जगह पे गए, कुछ नया देखा आपने, यू कैन शेयर यहाँ पे कॉल करके 0800 00 हम या फिर 5599 पर मैसेज करके आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। बहुत कुछ सुपर सिटी में हो रहा है। दिस ईयर इज़ वेरी वेरी क्रूशल यहाँ पे न्यूजीलैंड के लिए, बिकॉज इलेक्शन ईयर है और इस बार इलेक्शन ईयर में समझ में नहीं आ रहा है कि कौन आगे जाएगा, बिकॉज इट्स वेरी अनप्रडिक्टेबल राइट नाउ। इसीलिए हम यहाँ पे आपके लिए एक शो लेके आ रहे हैं एवरी थर्सडे। सो थर्सडे को यहाँ पे कन्वर्सेशंस होगी डायरेक्ट पॉलिटिशियंस के साथ। आपके मन में जो सवाल होंगे वो हम पूछेंगे उनसे, जो पॉलिसीज़ वो हमारे सामने रख रहे हैं, बिकॉज आए दिन अभी नई नई न्यूज़ आ रही है, इनके बारे में उनसे सवाल हम पूछेंगे। तो ऐसे में आपके माइंड में क्या क्वेश्चन है किस पॉलिटिशियन के लिए, वो भी आप यहाँ पे लिख के भेज सकते हैं। दिस थर्सडे टू स्टार्ट ऑफ विद दिस थर्सडे जो हमारे गेस्ट हैं वो है एक्ट पार्टी के लीडर डेविड सेबर। सो ड्राइव शो में 5 वो यहाँ पे आएंगे एंड ही विल टॉक लाइव हेयर पॉलिसीज़ के बारे में, प्रायोरिटीज के बारे में, हिज विजन फॉर न्यूजीलैंड, एंड तब तक आपके जो सवाल यहाँ पे आएंगे उन सवालों का जवाब वो यहाँ पे देने वाले हैं आपको. सो मेक श्योर अपने सवाल आप ज़रूर पहुँचिए. फॉर नाउ आपको सवाल भेजना है एक्ट पार्टी के लीडर डेविड सेबर के लिए 5599 पर ड्राइव कीवर्ड के साथ. तो पूरा हफ्ता टिल थर्सडे एक्चुअली में ये जो सवाल है आप यहाँ पे भेज सकते हैं. Mixing in the house.

0: दलजीत दोसांझ को आप यहाँ पे सुन रहे थे। छाया हुआ है यार बंदा, मतलब हर बार नया रिकॉर्ड ये बंदा बना लेता है। अभी नाउ सी वेम्बली स्टेडियम, 92,000 पीपल, 92,000 लोगों के सामने इस बंदे ने परफॉर्म किया है। पहला इंडियन आर्टिस्ट बन चुका है इतने बड़े तगार में वेम्बली स्टेडियम को सोल्ड आउट करने में। एनीवे आगे बढ़ते हैं। मैंने सवाल पूछा था कि आपका वीकेंड यहाँ पे कैसा गया, तो मेरे साथ हमारे एक लिसनर शामिल हो चुके हैं। हाय, गुड आफ्टरनून।
1: हे, गुड आफ्टरनून, दिस इज आसिफ।
0: यस, ओके, कैसे आप?
1: जी मैं ठीक हूँ। आपका दिन कैसा जा रहा
0: है? बढ़िया बढ़िया। तो वीकेंड कैसा गया आपका?
1: हाँ, वीकेंड बहुत जबरदस्त था। सैटरडे तो मेनली घर के काम, ग्रोसरी, और मगर संडे जो है वो दैट वाज वेरी गुड। कुछ फ्रेंड्स के साथ मैंने सुबह नाश्ता किया पापा टोयोटो में, एक इंडियन रेस्टोरेंट पे।
0: अरे वाह।
1: और उसके बाद फैमिली का प्लान था कि किड्स वांना गो टू सीएरएल, और हम उस पे गए, तो दैट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस, रियली वर्थ टू ट्राई विद द किड्स। द न्यू स्टेशन जो उनसे है वो बहुत जबरदस्त है।
0: ओके,
1: स्पेशली स्काई सिटी का स्टेशन वाज, आई वाज अमेज्ड के वो कितना उन्होंने एफर्ट पुट करके उन्होंने उसे बनाया।
0: ओह वेरी गुड, ओके, दैट्स अ गुड रिकमेंडेशन।
1: Yeah, it's worth with the kids, you know. When you don't have anything planned for the weekend, you can take your kids and they will love it.
0: Okay, nice. और आपकी बच्ची 3 साल की है, right?
1: नहीं, बेटी, हाँ जी, बेटी मेरी 3 साल की है और बाकी 2 boys हैं और जिनको मैं पिक करने जा रहा हूँ स्कूल। एक है 7 years के और एक है almost 13, so he's turning 13 next month.
0: अरे वाह, क्या बात है। तो तुम क्या बोला?
1: सॉरी, मेरी डॉटर बोल रही है पीछे से कि आयान को पिक करने जा रहे हैं, बेटे का नाम। ओके,
0: वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग एंड थैंक्स फॉर द रिकमेंडेशन फॉर द अदर किड्स एज वेल।
1: यस, यू आर वेलकम अगेन। यस, यू हैव अ गुड डे।
0: या, थैंक यू, बाय बाय, बाय। सो आप भी यहाँ पे अपनी रिकमेंडेशन जरूर शेयर कर सकते हैं, बिकॉज क्या होता है कि जब आप कहीं पे जाते हैं बाकियों को आइडिया मिलता है, क्योंकि दिस इज़ अ प्लेस वी कैन गो। एंड स्पेशली अगर आपके बच्चे हैं, आप बच्चों के साथ कहीं पे जाते हैं, तो बहुत पेरेंट्स आउट देयर होते हैं जो कई बार सोचते हैं कि यार इस वीकेंड पे यू नो अगर वेदर थोड़ा ऐसा है तो कौन सी इंडोर एक्टिविटी कर सकते हैं, कहाँ पर हम जा सकते हैं। सो इट्स ऑलवेज गुड टू रिकमेंड ईच अदर ओवर हियर।

0: 3:18 एट द मोमेंट यहाँ पे हो चुके हैं. कॉफी ब्रेक आप यहाँ पे सुन रहे हैं एंड हम यहाँ पे वीकेंड्स के बारे में बात कर रहे हैं कि हाउ वाज द वीकेंड एंड एवरीथिंग. एंड टॉकिंग अबाउट वीकेंड, मेरे साथ यहाँ पे आरजू शामिल हो चुके हैं. आरजू, आई थिंक यू शुड बी अ पार्ट टाइम कॉफी ब्रेक होस्ट नाउ.
1: Yeah, by the amount of times I've interrupted aapki show.
0: नहीं नहीं, interrupt नहीं, मुझे अच्छा लगता है, ऐसा कुछ नहीं. कोई और आता है शो में, बातें होती है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है. एंड यकीन मानो लिसनर्स को भी बहुत अच्छा लगता है.
1: Only some.
0: आरज़ू में बोली नहीं है.
1: नहीं, jokes, jokes. Yeah, आपके weekend कैसा रहा?
0: अच्छा था, but I saw कि you went for hiking and let me guess. This is West Auckland, of course, जहाँ पे तुम hiking के लिए गई थी.
1: Yeah.
0: It looked like Mercer Bay Loop. वो लेकिन वो बहुत difficult है. मुझे नहीं लगता कि वो इतने easy shoes के साथ तुमने वो की होगी. You did Mercer Bay. तो मैंने इसकी फोटो देखी थी गाइस, तो मुझे ऐसा लगा कि ये मर्सर बे काइंड ऑफ लग रही है, लेकिन देन मैंने इसके जूते देखे, चप्पल पहनी हुई है. एक चप्पल के साथ नहीं ये कर सकती.
1: यू नो व्हाट, एक्चुअली में हम पीहा बीच ही जाने वाले थे एंड माय कजिन्स हैव कम फ्रॉम नेपाल, सो वो उसे ऑब्वियसली काना शो, यू नो, शो देम अराउंड ऑकलैंड. और सो हमने सोचा कि पीहा बीच लेके चलते हैं. एंड देन माय बॉयफ्रेंड गॉट रियली एक्साइटेड, अरे वी शुड डू दैट वॉक टू. एंड आई वाज लाइक, ब्रो, mera chappal hai. He's like, and it's like, ah, it's all right, it's just a quick 30 minutes up and down, like, I mean, go down 30 and 30 back. Okay. And then I was like, okay, let's
0: exactly
1: just do
0: 30
1: it.
0: minutes nahi hai wo.
1: Exactly. Oh, but when we come back, oh my god. Anyways,
0: oh, pata nahi kiske liye 30 minutes likha hota hai.
1: Wahi to. And then you know what, then I remembered ki main Nepali hu. And jab aap trekking jate ho, obviously Nepal mein we wear trekking shoes, but wahan ki locals chappal hi pehante hai. They wear chappal and go up and down. So, and I was like, we have to you know.

0: It's in our blood
1: justify,
0: somewhere.
1: Yeah.
0: So I was like, we can do chappal maybe. And we did it.
1: चप्पल में हाइकिंग करके आइए ये
0: highly recommend
1: but it's very nice actually मौसम है बहुत nice है but I think it must be very windy as well for you
0: you know what it was so weird क्योंकि हम जब drive कर रहे थे middle way it started raining इतना जोर से it was raining that you couldn't see the road those ones and उसके बाद 5 minutes के बाद No rain. No nothing.
1: Typical.
0: And then sunny. I was like, okay, then we got lucky because weather was better when we went there.
1: Yeah.
0: And it was very cool wind. Not that bad, like, you know, the wind that makes you really cold.
1: वापस आते समय कैसा था वहाँ से? Like, this one way and then you...
0: It's upwards. So steep.
1: Yeah, yeah it's very steep.
0: Everyone was fit, so they to walked straight. I had to, like, take a few breaks and I told my boyfriend to push from back, so I walked aram se. But, oh my God, it was steep.
1: It is steep.
0: Itna steep tha.
1: But view bahut achha hota hai Mercer Bay ka. So, guys, aapne kabhi agar Mercer Bay loop नहीं किया है तो मस्ट हो आई विल से बहुत सारे उसमें डिफरेंट पाथ है सो कई बार अगर आपको और लंबी वॉक करनी है देयर इज अनदर पाथ यू कैन कवर आप पहाड़ियों के बीच में और भी बहुत सारी जगह जा सकते हैं बट ब्यूटीफुल थिंग इज कि वहाँ पे बहुत सारी जगह पे मार्किंग्स लगी हुई है कि आप किस एरिया में हैं और आपको कहाँ जाना है
0: अगर कितने
1: मिनट्स में आप वहाँ पे पहुँच सकते हो
0: मिनट्स
1: हाँ तो वो सब कुछ वहाँ पे लिखा हुआ मिनट्स लिखा हुआ वहाँ पे आप आवर्स में पहुँचोगे
0: पर पहुँचोगे
1: लेकिन पहुँचोगे
0: चप्पल हो गया जूते अब
1: हाँ रनर्स के लिए वो मिनट्स है मेरे को लगता है
0: मे बी ये
1: जो रन करते हैं उनके लिए वो
0: इट्स वेरी सीनिक बहुत ब्यूटीफुल है लाइक ओशन
1: आप कैमरा में कैप्चर नहीं कर सकते
0: इट्स
1: वेरी
0: ब्यूटीफुल
1: सो आपके पास भी कोई हाइकिंग रिकमेंडेशन है तो आप भी यहाँ पे शेयर कीजिए टुडे इज ऑल अबाउट वीकेंड पे आपने क्या किया रिकमेंड ईच अदर
2: हॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड
3: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ
4: मैं लाऊं अपना ए गेम
2: ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स बिल्ड योर ड्रीम्स

0: Empathy's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800-4-NZPMI.
1: 334 एट द मोमेंट यहाँ पे हो चुके हैं. कॉफी ब्रेक फिलहाल आप यहाँ पे सुन रहे हैं. आपके आसपास क्या होता है इसकी जानकारी भी वैसे आपको यहाँ पे हम प्रोवाइड करते रहते हैं. वेल, ओवर द वीकेंड काफ़ी जगह पे वैसे देखा गया कि आउटेज था, फाइबर आउटेज था, स्पेसिफिकली वेस्ट ऑकलैंड में. मेरे एरिया में भी फाइबर आउटेज था फॉर होल सैटरडे. फुल सैटरडे मेरे घर पे इंटरनेट नहीं था. And I didn't miss it, to be very honest. मैंने तभी miss किया internet जब मुझे you know access करना था Netflix वगैरह या ऐसा कुछ देखना था मुझे अपनी series को. तभी मुझे लगा कि internet नहीं है, because अभी क्या है ना कि mobile data भी होता है. But then I was not even using mobile data much. So I was out and about as well. Maybe this is one of the reason कि मैंने miss नहीं किया. जब वापस आई तो ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ी. बट जैसे हमारे कम्युनिटी ग्रुप्स के पेज होते हैं ना, तो वैसे ही वेस्ट ऑकलैंड के कुछ कम्युनिटी ग्रुप्स के पेज है. वहाँ पे एक बंदे ने पोस्ट की हुई थी कि जिसकी वजह से भी ये फाइबर आउटेज हुआ है, थैंक यू सो मच. उन्होंने अपने बच्चों के साथ गेम्स खेली फॉर अ चेंज, टाइम स्पेंड किया अपनी फैमिली के साथ, फुल टाइम स्पेंड किया. बिकॉज जब फाइबर होता है, यानी कि जब इंटरनेट होता है, किड्स बिकम बिजी विद द गेम्स या बाकी चीज़ों में, या फिर पेरेंट्स बिकम बिजी विद द सीरीज एंड ऑल दैट. लेकिन जब इंटरनेट नहीं था तो जो बच्चे थे, उस बंदे ने पोस्ट में लिखा था कि वो काम कर रहे थे, घर के कामों में हेल्प कर रहे थे, वो सारी चीज़ें कर रहे थे जो यूजली हर दिन में वो नहीं करते. सो आपने कभी ये ट्राई करके देखा है? डू यू डू दिस कि आज नो इंटरनेट डे है, या फिर आज यू नो इतने आवर्स के लिए इंटरनेट नहीं रहेगा, बाद में आप इंटरनेट पे कुछ भी आप स्ट्रीम कर सकते हैं. Do you do these kind of days? आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं. 5599 is the number.

3:41 एट द मोमेंट यहाँ पे हो चुके हैं, 4 बजे ड्राइव शो शुरू हो जाएगा मेरा साथ यहाँ पे रुजबे के साथ हो जाएगा। व्हाट एम आई का सवाल आपके लिए लेके आ रही हूँ। सो आपको बताना है कि ये क्या है, ऐसा क्या है, इट कैन फिल अ रूम बट टेक नो स्पेस। पूरे के पूरे रूम को ये फिल कर सकता है लेकिन फिर भी जगह कोई नहीं लेगा, ये फिर भी कमरा पूरा का पूरा खाली आपको दिखाई देगा। पूरे के पूरे रूम को ये फिल कर देगा लेकिन फिर भी स्पेस ये नहीं लेगा, ये क्या है आपको बताना है। 5599 इज़ अ नंबर।

दुबई 0800 रचना इधर उधर जाने से बचना कॉल करो 0800 रचना दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स इन्वेस्टर्स बिजनेस लोन कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: वेदर का हाल आज काफी कमाल, ब्यूटीफुल डे इन आवर सुपर सिटी। लाइट शावर्स हो सकते हैं, आइसोलेटेड लाइट शावर्स हो सकते हैं अंटिल इवनिंग। साउथ वेस्टर्लीज का साथ रहेगा। सिटी के आसपास तो काफी मस्त वेदर है, फील्स लाइक 14 डिग्रीज। ओवरनाइट टेंपरेचर्स गोना बी एज लो एज 9 डिग्रीज टुनाइट। 6:11 पे होगा सनसेट।
2: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe. Massive home show deals available in store now. Only at Beds R Us Manukau and Pukekohe. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
0: Super Se Ooper, brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited. The Drive Show with Sandy and Rusby.
3: Masti karenge, mauj katenge, garda paar denge.
1: आज है 14 सितंबर। गुड आफ्टरनून, ड्राइव शो में स्वागत है आपका। हाय सैंडी, गुड आफ्टरनून।
4: गुड आफ्टरनून रुज़बे, हाउ आर यू?
1: एकदम एक नंबर, हाउ आर यू डूइंग?
4: आई एम गुड एज वेल। वैसे यस, 4:03 हो चुके। हाउ वाज योर वीकेंड?
1: माय वीकेंड वाज हेक्टिक, बिजी। मेरी एक दोस्त का शो था।
4: या यू टोल्ड मी,
1: कथक वाला शो। बहुत बढ़िया शो गया।
4: ओके,
1: एंड या गॉट टू मीट अ फ्यू लिसनर्स एज वेल। इट वाज फन, इट वाज रियली नाइस।
4: Yeah, and West Auckland में it was Saturday, yeah, Saturday morning से लेके Sunday morning तक काफ़ियों के घर पे फाइबर आउटेज था। एंड मैं लास्ट आवर में यही बात कर रही थी कि जो कम्युनिटी ग्रुप्स होते हैं ना, वहाँ पे किसी ने मैसेज थैंक्स का किया हुआ था कि जिसने भी ये किया है, थैंक यू सो मच, मेरे बच्चों ने आज घर का सारा काम कर दिया।
1: That's so cool, ना?
4: क्योंकि उनके पास कुछ और करने को था नहीं, तो उन्होंने सारा काम कर दिया घर का, कि ये करो वो करो, उनके साथ बिजी हो गए वो। एंड आई कुड सी द कन्वर्सेशंस ओवर देयर। एक ने कमेंट सेक्शन में फोटो डाली थी जुमांजी गेम की। मुझे नहीं पता था कि जुमांजी मिलती है यहाँ पे, कि सी व्हाट वी गोना प्ले नाउ।
1: ओह वाओ,
4: या सो पीपल वर प्लेइंग बोर्ड गेम्स।
1: मैंने भी जुमांजी नहीं देखी यहाँ पे। मेरे को जुमांजी, मेरे को खेलने को भी डर लगेगा जुमांजी, क्योंकि बहुत ट्रॉमा एसोसिएटेड है जुमांजी के साथ।
4: वही ना,
1: आपको पता है क्या, अभी के जो मूवीज है ना, वो फिर भी बहुत एंटरटेनिंग और फन मूवीज है। जो ओरिजिनल जुमांजी मूवी है
4: वो तो बहुत डरावनी थी।
1: बहुत डरावनी मूवी है यार वो।
4: इट्स नॉट फन मूवी।
1: हाँ,
4: मतलब हमने बचपन में जब वो मूवी देखी तो डरी लगा था कि भाई इसको खोलेंगे तो ये कि जंगल में पहुंच जाएंगे या कहाँ जाएंगे, घर जंगल बन जाता है। तो वो सो मेनी थिंग्स,
1: बहुत डरावना था वो। और बाद में अभी बहुत एंटरटेनिंग हो गया
4: कि एंटरटेनिंग
1: है। अभी कोई अगर मतलब कुछ जाती तो लाइफ जाती है, तो ये वापस से लाइफ आती है।
4: एनी वे, सो अगर आप वेस्ट ऑकलैंड से हैं और आपके भी वहाँ पे फाइबर आउटेज हुआ था, तो आपने क्या किया?
1: आपने क्या किया सैंडी?
4: आई वाज आउट एंड अबाउट मोस्ट ऑफ द डे एक्चुअली। मैं रात को नहीं, मतलब
1: शाम को गया था ना लाइन।
4: नहीं, सुबह से लेके,
1: सुबह से इंटरनेट गया था,
4: सुबह 6 बजे से इंटरनेट गया था, और उसके बाद रात को भी नहीं आया मेरे वाली साइड पे, तो अगले दिन संडे को मॉर्निंग में आया है।
1: वाओ,
4: सच अ लॉन्ग फाइबर आउटेज।
1: My God.
4: और कईयों के घर पे संडे को आफ्टरनून या इवनिंग तक आया इंटरनेट।
1: अरे बाप रे।
4: सो लाइक डिपेंड कर रहा था कहाँ कहाँ पे वर्क कंप्लीट हो रहा था।
1: वेस्ट ऑकलैंड के पेरेंट्स का हाल तो बहुत बुरा हाल हुआ होगा।
4: वेंडलिज्म वाज द मेन रीजन, किसी ने कुछ गड़बड़ की थी, और मेरे को लगता है कहीं हब पे कोई गड़बड़ की होगी जिसकी वजह से इतना बड़ा आउटेज हुआ है।
1: So, आपने क्या किया फिर शाम को, पूरे दिन और शाम को? यू आर आउट एंड अबाउट दिन में,
4: एंड शाम को फिर क्या किया? एंड शाम को मतलब हमारी स्प्रिंग क्लीनिंग हो गई।
1: मोबाइल यूज किया?
4: मोबाइल डाटा नहीं, मैं नेटफ्लिक्स वगैरह मोबाइल डाटा पे नहीं देखती हूँ।
1: अच्छा,
4: वो वाईफाई पे देखती हूँ। तो यहाँ मैंने स्ट्रीमिंग कुछ खास नहीं किया, बट वी डिड द स्प्रिंग क्लीनिंग ऑफ द हाउस।
1: बस शाम को क्या किया, 6 बजे से लेकर 12 बजे तक जो
4: कुछ
1: वो टाइम?
4: नहीं, मतलब बातें कर रहे थे।
1: हाँ, बातें हो रही थी।
4: बातें कर रहे थे, या थोड़ा बहुत स्क्रॉलिंग भी था कुछ, मेरे को थोड़ा बहुत काम करना था, वो काम किया मैंने। सो या वाज
1: बिना इंटरनेट का।
4: हाँ,
1: वाओ,
4: होते हैं बिना इंटरनेट के भी काम, होते
1: हैं बिना इंटरनेट के काम। अच्छा, नाइस है।
4: सो इट वाज नाइस। व्हाट अबाउट यू? मुझे ये सवाल पूछना है कि आप लॉन्गेस्ट इंटरनेट के बिना कितना रहे हो?
1: इंटरनेट के बिना बिल्कुल,
4: आपने कितना टाइम आपने सरवाइव किया है विदाउट इंटरनेट? कितना टाइम आपने सरवाइव किया है?
1: या जो कोई हॉलिडे पे
4: जाता है, दिस डज नॉट एक्सक्लूड द एयरप्लेन, फ्लाइट वगैरह एक्सक्लूड।
1: आजकल तो फ्लाइट
4: है,
1: में भी वाईफाई और वो सब आने लग गया है।
4: एग्जैक्टली, वहाँ पे भी होता है।
1: बट
4: तो आपने लॉन्गेस्ट कितना सरवाइव किया है इंटरनेट के बिना, यहाँ पे लिख के बताइए। 5599
1: विदाउट एनी इंटरनेट है, मतलब
4: विदाउट एनी इंटरनेट,
1: गूगल करने के भी नहीं, कुछ भी नहीं,
4: कुछ नहीं।
1: बताइए यहाँ पे 4599 पे ड्राइव कीवर्ड के साथ।

0: शो है अभी के लिए.
1: ओके, सो अगर आपने मिर्ज़ापुर देखी है मूवी तो प्लीज़ शेयर योर रिव्यू ओवर हियर. आपको मूवी कैसे लगी यहाँ पे थोड़ा बताइएगा. वेल, मिर्ज़ापुर तो फिलहाल ऑकलैंड भी हो रहा है इस साल में, बहुत 10% ऑफ मिर्ज़ापुर हो रहा है. इलेक्शन ईयर है ना.
0: हाँ, इलेक्शन होने वाले. यस,
1: इट इज़ इलेक्शन ईयर एंड इलेक्शन ईयर में बहुत ही खास हम यहाँ पे कर रहे हैं. सो एक बहुत ही स्पेशल सेगमेंट यहाँ पे आपके लिए हम लेके आ रहे हैं एवरी थर्सडे बिटवीन 5 to 6 PM.
0: जी, थर्सडे इज 5 to 6 PM होने वाला है पॉलिटिकल चैटर, जहाँ पे हम यहाँ पे एवरी थर्सडे कोई गेस्ट लेकर आने की प्लान में है. एंड वी आर स्टार्टिंग ऑफ विद
1: एक्ट पार्टी के लीडर.
0: या, लीडर ऑफ द एक्ट पार्टी. एंड इस थर्सडे को वो यहाँ पे रहेंगे ड्राइव शो में. आपके जो सवाल है उनको आंसर करेंगे.
1: अभी मैं हेडलाइन पढ़ रही थी उन्हीं के बारे में. देयर इज अ हेडलाइन, डेविड से मैंने बोला है, अ लॉट ऑफ पीपल से आई एम एक्टिंग. मतलब मैं एक्टिंग करता हूँ बहुत ज्यादा.
0: अच्छा, वेरी गुड यार, दैट्स अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट देन.
1: इट्स अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट. एक्ट पार्टी का नाम भी तो एक्ट है.
0: ओह या.
1: सो एनीवे, आपका क्या सवाल रहेगा तो वी आर ट्राइंग डिफरेंट पार्टी लीडर्स को यहाँ पे, यू नो, हर एक पार्टी लीडर्स को यहाँ पे मौका मिले, हर एक पार्टीज को बेसिकली यहाँ पे मौका मिले अपनी पॉलिसीज को एक्सप्लेन करने का, अपनी प्रायोरिटीज बताने का, उनका विजन क्या है न्यूजीलैंड को लेके, ये आपके साथ शेयर करने का. एंड आप भी अपने क्वेश्चंस यहाँ पे भेज सकते हैं. यू कैन सेंड योर क्वेश्चंस ऑन 5599 ड्राइव कीवर्ड के साथ. सो थर्सडे से पहले पहले अपने सवाल यहाँ पे भेज डालिए. अगर आप डेविड सेमर से कोई सवाल पूछना चाहेंगे, यू नो, जस्ट आपके सामने है वो, आप उनसे एक सवाल पूछना चाहेंगे रिलेटेड टू इलेक्शन दिस ईयर, तो वो सवाल क्या होगा लिख के भेजिए यहाँ पे.
0: वो मत बोलना कि कौन से कितने कौन से दिवाली फंक्शन में जाने वाले हो आप इस साल. वो हर दिवाली फंक्शन में जाएंगे इस साल.
1: वो तो आपको हर बस कोई जाते हैं अभी. या

0: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा। न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काउ घी। जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा।
1: मुझे भी।
0: कशिश प्योर देसी घी, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड। खुशियाँ पकाएं, खुशियाँ खिलाएं।
2: At Bunnings, you'll find our aisles and shelves are packed full of rewards. That's because you can now earn Bunnings rewards in every aisle, whether you're just popping in or stocking up for a project. Earn 1 point for every $1 spent at Bunnings and get $5 to spend in-store for every 500 points earned. Download the Bunnings app, scan your Bunnings card and see your points stack. T's and C's and exclusions apply. Join Bunnings Rewards today.
3: Bunnings Warehouse.
4: 3, 2, 1, rush!
5: Rewards Rush is back at BP. Get double everyday rewards points on fuel and shop, plus score 10 times points on selected items. Whether you're fueling up, grabbing a coffee, or stocking up on your favourite snacks, there's more to score at BP. Scan everyday rewards today. Offer ends 13 October. Terms, conditions and exclusions apply. See bp.co.nz/rewardsrush.
6: नया हाइब्रिड ढूंढ रहे हो तो हैवेल ही लो। राइट नाउ एंड्रू सिम्स मेलुकाउ में ब्रांड न्यू हैवेल H6 हाइब्रिड ड्राइव हुए सिर्फ 40,990 से, प्लस ऑन रोड कॉस्ट, नो डिपॉजिट फाइनेंस लो। अपनी ट्रेड इन के लिए जबरदस्त प्राइस पाओ और डिस्कवर करो कि क्यों ज्यादा किविस हैवेल चूज कर रहे हैं। स्टाइलिश, स्पेशियस और टेक्नोलॉजी से भरा हुआ, वो भी हाइब्रिड एफिशिएंसी के साथ। आज ही विजिट करो एंड्रू सिम्स JWM मेलुकाउ। हैवेल हाइब्रिड, मोर फॉर योर मनी। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
7: हे नेहा, कांग्रेचुलेशंस ऑन योर फर्स्ट होम। तूने तो कहा था कि दो दो बैंक्स ने लोन देने

0: से और एक फेमस ब्रोकर ने तो केस लेने से ही मना कर दिया था। ये घर कैसे?
1: अरे ये तो लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला का कमाल है। एक रियल एस्टेट वाले ने उन्हें सजेस्ट किया, मैंने उन्हें फेसबुक पर ढूंढा और डायरेक्टली कॉन्टेक्ट किया।
0: नेहा अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ।
2: फर्स्ट होम बाया बनना है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है तो आज ही कॉल करें लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला को ऑन 0800 लॉजिक गुरु।
3: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us, Manuko and Pukekohe. Massive home show deals available in store now. Only at Beds R Us, Manuko and Pukekohe. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
4: Super Se Upar, brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited.
5: You're listening to Hum playing Bollywood's biggest hits. आपके लिए यहाँ पे हम गाने लेकर आते हैं और इधर उधर की बातें वगैरह वगैरह भी
6: वो भी लेके आते हैं। लेकिन जो मैसेजेस आए हैं, परिशा एंड लिटिल ब्रदर रिशान, इन्होंने मैसेज किया बिकॉज हमने पूछा था ना रुजबे कि वाईफाई के बिना कितना टाइम आप रहे हो।
5: जी तो यहाँ पे मैसेज है, आई कैन सर्वाइव विदाउट वाईफाई अ होल वीकेंड एंड मे बी अ होल वीक एज वेल।
6: I'm 9 year old texting from my mom's phone, heading to swimming pool and listening to Hum FM. Thank you so much, Parisha and Rishan. Parisha and Rishan. Richel का भी मैसेज है।
5: Richel का मैसेज आया, 34 days without internet or Wi-Fi, went on cruise, opted not to buy Wi-Fi on board.
6: This is awesome.
5: 34 days. 34 days ये मेरे को लगा।
6: 34 days cruise ना।
5: ये record कोई नहीं तोड़ सकता है।
6: मुझे नहीं लगता है कि 34 days से ज़्यादा कोई रहा होगा internet के बिना। अंकुर ने 12 hours बोला है।
5: हाँ, ये 12 hours।
6: So we got 12 hours whole weekend and a week maybe 7 days लगा लो चलो। 7 days we got, 12 hours we got and 34 days.
5: 34, मैं 7 days तक रहा हूँ बिना इंटरनेट का।
6: तुम रहो, रहे हो।
5: 4 years back now, around this time only, मैं लेह लद्दाख जब गया था, so वहाँ पे 7 days there was no internet, nothing.
6: Wow.
5: Actually, या बीच में था, मतलब होटल्स
6: में
5: होता था,
6: अवेलेबल होगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम पे नहीं था, ऐसा कह सकते हो।
5: There was no internet and you were just on the road, वादियों से जा रहे हैं, बहुत ब्यूटीफुल था। And I didn't feel the need also to go on.
6: ये ट्रिप वगैरह पे जब हम जाते हैं ना तभी होता है विदाउट इंटरनेट। That this is the only place. So yeah, आप भी यहाँ पे जरूर शेयर कर सकते हैं इसके बारे में। एंड मैंने सवाल पूछा था रुजबे थोड़ी देर पहले कि ऐसा क्या है व्हाट एम आई में, कि ऐसा क्या है जो पूरे के पूरे रूम को फिल कर सकता है विदाउट टेकिंग एनी स्पेस।
5: विदाउट टेकिंग एनी स्पेस
6: पूरा रूम फिल हो सकता है इससे।
5: देयर
6: आर मल्टीपल आंसर्स फॉर दैट। हमारे पास एयर, लाइट, फ्रेगरेंस ये आंसर आया है यहाँ पे। वैसे एनर्जी वही मैं बोलने वाली थी, पॉजिटिविटी कहने वाली थी मैं। सो एनर्जी भी होती है, एनर्जी इज अनदर थिंग जो कि पूरे के पूरे रूम को फिल कर सकते हैं विदाउट टेकिंग एनी स्पेस। और क्या हो सकता है और भी यहाँ पे मैसेज करके बताइए 2599 पर।
5: और क्या ऐसी चीजें हैं जो पूरे स्पेस ले सकते हैं? नहीं, पूरा रूम में जा सकते हैं विदाउट टेकिंग स्पेस।
6: या विदाउट टेकिंग एनी स्पेस।
5: किसी का ख्याल पूरे माइंड में जा सकता है।
6: पूरे रूम में।
5: हाँ।
6: या एक और मैसेज आया रिगार्डिंग वाईफाई जिया का।
5: लिव विदाउट माय फोन 3 months, नो फोन, नो इंटरनेट, जस्ट लैंडलाइंस। जसप्रीत ने भेजा ये।
6: ओके, एक आया नो वाईफाई फॉर अस फ्रॉम मंडे टू थर्सडे एवरी वीक फ्रॉम लास्ट 2 years, मम डजंट अलाउ टेक्सटिंग फ्रॉम हर फोन व्हाइल वी लिसनिंग टू यू। जिया, ओके नाइस। या
5: मम डजंट अलाउ व्हाइल टेक्सटिंग फ्रॉम हर फोन व्हाइल लिसनिंग व्हाइल वी लिसन टू यू। तो कैसे अभी टेक्स्ट किया आपने जिया?
6: अरे अब ये बताने के लिए किया ना उसने स्पेसिफिकली।
5: थैंक यू सो मच,
6: थैंक यू जसप्रीत एंड जिया। सो या आप भी यहाँ पे जरूर शेयर कर सकते हैं। और ये मेरे को लगता है कि काफी घरों में ये ना एक्टिविटी होती है कि टुडे इज नो इंटरनेट डे, और ये होनी चाहिए मुझे लगता है टू बी मोर क्रिएटिव।
5: या 100% या। ओ बाय द वे, आज गणेश चतुर्थी है, अगर कोई सेलिब्रेट कर रहा है तो
6: आज है,
5: आज से शुरू हो रहा है, मतलब एटलीस्ट मैं जहाँ जानता हूँ वहाँ पे।
6: ओके,
5: अब पता नहीं क्योंकि
6: डेट्स का बहुत पंगा रहता है,
5: डेट्स का पंगा होता है, बट अगर आप भी अगर गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट कर रहे हो तो आपको बहुत बहुत बधाई। आज गणेश
6: चतुर्थी वो बनते है ना, वो क्या कहते हैं वो,
5: मोदक। यस या मोदक बनते हैं, पता नहीं यार, हमने तो देखे नहीं है बनते हुए।
6: हमने तो पिछले कुछ सालों में एंजॉय नहीं किए। रुजबे को शायद मिला हो लेकिन नहीं,
5: आपको
6: पता
5: नहीं मिला कभी मोदक? आपको पिछले साल ही तो,
6: हाँ पिछले साल, हाँ पिछले साल खाया था ना,
5: पिछले साल हाँ खाया था,
6: 2 साल पहले खाया था मैंने। अच्छा। उसके बाद नहीं खाया हुआ है।
5: चलो ठीक है, देखते हैं आज सैंडी को कौन मोदक खिला रहा है। आपकी ब्यूटीफुल वॉइस वाली सैंडी को आज कोई मोदक खिलाना चाह रहा है क्या?
6: रुजबे साथ में शेयर कर लेगा।
5: मैं अगर सैंडी के लिए लेकर आएंगे तो मेरे लिए तो लेकर ही आना, नॉर्मल डिसेंसी रहेगी वो यार। यू कांट बी दैट मीन ऑन रूट टू मी।
6: लेट अस नो इफ यू आर मेकिंग इट।
4: बॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड।
7: गुंडी खड़ दो या सीधा अंदर आओ। मैं लाऊं अपना ए गेम।
4: ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स। बिल्ड योर ड्रीम्स।

0: अरमान मलिक की आवाज में सुन रहे थे आप ये बढ़िया सा गाना। और अरमान मलिक से याद आया कि सैंडी आप इस साल बिग बॉस फॉलो कर रहे हो फिर कि नहीं?
1: नहीं यार, अभी तक तो मेरे को ऐसा कुछ हुआ नहीं कि मैं जाके देखूं बिग बॉस में क्या हो रहा है। लाइक कंटेस्टेंट्स में पहले तो जो एंटर हुए हार्डली एक या दो को मैं थोड़ा जानती थी, बाकियों का मुझे नहीं पता है। तो इसलिए वो काइंड ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं बैठा कि जाके उनको देखो। आई नो माही गिल एंड माही गिल यूज टू फॉलो लॉट ऑफ कंटेस्टेंट्स ड्यूरिंग बिग बॉस 13। तो वहाँ से मुझे माही गिल का पता चला था, वो यहाँ पर आई है। एंड आई गॉट टू नो अबाउट काजी सिंगर। यार काजी इज द वन जिसने फेम गुरुकुल, जिसने अरिजीत सिंह के साथ गाना गाया एंड अरिजीत वॉन द शो। सो वो है काजी, अफगान जलेबी सिंगर एक्चुअली, बट वो गायब हो गया इंडस्ट्री से, उसका कम बैक हुआ है वहाँ पे। एंड ही इज एक्चुअली, मैंने उसकी दो तीन रील्स देखी है, वो थोड़ा लग रहा है फनी इंसान लग रहा है। वो थोड़ा
0: फनी के झगड़े हो रहे हैं उसके मेनली,
1: पता नहीं मेरे को थोड़ा अजीब फनी इंसान लग रहा है, क्योंकि मैं एपिसोड्स नहीं देख रही हूँ तो मुझे नहीं पता। जितना हम रील में देखते हैं, जैसे वो उसने बोला कि ये घर की जितनी भी लड़कियां हैं ना, मुझे अब बेटियों जैसी लगती है।
0: वो इतना बूढ़ा है?
1: He looks in his 20s though, but he's 42.
0: अच्छा।
1: Yeah, but still he says कि, और कहता सब लड़कियां मुझे ऐसे बेटियों जैसे लगती है, जैसे बाप के अंदर जो ममता होती है मुझे वैसी फीलिंग आती है। So it seems to be a bit funny guy in the house though. But still interest नहीं है अभी तक।
0: Interest नहीं है अब तक।
1: Yeah, yeah.
0: सलमान खान का भी एक बार वीकेंड का वार होएगा, उसके दो तीन रील वील कटेंगे फिर जाके आपको मजा आएगा।
1: शायद जाके, या अगर क्रिएटिव टीम कुछ ऐसा काम करती है, बिकॉज दैट्स व्हाट दे गोना वर्क ना। रील्स ऐसी काटेंगे जिससे लोगों को इंटरेस्ट आए। एनीवन आउट देयर फॉलोइंग बिग बॉस, कैसा चल रहा है अभी तक?
0: प्लीज सैंडी को यहां पे पर्सनली कॉल करके अपडेट दीजिए। 0800 00,
1: अपडेट नहीं, मुझे बताइए कि कैसा जा रहा है। लाइक यू नो कि इज इट वर्थ वॉचिंग दिस सीजन और नॉट?
0: अभी स्टार्टिंग में कोई मतलब मेरे को नहीं लगता, वो टाइम लगता है ना मोमेंटम बिल्ड होने तक।
1: हाँ, लेकिन एक इंटरेस्ट भी होता है ना कंटेस्टेंट्स को लेके, कि ये सब जा रहे हैं घर के अंदर तो इनको देखना है।
0: देखो बस इतना याद रखना सैंडी, देखो आपने पहले अलायंस भी नहीं देखा था, फिर उसमें जैसे ही सोहेल आ गया, सोहेल खान गया, फिर सलमान खान आया, फिर आपने पूरा मेरे को अलायंस फिर से दिखाया।
1: या
0: एक एपिसोड तो दो एपिसोड तो ये देखो, ये संभाल के मतलब ये बाद में कैचअप करना मुश्किल हो जाता है।
1: 100%
0: पहले से फॉलो करो आप।
1: मूवीज के बारे में बात करते हैं रुजबे, तो एक और मूवी है जिसके बारे में काफी बातें हो रही है, हनुमान अंश। सो इट्स क्वाइट अनस्टॉपेबल राइट नाउ दिस मूवी, बिकॉज ये मूवी जो है रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रही है, बहुत अच्छा एक्चुअली में बॉक्स ऑफिस में बहुत अच्छा कर रही है। और टीम जो है इसको डिफरेंट लैंग्वेजेस में रिलीज करने की कोशिश भी कर रहे हैं। सो Planning is to dub the movie in Tamil, Malayalam and Kannada as well.
0: इस मूवी की खास बात क्या है मालूम है आपको सैंडी? तो ये मूवी ना मैंने एक कंटेंट क्रिएटर का देखा था, पता नहीं कितना सच है, और रैंडमली देखने गया था मूवी और उसको इतनी अच्छी लगी वो मूवी, एंड देन ही वाज लाइक लिसन आई नीड टू मेक रील्स अबाउट दिस, एंड देन दे मेड रील्स अबाउट इट, एंड देन द मूवी स्टार्टेड ट्रेंडिंग आफ्टर दैट।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: या
1: मुझे लगा कि इट्स अ कॉन्सेप्ट जिसके बाद मूवी एक्चुअली में काफी ज्यादा ट्रेंड
0: की। नहीं मतलब मूवी है ही बहुत अच्छी, बट उसको इतना मार्केटिंग नहीं हुआ था उसका।
1: ओ इतना अच्छा मार्केटिंग,
0: रिलीज के बाद इसका मार्केटिंग हुआ है पूरा वर्ड ऑफ माउथ।
1: सो इज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ नीम करोली बाबा। नीम करोली बाबा को एक्चुअली में विराट कोहली इज वन ऑफ द पर्सन जो उनके फॉलोअर है, एंड मैनी अदर फॉलोअर्स हिम एज वेल। बहुत जानी मानी हस्तियां एक्चुअली में इनको फॉलो करती रही हैं, एंड उनकी लाइफ के ऊपर बेस्ड है।
0: जिनके वीडियोस हम देखते हैं विराट कोहली जाते हैं वहाँ पे, अनुष्का शर्मा भी जाती
1: है। नहीं नहीं नहीं, वो अलग है,
0: वो अलग है,
1: वो अलग है, ही इज नो मोर नईम करोली बाबा। सो इनके फॉलोअर है एंड काफी फॉलोअर्स है इनके, एंड ये इनके ऊपर ये मूवी बेस्ड है हनुमान अंश।
0: राइट,
1: बोला जाता है इनके बारे में ऐसा बहुत सारी जगह पे है कि यू नो हनुमान का नया जन्म था इनका, इनके बारे में ये बोला जाता है, तो इन्हीं के ऊपर ये मूवी बेस्ड है।
0: तो ये देखनी पड़ेगी यार, यहाँ पे रिलीज हो ये मूवी तो ये इसको भी देख लेंगे जाके।
2: The Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us, Manuko and Pukekohe. Massive home show deals available in store now. Only at Beds R Us, Manuko and Pukekohe. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
3: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फीजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फीजी भजन्स, दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फीजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फीजी भजन्स।
4: Accurate traffic.
5: Auckland Pet Expo this weekend.
6: Clear overnight for Auckland, a low of 10. Town to Silverdale taking 44 minutes at the moment to Massey 20. On the southern to Manukau 33 and Drury 57. A northbound crash on the southern just after the Ellerslie Panmure off ramp. The right northbound lane is blocked, so it's heavy from Mount Wellington to there. And south from Newmarket to Ellerslie Panmure also slow.
5: Auckland Pet Expo, Auckland Showgrounds this weekend. PetAnimalExpo.co.nz.
7: Kya baat hai us khane mein jo पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद। ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस। बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है। तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए। शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए।
8: TradeDepot.co.nz. Spend $30 at Trade Depot and get fast free delivery anywhere in Auckland. Vogue dishwasher, just $299. Iceland fridge freezer, just $299. My Dia washing machine, just $299. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast free delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
9: बूढ़ा हो गया हूँ माते, घर ढूंढते ढूंढते।
10: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा,
11: अब हमारा क्या होगा?
12: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना, फालतू की बातों से बचना,
10: तो क्या करें?
13: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना। दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन।
14: The kids depend on us for everything. Meals, rides, band-aids, bedtime stories. But who do we depend on?
15: Hi, I'm Nitesh Hira from Assure One. School holidays remind us how much our families rely on us. My job is making sure reliance never becomes a risk. Helping you understand your options so your family is covered whatever happens. Call Assure One on 0800-77-HIRA or visit assureone.co.nz. North and Vale Advisory Limited. Trading as Assure One is a licensed financial advice provider.
16: Fuel prices got you feeling? Score 6 cents per litre off every fill with Caltex pumped, plus more on Super Pump Days. Fill up, scan your Caltex app or Kodu card and save instantly. Discount applies up to 50 litres. Caltex pump T's and C's apply. See caltex.co.nz.
17: Comes to town, Aotearoa ka feel hi kuch alag ho jata hai. Tickets ab available hai nzc.nz par. Be there, kyunki ye sirf cricket nahi, ye hai Black Caps vs India.

0: brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited.
1: Let's go.
0: Straight from the heart. Unlock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800-4-NZPMI.
2: You're listening to Humpling Bollywood's Biggest Hits.
3: आज 6 बजे के बाद जो सेगमेंट आप सुनने वाले हैं, ट्रेंड मेकर्स जो आप सुनने वाले हैं, वो एक ऐसे आर्टिस्ट के ऊपर हम ट्रेंड मेकर्स कर रहे हैं. इन्होंने अपनी शुरुआत की एक रियलिटी शो के साथ, फिर इन्होंने सिंगिंग की, फिर इन्होंने एक्टिंग की, एंड देन एक्टिंग एंड सिंगिंग की.
2: रियलिटी शो के साथ शुरुआत की.
3: हाँ, रियलिटी शो के साथ शुरुआत की इन्होंने,
2: फिर सिंगिंग की, एक्टिंग की,
3: मतलब होस्टिंग भी की इन्होंने टीवी पे, एंड देन इन्होंने सिंगिंग की, फिर एक्टिंग की, फिर एक्टिंग एंड सिंगिंग की.
2: वाओ.
3: सो अभी तक ही इज डूइंग एक्टिंग एंड सिंगिंग.
2: बताइए कौन है ये, आपको क्या लगता है?
3: बॉलीवुड.
2: बॉलीवुड है ये. कौन है ये बॉलीवुड
3: आर्टिस्ट, कौन है ये, एंड क्या क्लास मूवीज है इनकी?
2: हाँ,
3: एक से बढ़कर एक मूवीज है इनकी.
2: He is dead or alive?
3: Alive. ये गेम नहीं खेल रहे हैं.
2: गेम नहीं खेल रहे. अच्छा,
3: मतलब अलाइव है यार. सो क्लासिक मूवीज करते हैं. हर एक मूवी ना इनकी एक सिग्नेचर मूवी बन जाती है.
2: राइट, मुझे पता चल गया.
3: डबल फाइव डबल नाइन इज अ नंबर, और इसी आर्टिस्ट का आज हम बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. यस.
2: अरे यार, बहुत ही ब्यूटीफुल सिंगर है ये.
3: या सुपर्ब सिंगर है. तो आज इनके कुछ ना अब सिंगल्स भी सुनने वाले हैं.
2: तो इन्होंने
3: 6 बजे के बाद
2: रियलिटी शो के पहले इन्होंने रेडियो से शुरुआत की.
3: ओ या, ये तो मैं बोलना भूल गई. इनका जो नाम है वही इनका वो होता था, साइन ऑफ.
2: हाँ, तो रेडियो से शुरुआत की, फिर एक रियलिटी शो भी किया, फिर उसके बाद एक्टिंग और सिंगिंग एक ही साथ उन्होंने डेब्यू किया.
3: डेब्यू साथ में था क्या?
2: सिंगर एंड एन एक्टर, एक ही मूवी में डेब्यू हुआ उनका.
3: ओके. एंड नॉट टिल नाउ ही इज डूइंग सिंगिंग एंड एक्टिंग. ही डिड द सिंगल सॉन्ग्स एज वेल, एज इन की विदाउट मूवी के गाने भी उन्होंने गाए हैं.
2: एंड वन ऑफ द मोस्ट लाइक वन ऑफ द एक्टर्स जिसने हमेशा ऑफ टॉपिक्स, हटके टॉपिक्स के ऊपर मूवीज की है.
3: मतलब अगर इसका चेहरा देखोगे ना, हमेशा स्माइली देखोगे आप चेहरे पे.
2: क्या बात है. वैसे मैसेजेस भी यहाँ पे आए हैं काफी बिग बॉस को लेकर. तो शैरन फ्रॉम सनीवेल, इन्होंने बोला है कि लो एनर्जी था, लेकिन अभी काजी
3: वही जिसके बारे में बात कर रहे थे,
2: यंग डीएसए, ये लोग बढ़ा रहे शो को आगे, और थोड़ा टाइम लगेगा विल अंटिल द मोमेंटम पिक्स अप. थैंक्स शैरन, कीप अस अपडेटेड.

0: से ऊपर brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited.
1: Hum, accurate traffic.
2: The Property Directory.com.
3: Clear overnight for Auckland, a low of 10. On the northern, it's slow northbound from Oniwa Road to Northcote. On the northwestern, slowing heading west through Rosebank. Northbound crash still on the southern, so just after the Ellerslie Panmure off ramp, the right northbound lane is blocked. It's heavy from Luke Street to there, and slow southbound from Spaghetti Junction to Ellerslie Panmure.
2: Thinking about property? Everyone you need in one place. ThePropertyDirectory.com.
4: 1921 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस ऑनसाइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑनसाइट क्रेमेटोरियम और जब भी जरूरत हो दिन हो या रात हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा मॉरिसन्स फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए
5: सुनो आज फिर प्रॉपर्टी एजेंट्स का फोन आया घर बेचने को कह रहे थे
6: बेचना तो कभी भी बेच सकते हैं लेकिन मार्केट में उतना मिलेगा नहीं डेवलप करना बेहतर लगता है पर पैसों का डर है
5: इसीलिए NZPMI से बात कर लो वो फीजिबिलिटी देखते हैं और प्लानिंग से फंडिंग तक सब संभाल लेते हैं
7: हर प्रॉपर्टी बेचना जरूरी नहीं आपकी जमीन की असली वैल्यू उसके डेवलपमेंट में हो सकती है आज ही NZPMI के पॉल से बात कीजिए NZPMI टुगेदर वी बिल्ड सक्सेस कॉल पॉल ऑन 0800-4-NZPMI
8: 1% finance and $2,000 off exclusive to West City Auto Group. That's right, get behind the wheel of JQ J7 SHS for just $47,990 plus on-road costs. With 1% finance and $2,000 off, experience premium style, advanced technology and super hybrid efficiency all in one impressive SUV. Hurry, limited stock available at 1% finance. Speak with Jimmy Taylor and team at West City Omura JQ. For T's and C's, head to westcityautogroup.nz.
9: Hey Neha, congratulations on your first home. तूने तो कहा था कि दो-दो banks ने loan देने से और एक famous broker ने तो case लेने से ही मना कर दिया था। ये घर कैसे?
10: अरे ये तो Logic Finance के गुरु कैंडोला का कमाल है।
11: एक real estate वाले ने उन्हें suggest किया। मैंने उन्हें Facebook पर ढूंढा और directly contact किया।
9: नेहा, अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ।
12: First home buyer बनना है या investment property लेनी है? तो आज ही call करें Logic Finance के गुरु कैंडोला को on 0800 Logic Guru.
13: Great news! Flu vaccinations are now free for all children aged 6 months to under 5 years. It's not too late to help protect your little ones from serious illness this flu season. So book now with your healthcare provider or visit bookmyvaccine.nz.
14: Kick breast cancer to the curb and volunteer for the Pink Ribbon Street Appeal this October. Pick a 2-hour shift at a time and location that suits you to help the thousands of women diagnosed with breast cancer. Sign up at pinkribbonvolunteer.org.nz.
0: Check.
1: Brought to you by Maan Tyres. For all kinds of tyres and mechanical services, open 7 days. Call Maan Tyres on 0800-00010.
0: Hum News. Brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with logic.
15: Good evening, I'm Bridget Hasty with the latest at 5. The only doctor at an Auckland medical centre that's come under fire after a man died outside its building has spoken out. The centre reportedly refused to provide a defibrillator to those trying to help the person. In a statement to RNZ, Dr. Kieran Patel said he and their only nurse were in surgery with a patient and were unaware of what was happening. He says he believed there was a misunderstanding around what was being requested, and once the team realised, they called an ambulance and tried to help. Ongoing instability in the Middle East could threaten a tourism recovery, with new figures showing arrivals finally hitting pre-COVID levels in July. Nick Brunsdon of Infometrics says the rising price of jet fuel could dampen this.
16: It potentially will push up airfares, particularly long-haul airfares, which could discourage visitors from markets like America, like Europe.
15: The commute to Wellington could soon get smoother with the endorsement of a new waterfront corridor. Greater Wellington has given the Harbour Keys corridor the thumbs up. Now it goes to the City Council. Transport Committee Chair Ros Connolly says it's been a long time coming.
17: An idea that's been percolating for a while, probably over 10 years now, but the project will be completed during the year, next year, with buses running on it by the end of 2027.
15: Avocado growers could see a record-breaking season over the coming months, with almost 8 million trays expected to enter the market. 3 million have been set aside for domestic consumers. To sport, former Silver Fern shooter Aaliyah Dunn and Tipaia Selby-Rickett are back in the national squad. The only new face is tactics defender Laura Barmer. The Constellation Cup series against the Aussies begins in Auckland on October the 18th. And to rugby league with Machinery House and a league of their own, the Warriors Knights elimination final on Sunday evening. Leka Hallis Seema is reported to be highly doubtful. Hamstring injuries are rarely sorted in a week.
0: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
18: World's best, hamari good brands bhi hai.
0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
19: Feels like 15 degrees. Overnight temperature is going to be as low as 9 degrees. Thode bahut barish ho sakti hai. Southwesterlies ka saath rahega. 6:11 pe aaj hone wala hai sunset. Kal subha thodi bahut barish ho sakti hai, lekin afternoon jaake it's going to be cloudy patches. All in all, it's going to be a okay day.
12: Drive Show with Sandy and Rusbe, brought to you by Beds R Us, Manukau and Pukekohe. Massive home show deals available in store now. Only at Beds R Us, Manukau and Pukekohe. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
0: Power Drive at 5. Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen. Drive Show with Sandy and Rusbe.
20: Masti karenge, mauj kaatenge, garda paar denge.
19: 5 baj chuke hai, Power Drive at 5. Aap sun rahe hai The Drive Show with Sandy and Rusbe.
21: A very, very good evening to you. वैसे good evening क्या अभी तो धीरे धीरे डे लाइट कुछ बढ़ने लगेगी तो शायद आफ्टरनून बोलना पड़ जाएगा
19: नहीं यार, अभी बजे भी गुड इवनिंग ही 5 बजे तक
21: अभी वैसे गुड इवनिंग ही होता है 5 बजे पर कभी कभी होता है ना समर में देन आफ्टरनून लगना शुरू हो जाता है 5 बजे भी देर तक अंधेरा होता है तो उस वजह से बाय द वे मैंने एक पढ़ा नया स्कैम
19: और
21: बहुत ही क्रीपी स्कैम है ये
19: बताओ
21: दिस पर्सन पोस्टेड अबाउट इट ही सेड कि जस्ट हैड द क्रीपीएस्ट स्कैम एवर हैपन 20 मिनट्स अगो मतलब ऑफ कोर्स इसको टाइम हो गया अभी ही गॉट अ कॉल फ्रॉम हिज वाइफ टेलिंग हिम शी फॉरगॉट हर वॉलेट एंड नीडेड द क्रेडिट कार्ड टू पे फॉर हर गैस एक्सेप्ट ही सेड माय वाइफ वाज एट होम विद मी एंड ड्राइव्स अ टेस्ला
19: ओह माय गॉड
21: या सेम वॉइस बिट ऑफ दो But weird thing, 100% sounded just like her.
19: Wow.
21: Yeah. So, agar uski wife ghar pe nahi hoti aur uske paas Tesla nahi hoti, dusri gas wali gaadi hoti, to maybe wo is cab mein phas jata.
19: Wow, man.
21: So, he said ki I entertained it for a while to get more out of it. And he was confused ki must be some sort of voice deep fake. The response were too fast for AI. I think it was a voice filter. I wish I had thought to record it. So the future is about to get weird. ये कह सकते हैं हम scams को लेके.
19: यार मुझे लग रहा है कि हमको कितने trust issues होने वाले हैं ना आगे चलके.
21: Yeah, मतलब
19: this. आगे वाले generations को और कितना trust issue होगा.
21: But that's the thing ना कि जैसे technologies आगे बढ़ती है रुझबे उसी फोर्स में जो स्कैम्स है वो सारी चीज़ें उन टेक्नोलॉजीज को यूज़ करके वो भी आगे बढ़ते हैं नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ आर देयर
19: और हमारे ट्रस्ट इश्यूज भी बढ़ते हैं हाँ यार
21: या ऑफ कोर्स यार तो पहले ये स्कैम वगैरह इतने नहीं होते थे ना होते थे लेकिन इतने बड़े नहीं होते थे
19: पहले के स्कैम थोड़े मतलब थोड़े एमेच्योर टाइप के होते थे ना लेट्स गो ऑन टू व्हाट हैज बीन द मोस्ट एमेच्योर स्कैम जिसमें आप फंसे हो Like, मेरे को मैं बोलूँ like, मतलब बहुत ही एविडेंट स्कैम जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वो मल्टी लेवल मार्केटिंग जहाँ पे आपको बोलते हैं कि अरे तुम ये ले लो
21: इतने मेंबर्स बनाओ हाँ या पिरामिड स्कीम
19: तो वो आई थिंक सबसे ऑब्वियस स्कैम है वो लेकिन उसमें फिर भी लोग फंसते हैं
21: हाँ
19: क्योंकि वो बेचा ही जाता है ऐसे वे में कि अरे पैसा ही पैसा होगा
21: और मे बी जो तुम्हें बेच रहा है उसको भी नहीं पता है कि वो भी स्कैम में है
19: हाँ मे बी दैट्स
21: व्हाई पिरामिड स्कीम है ना वो
19: हाँ इसलिए वो इतने कन्विक्शन के साथ बेच रहा भी है ना वो चीज
21: या
19: बट फिर
21: तुमने कभी वो स्कैम के बारे में सुना है कि इतना पैसा तुम्हें डिपॉजिट कराना है इतने दिनों में डबल ट्रिपल हो जाएगा
19: वो लक्ष्मी स्कीम लक्ष्मी फंड लक्ष्मी चिट फंड
21: अच्छा नहीं मुझे नाम नहीं पता है बट दिस वाज वंस अपॉन अ टाइम अ स्कैम एज वेल
19: हेरा फेरी में ना जो दिखाया लक्ष्मी लक्ष्मी चिट फंड,
21: या या
19: जहाँ पे इतने डालो, 1 लाख डालो और 10 दिन में डबल लिया,
21: तुम्हारे इतने हो जाएंगे. तो आप ही बताइएगा कि आपने ऐसे कौन से स्कैम्स के बारे में सुना है जो अब गायब हो चुके हैं, मतलब धीरे धीरे विद टाइम वो स्कैम जो है वो गायब हो चुके हैं बिकॉज नई टेक्नोलॉजी के साथ नए स्कैम्स आ चुके हैं. अब ये देखो ना, वॉइस वाला स्कैम, कि जिसमें इससे पहले भी पिछले साल, पिछले 2-3 सालों में एक और स्कैम था जिसमें कोई आपको कॉल करके बोलता है कि, या मैसेज करके आपको बोलते हैं कि ये आपके घर से यू नो सिमिलर कोई मेंबर है आपका घर का एंड वो किसी चीज़ में फंसे हुए हैं और पुलिस उनको पकड़ के ले गई है, निकालने में इतने पैसे चाहिए होंगे. एंड स्पेशली ओवरसीज के साथ ये काफी ज्यादा हो रहा था.
19: अरे वो बेसिक लेवल स्कैम वो भी होता है ना, काफी बार इंस्टाग्राम पे फेक प्रोफाइल बन जा रहा था बीच में, काफी लोगों के फेक प्रोफाइल बन रहे थे और फिर वो लोगों के साथ चैटे कर रहे अपने ग्रुप्स के साथ और बोल रहे कि अरे बाय द वे मेरे को पैसे की जरूरत है, पैसे दे. और कितने लोग उसमें भी फंसे, 5,000 लोगों ने पे किए ऑलमोस्ट.
21: सो बिफोर यू सेंड मनी टू एनीवन, बिफोर यू गिव क्रेडिट कार्ड डिटेल्स टू एनीवन, वैसे तो आप करो मत, लेकिन अगर आप कर रहे हैं तो ट्रस्टवर्दी पर्सन के साथ ही करो. पहले डबल ट्रिपल पता नहीं कितनी बार चेक करके कि किससे आप बात कर रहे हो, उसके बाद आप You do what India you have
19: में,
21: to do.
19: India में तो नेक्स्ट लेवल और स्कैम्स हो रहे हैं. वहाँ पे तो लिटरली वो फोन पे बात करते करते लोगों के क्रेडिट कार्ड खाली कर रहे हैं.
21: फोन पे
19: बात करते करते. By just asking them, एक कोई बोलते कि यार तुमको अभी एक मैसेज आया होगा, कोई नंबर होगा, कुछ तो भी ऐसे करके वो नेट कोड ले लेते हैं उसमें से.
21: और वहाँ पे इतने ओटीपी चलते हैं, इतने ओटीपी हर काम के लिए आपको एक ओटीपी आता है, शॉपिंग कर रहे हो वहाँ पे ओटीपी आता है, हर जगह पे ओटीपी आता है. तो फंसना भी वो सिक्योर भी सिक्योरिटी के लिए होता है वैसे ओटीपी.
19: हाँ लेकिन हर एक चीज के लिए अगर तुम ओटीपी लोगे तो फिर क्या ही सिक्योरिटी बाकी रहेगी ना,
21: स्कैम बढ़ जाएंगे ना,
19: स्कैम बढ़ जा रहे हैं इसलिए बहुत. एनीवे आज हम आपके लिए एक और सेगमेंट लेकर आ रहे हैं बिकॉज टुडे इज मंडे, देसी और नॉट सो देसी. इसमें हम आपको एक बिहेवियर के बारे में पूछते हैं एंड आपने बताना है कि ये जो बिहेवियर है वो देसी है या नॉट सो देसी बिहेवियर है. वेल ओवर द वीकेंड्स काफी लोगों के साथ बहुत सारे किस्से होते हैं.
21: आपके साथ कुछ हुआ है जो आप एड्रेस करना चाहते हैं कि क्या ये सिर्फ देसी लोग करते हैं या बाकी भी करते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं.
19: आज हमको कॉल करके बताइए आप. अभी हम सॉन्ग प्ले कर रहे हैं. इफ यू डोंट लाइक टू स्पीक ऑन एयर यू गिव अस अ कॉल, वी विल टॉक ऑफ एयर. 0800-004-866 इज द नंबर. गिव अस अ कॉल एंड लेट्स हैव अ चैट एंड अंडरस्टैंड कि ये देसी है या नॉट सो देसी है.

0: You're listening to Hum Playing Bollywood's Biggest Hits. आपके लिए यहाँ पे हम एक टॉपिक भी लेकर आ रहे हैं और वो टॉपिक है अभी
1: देसी और नॉट सो देसी.
0: So Sandy, देसी नॉट सो देसी बिहेवियर में आज क्या ऐसा कौन सा बिहेवियर है जिसके बारे में आप बात करना चाहेंगे?
2: So आपको पता नहीं ये देसी बिहेवियर है या फिर देसी बिहेवियर नहीं है. पार्टी से, गेट टुगेदर से या फिर रेस्टोरेंट से लेफ्ट ओवर्स घर पे लेके जाना,
0: टेक अवे बॉक्स में,
2: टेक अवे बॉक्स में या फिर किसी भी डब्बे, अगर किसी के घर पे गेट टुगेदर से आप वापस आ रहे हो तो उनके डब्बों में लेके जाना.
0: या आई थिंक देसी है फॉर श्योर.
2: ये देसी बिहेवियर है क्या? नॉट सो देसी नहीं है क्या?
0: आई मतलब मैंने बहुत बार देखा है कि जो नॉट सो देसी है वो रेस्टोरेंट में से भी टेक अवे नहीं लेते. वो वेस्ट कर देते उनका पूरा प्लेट का खाना
2: या खा लेते हैं.
0: या हाँ मतलब
2: वो खा ही लेते हैं बेसिकली,
0: या तो खा लेंगे या तो फिर वो बाकी का वेस्ट कर देंगे.
2: आपको क्या लगता है, टेकिंग होम लेफ्ट ओवर्स फ्रॉम अ पार्टी, गेट टुगेदर या रेस्टोरेंट, इज इट देसी बिहेवियर या फिर नॉट सो देसी बिहेवियर? आपके ऑब्जर्वेशन क्या कहती है और आप क्या करते हैं?
0: आप क्या करते हो सैंडी?
2: व्हाट डू यू डू?
0: लाइक
2: मी, मैं इतना नहीं लेके जाती हूँ.
0: आप नहीं लेके जाते हो टेक अवे?
2: या बहुत कम, बहुत कम. अगर ज़्यादा रेस्टोरेंट में अगर ज़्यादा बच गया है अच्छी क्वांटिटी में तो मैं डेफिनेटली फिर लेके जाऊँगी.
0: या
2: एंड इफ आई लाइक्ड इट,
0: एंड इफ यू लाइक्ड इट आल्सो.
2: या क्योंकि मेरे को फिर घर जाके वेस्ट नहीं करना है वो.
0: 0800-004-866 आप भी यहाँ पे कॉल कीजिए. और प्लस घर पे डिस्पोज करना और महंगा हो जाता है ना.
2: तो वही बोलने वाली थी मैं कि रेदर देन वहीं पे हो जाए ना
0: वहीं पे डिस्पोज हो जाए. मैं हमेशा टेक अवे लेने का प्रेफर करता हूँ. मुझे क्योंकि मेरे को ऐसे ये भी नहीं है कि मैं लेफ्ट ओवर फूड नहीं खाता हूँ. मेरे को पसंद है,
2: मैं भी खाती हूँ. ऐसा नहीं घर पे लेफ्ट ओवर फूड मैं खा लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है. घर पे जैसे आज कुछ बना है वो कल भी मैं खा लूंगी. That is totally okay for me.
0: और मैं रेस्टोरेंट में भी अगर शाम को गया हूँ खाने के लिए फिर अगले दिन भी मैं खा लूंगा उसको. मतलब रेस्टोरेंट का भी खाना मैं खा सकता हूँ एक दिन बाद.
3: वेरी गुड. आई थिंक इट्स नॉट सो देसी बिकॉज काम पे भी मैंने देखा जब शेयर्ड मॉर्निंग थी या लंचेस होते हैं या बाहर जाते हैं किसी फेयरवेल में सभी लोग बोलते हैं कि अच्छा बचा है किसी को ये लेके जाना है या वो लेके जाना है तो ले जाते हैं लोग. इंडियन रेस्टोरेंट में तो मैं इंटेंशनली एक्स्ट्रा ऑर्डर कर चुकी है, मेरे कल का लंच है.
0: हम लोग का मोस्टली वो प्लानिंग होता है ना कि अरे नेक्स्ट दिन लंच के लिए भी यहाँ भी ऑर्डर कर लेते हैं तो जो बाकी रहेगा वो टेक अवे कर लेंगे ऐसा.
3: हाँ ऐसे कोई अगर हाई एंड रेस्टोरेंट में गए चाहे मुझे अच्छा भी नहीं लगा ऐसे में ये सिर में नहीं लेती क्योंकि वैसे थोड़ा इज्जत बचाने का रहता है ना कि
2: अरे

0: So what is the moral of the story?
1: Moral of the story is, it's a hesitancy जो होती है.
0: Moral of the story
2: is, ये है कि अगर जो देसी होते वो टेक अवे लेके नहीं आते, वो घर से ही टेक अवे लेके जाते बाहर खाने के लिए.
1: Good point. आगे वापस उसी टॉपिक के ऊपर कि घर से बना के लेके जाओ खाने के लिए.
0: That is actually that is a very देसी बिहेवियर ना.
1: Yeah.
0: कि हम बाहर से लेकर जाते हैं कि यार यहाँ पे ना ये नहीं मिलता है.
1: मैंने खुद रुजबे को देखा हुआ है, कहीं पे वो जाने वाला था, उससे पहले इसने अपना टिफिन खाली किया कि वहां पे जाके कुछ और खाना पड़ेगा, मैं ये हेल्थी वाला खा के जाता हूँ.
0: हाँ.
1: या वही मैं कह रही हूँ कि वी डू दिस.
0: Yeah, we
2: और
0: have
2: उसके भी ज़्यादा not so देसी behavior ये है कि किसी ने dinner पे बुलाया तो breakfast और lunch मत खाओ, वहीं पर जाके खाएंगे.
1: ये भी देखा है मैंने.
0: यार मेरे साथ मेरे पास point करके सब कुछ भी देखा है आपने यार.
1: अरे मैं क्या बोलूँ, भी experience देखा है मैंने तो क्या बोलू ना अर्शना.
2: बिल्कुल हम किसी पे पॉइंट नहीं कर रहे हैं, just saying.
1: वही ना, वो खुद पे ले रहा है.
0: That's right. हर्ष वैसे आप लाइन पर रहिए, आपसे बात करनी है थोड़ी हमको.
1: होल्ड कीजिए आप.
0: ठीक है. बट थैंक यू सो मच यहाँ पे कॉल करने के लिए. एनीवे अगर आप भी शेयर करना चाहते हो कि इज डू यू थिंक यू आल्सो डू इट देसी बिहेवियर नॉट सो देसी बिहेवियर, टेक अवे लेते हो आप रेस्टोरेंट से, तो आप भी यहाँ पे शेयर कर सकते हो हमारे साथ. हाय, आपका स्वागत है.
3: हमें ये तो मालूम नहीं है, तो हमें लगता ही था ये लेके जाना अच्छा है. हमें लगता था अरे ये लोग क्या कर रहे हैं डिब्बे में, वापस पक्के ले जा रहे हैं बचा हुआ खाना, जुट का खाना. पांच साल दस साल बाद देखा लोग क्या लेफ्ट ओवर, वो तो ऐसे पहुंच के ले जा रहे हैं जैसे चम्मच बीच में बची ना जाए कोई.
1: तो पूरा वसूलेंगे.
3: पूरा वो एक्स्ट्रा पहुँच लेते हैं जैसे पता नहीं लगना पड़े. तो अभी थोड़ा डिफरेंट हो गया ये देसी नॉट देसी नॉट श्योर.
1: एक और मेरे को बात बताइए, आपने कभी अपनी होम कंट्री में नोटिस किया था ये? आपकी होम कंट्री में कहाँ से आप?
3: दिल्ली से.
1: दिल्ली से. तो दिल्ली में आपने कभी नोटिस किया था कि वहाँ पे अगर आप रेस्टोरेंट में कहीं पे जाते हैं तो वहाँ से आप लेफ्ट ओवर साथ में लेके जाते हैं?
3: वहाँ तो मजाक उड़ाएंगे लोग आपका.
1: वही मुझे लगता है. सी वहाँ पे होम कंट्री में नहीं किया है कभी.
3: तो लोग देखेंगे अरे ये कर क्या रहा, तुम भिखारी भिखारी आ गया क्या होटल में.
0: अच्छा ऐसा होता
3: है. यार ये स्टैंडर्ड है
0: नॉर्मल है. मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूँ.
1: मैंने भी कभी, मैंने नहीं किया है वहाँ पे भी. या
0: ओके
3: अभी भी नहीं कर सकते आप. अभी देखिए यहाँ आदत है आप लोगों को, या हम तो खैर हम क्या तो चलो बच गया. लेकिन वहाँ जाके आप, मैंने नहीं सुना कभी वहाँ पे कोई डिब्बा देता हो आपको ले जाओ घर पे, या मैंने सुना
1: है. एक्चुअली मैं यहीं पे आके करना शुरू किया है.
0: यहाँ पे हम लोग मुझे
1: स्ट्रगल करते हैं ना.
0: स्ट्रगल नहीं करते.
3: आपने कहा ना दूसरे दिन के लिए भी हो जाता ना. दूसरे दिन का क्या, अभी दोपहर का शाम को नहीं कुछ सोचता पता, पास में कोई रेडी होगी वहीं जाके खा लेंगे कोई.
0: अरे बट आप ये सोचो ना कि जो हमें 200-250 रुपए में वहाँ पे मिलता है उसके हम यहाँ पे $15-20 अगर पे कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ऐसा बोलेगा ना कि भाई हर एक बूंद लेकर जाऊंगा मैं.
3: रोज डॉलर की बात नहीं होती, ये माइंड सेट हो जाता धीरे धीरे सभी का. डॉलर जिनके पास बहुत ज्यादा नहीं है, अब इंडिया में भी वैसे कोई जो नहीं भी वेल ऑफ है वो भी मुझे नहीं दिखाई दिया कभी भी होटल में से वो लेके गया हुआ था समोसा बच गया जाए किसी का. देखा नहीं, हो सकता करते हो लोग क्योंकि हम ये नहीं कहते हमने पूरी दुनिया घूम ली.
1: बिल्कुल.
3: लेकिन हमने नहीं कभी ऑब्जर्व किया भाई होटल में बच गया खाना तो चलो भाई दे दो थोड़ा सा ना. लगते ऑर्डर जरूर कर लेंगे. हाँ फ्रेश ऑर्डर. हाँ चार पूरी लगा दो छोले कुचले जो भी लेके जाना आपने. मोमोज ऐसा नहीं सुना दो मोमो बच गया यार जी दो दे देने.
1: पॉइंट
0: है यार. क्या नाम है आपका भाई?
3: जस्सा बोल रहा हूँ.
0: क्या?
3: जस्सा.
1: जस्सा ठीक है. थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल.
0: थैंक यू.
3: थैंक यू.
1: बाय बाय.
3: थैंक यू.

0: हॉल बना दे।
1: Brought to you by Lifestyle Furniture, Manuko, Mount Wellington and Westgate, up to 60% off on now.
2: चार्टबस्टर्स में आपके लिए एक मस्त गाना लेकर आएंगे, लेकिन उससे पहले एक सैड न्यूज़ आपके साथ यहाँ पे शेयर करना चाह रहे हैं कि एक इंसान की मौत हुई एंड इट वाज बिकॉज उन्हें टाइम पे डिफिब्रिलेटर नहीं मिला. डिफिब्रिलेटर होता है बेसिकली जब आपका मतलब फर्स्ट एड में ये यूज़ होता है काफ़ी बार, जब आपका हार्ट स्टॉप हो जाता, मतलब इट्स बेसिकली यूज टू स्टॉप द हार्ट एंड रीस्टार्ट इट.
3: ओके.
2: हार्ट अटैक अगर किसी को हुआ है और उनको वापस से यू नो रीस्टार्ट करवाना है या उनकी लाइफ सेव करनी है तो डिफिब्रिलेटर यूज होता है उसके लिए. सो अपेरेंटली माउंट एल्बर्ट मेडिकल सेंटर के बाहर ये हुआ इंसिडेंट, जहाँ पे कुछ लोग गए अंदर उनको मांगने के लिए, बट देयर वाज सम मिसकम्युनिकेशन. रिसेप्शनिस्ट को लगा कि वो जंप स्टार्ट मांग रहे.
3: ओह नो.
2: Kind of same and thing, right?
3: Yeah, because it's the same.
2: मतलब jump start is used for car. Jump start is used for car. नहीं Sandy, jump start is used for a car.
3: Yeah.
2: Battery जब उसकी down हो जाती है.
3: अच्छा, मुझे लगा कि उसका भी एक और होता है जिसको I thought that's name for that purpose.
2: नहीं नहीं, एक गाड़ी चालू करने के लिए, एक इंसान को चालू करने के लिए. तो वो बेसिकली
3: तो उसको ये लगा कि वो जंप स्टार्ट के बारे में बात कर रहे हैं.
2: उनको लगा कि जंप स्टार्ट मांग रहे हैं, तो उन्होंने बोला जंप स्टार्ट नहीं है हमारे पास यहाँ पे ऐसा कुछ. मतलब अभी आर्टिकल में जितना पढ़ने में आ रहा है उतना, बट काफी लोगों ने मल्टीपल टाइम्स वहाँ पे जाके रिसेप्शन से बात की एंड उनको इग्नोर किया, मतलब उनकी रिक्वेस्ट को इग्नोर किया, ऐसा आर्टिकल में बोला है. वी डोंट नो व्हाट द रियलिटी व्हाट हैज हैपेंड, बट द रियलिटी दैट हैज टेकन प्लेस इज दैट द पर्सन हैज लॉस्ट देयर लाइफ.
3: Oh my God.
2: Yeah, because काफ़ी बार in fact there is online maps पे भी available होता है जहाँ पे आप देख सकते हो कि कहाँ पे public to use defibrillators है.
3: Oh, is it available like this? मुझे ये पता भी नहीं था.
2: Yeah, so there are. So मैंने first aid का course जब किया था अभी recently, तब मुझे पता चला इसके बारे में कि firstly तो you need to know how to use it also and very simple instructions होते हैं.
3: But you need to be certified.
2: You don't have to be certified.
3: Okay.
2: But you can listen to the instructions and you can do it.
3: Okay.
2: There is first aid training that you can take for sure. But अगर नहीं भी लिया आपने training, आप बस वो सुन के you can help someone.
3: Okay.
2: But it's good to take that training, first aid training.
3: I think so. It's very important.
2: सिखाते हैं. And it saves a lot of lives as well. So yeah. I think this is some a good conversation to have as well, जहाँ पे आप अपने घर पे बात करो और first aid में क्या involved होता है, क्या training अगर आप ले सकते हो कहीं पे जाके, तो बहुत जरूरी होता है. I think every household में at least one person should be aware of first aid.
3: One person, और मेरे को लगता है कि बच्चों को भी काफी चीजों के बारे में पता होना चाहिए इस इन चीजों में.
2: Yeah, at least the kids should know where the first aid box.
3: Yeah,
2: घर का first aid box.
3: Awareness होनी चाहिए कि कौन सी चीज घर पे कभी जरूरत पड़े तो कहाँ पे है. A little conversations you need to have in the house.
2: Yeah, so और भी बातें करेंगे इसके बारे में, but very unfortunate incident that's taken place. Well, पिछले घंटे सैंडी आप बात कर रहे थे बिग बॉस में, इस बार आ गया है काजी. तो उसी का ये गाना गाया हुआ गाना, I think उसने गाया ना ये गाना.
3: Yeah, yeah.
2: तो अब आपके लिए on hum right now, enjoy.

0: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe. Massive home show deals available in store now. Only at Beds R Us Manukau and Pukekohe. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku. Hum, accurate traffic.
1: Delicious, tasty cookie dough bars.
2: Clear overnight for Auckland with a low of 10. Town to Constellation Drive, 27 minutes to Silverdale 42. Very heavy northbound Oniwa Road to Northcote Road. To Massey, 22 minutes. On the southern to Manukau, 33. Drury, 47. It's heavy northbound from Mount Wellington to Green Lane. Southwestern slow Massey Road to Mangere Bridge. All train services are on time.
1: Tasty cookie dough bars. A delicious cookie dough snack bar that the whole family will love.
3: रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है, अपनों के नाम संदेश भेजे जा सकते हैं, मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना। उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं। कशिश प्रीमियम बासमती राइस। Eat better, live better. For more information, log in to www.kashishfood.co.nz. Available at all leading stores.
4: My mate Sam hurt his shoulder at basketball. He got sorted with a rehab plan and was doing his exercises, but he started feeling a bit down. So me and the boys made sure to visit him, and he helped with some coaching, so he still felt like part of the team. It meant he stayed active and on top of the injury. Then when he recovered, he was back to his awesome self.
5: If you've got a sprain or strain, staying connected to friends, whānau and things you love doing can help you get back to what matters sooner. Find out more at acc.co.nz/recover sooner.
6: This is your business. This is your business supercharged with the help of Xero Accounting Software. This is managing cash flow. This is managing your cash flow with the help of Xero Accounting Software. These are your customers paying you. These are your customers having more ways to pay you with the help of Xero Accounting Software. This is your business supercharged with the help of Xero, helping you sort your cash flow by giving your customers more ways to pay, so now you can focus on making your business boom. Supercharge your business today with the help of Xero.
7: Hey Neha, congratulations on your first home. तूने तो कहा था कि दो-दो banks ने loan देने से और एक famous broker ने तो case लेने से ही मना कर दिया था. ये घर कैसे?
8: अरे ये तो लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला का कमाल है. एक रियल एस्टेट वाले ने उन्हें सजेस्ट किया, मैंने उन्हें फेसबुक पर ढूंढा और डायरेक्टली कांटेक्ट किया.
7: नेहा अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ.
9: फर्स्ट होम बाया बनना है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है तो आज ही कॉल करें लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला को ऑन 0800 लॉजिक गुरु.
10: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ? बोली, बस मेरा फोकस है.
7: हाँ. अच्छा
10: बताओ तुम्हारा फोकस? फोकस साडा कुछ नहीं.
7: मिसेस सिंह.
11: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन ने.
12: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन, फोकस किचन, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू. कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz.
13: Are you ready to go home?
0: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe. Massive home show deals available in store now. Only at Beds R Us Manukau and Pukekohe. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
14: Power Drive at 5.
15: Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen.
16: Power Drive at 5, आप सुन रहे हैं 5:44 right now on the clock. And आपको बता दें, आज शाम 6 बजे के बाद ट्रेंड मेकर्स में पहले तो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं एक थीम. आज सेलिब्रेट कर रहे हैं हम एक बहुत ही वर्सटाइल एक्टर, सिंगर, एमसी, रेडियो होस्ट, वीडियो होस्ट, सब कुछ है ये.
17: सब कुछ है ये. और मेरे को इनका अच्छा लगता था जब ये रेडियो शो करते अच्छा थे.
16: ओ, रेडियो आप सुनते थे इनका रेडियो
17: नहीं,
16: शो?
17: नहीं, जो बाद में मेरे को पता चला कि रेडियो शो जब ये करते थे तो जो साइन ऑफ इनका था वो था आयुष्मान भव.
16: जो उनका नाम ही है.
17: जो उनका नाम ही है.
16: तो आयुष्मान खुराना को आज शाउट आउट दे रहे हैं बिकॉज आज उनका बर्थडे है.
17: इमेजिन क्या गाने आप सुनने वाले हैं, ओनली एंड ओनली बाय आयुष्मान खुराना.
16: मेरा एक पर्सनल मेरे को फेवरेट है आयुष्मान खुराना का गाना जो मुझे सुनना है सैंडी आज. इट इज अ टी सीरीज मिक्स टेप. आयुष्मान खुराना ने खुद ने गाया है वो गाने. उसमें वो नजम नजम गा रहा है. फिर उसमें वो दूसरे एक गाना भी गा रहा है.
17: अभी तो वैसे हमारे पास लिस्ट बहुत बड़ी है.
16: बहुत बड़ी लिस्ट है ना.
17: बहुत बड़ी लिस्ट है. सो लेट्स सी, आपका कौन सा आयुष्मान खुराना का फेवरेट गाना है आप भी लिख के भेजिए. 5599 इज अ नंबर. बाय द वे, हम कीर्तन संग्रह की रिकॉर्डिंग फ्राइडे 25 सितंबर को वैदिक सेंटर में होने वाली है पापाटोए में. रिकॉर्डेड कलाकारों के कीर्तन आप रूवा पर, हम फिजी कीर्तन संग्रह पर बाद में सुन पाएंगे. सो हम टीम को आप ज्वाइन कीजिएगा एंड एंट्री इज फ्री, रिफ्रेशमेंट्स एंड कावा विल बी ऑन सेल. आपको अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी टू विन द प्राइजेस. एंड इसी के साथ हमारे जो पॉडकास्ट है इनको भी आप ज़रूर सुनेगा, जहाँ पे ब्रेकफास्ट कैचअप में बात हुई है बियॉन्ड द डेट, इसके बारे में सक्सेस का मतलब क्या है. अनफिल्टर्ड में हमने एक बहुत ही मेहनत करके हमने एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया है और तानिया पिंटो के साथ, जो कि सीनियर ट्रस्टी है पब्लिक ट्रस्ट में. इट्स अबाउट योर हाउस, अबाउट योर कीवी सेवर, अबाउट योर ज्वेलरी, अबाउट योर बिजनेस. ये सब के मायने क्या रह जाते हैं आपके बाद, इसके ऊपर हमारा पॉडकास्ट है.
16: किसके पास जाएंगे वो आपके बाद? तो दिस इज इट्स अ टॉपिक अराउंड अ डिफिकल्ट कन्वर्सेशन दैट इज डन इज नॉट डन एक्चुअली इन एशियन हाउसहोल्ड्स एंड दैट इज अबाउट लाइफ आफ्टर डेथ. वैसे नहीं कि आप मरने के बाद क्या करोगे, आपके चाहने वाले आपको
17: उनकी
16: लाइफ क्या होने वाली है आफ्टर योर डेथ. वेरी टफ वन, बट आई थिंक इट्स अ मस्ट लिसन फॉर एवरी हाउसहोल्ड.
14: लेट्स गो स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट. Unlock your property's true sale value with NZPMI, your local

दबाए 0800 रचना, इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना, दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन।

0: to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen.
1: Accurate traffic.
2: Monarch, a finish worth celebrating.
3: Clear overnight for Auckland with a low of 10. Town to Constellation Drive, taking 27 minutes to Silverdale 40 on the northwest, and a bit slow from Waterview to Rosebank. On the southern, town to Manukau 24 minutes, Drury 37. It's just heavy heading north from Mount Wellington to Green Lane. Southwest and slow from Massey Road to Mangere Bridge, and south from Lambie Drive to the southern.
2: Save time without compromising quality. Monarch's premium paint tools deliver a finish worth celebrating.
4: It's normal to feel low sometimes. Just like how the weather changes, so can our moods. Pay attention to your feelings. Reach in and check how you're doing. Reach out and talk to someone you trust. If you need to talk with a trusted professional, Asian Family Services is here to support. Call the Asian Helpline on 0800 862 342 for free, confidential support. If you or someone you know is in immediate danger, please call 111 or emergency services.
1: When India comes to town, Aotearoa feels different. Tickets are on sale now at nzc.nz. Be there, because this isn't cricket. This is Black Caps versus India.
5: Farmers Manchester Mania sale is now on, with an amazing 50% off duvet covers, sheets, duvet inners, pillows and more. 50% off towels by top brands like Sheridan. Plus 50% off sleepyhead beds. Shop Farmers Manchester Mania. Conditions and exclusions apply.
6: 4.95% finance on your next car. Exclusive to West City Auto Group. Right now, get into the Havel Jolion, Havelit 6, Tank 300 or Canon Ute range with 4.95% per annum fixed finance for 48 months. With just 20% deposit. Whether you're after something stylish, practical, rugged or ready for work, they've got something for everyone. But hurry, this exclusive offer won't last forever. Speak with Jimmy Taylor and team at West City GWM. For T's and C's, head to westcityautogroup.nz.
7: Get ready, Auckland City. This Thursday, be first through the doors at Nolim and Queen Street for grand opening deals too good to miss. Save big on a huge range of tech, enjoy giveaways, a live DJ and more at Nolim and Queen Street. T's and C's apply.
8: Get into New Zealand's greatest range of garden sheds online at Trade Tested. From classic steel sheds to fancy designer sheds to amazing tiny houses, Trade Tested is the best place to sort your shed out. Make your backyard great today.
9: Already got a quote for your bathroomware? But what about a second opinion? Email your cart or your list to Elite Bathroomware. Right now, take advantage of their massive spring sale and experienced staff. Quality reassurance, trending coloured tapware ranges, natural timber vanities, concrete freestanding baths, and everything else bathroomware. September only, spring bathroom sale in-store only. Or apply for VIP access online. Elite Bathroomware, market leaders in designer bathrooms. 59 Allens Road, East Tāmaki. See you there.
10: Time check.
11: Brought to you by Mann Tyres. For all kinds of tyres and mechanical services, open 7 days. Call Mann Tyres on 0800 00 00 10.
0: Hum News. Brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with logic.
12: Good evening, I'm Bridget Hastie with the latest at 6. New figures point to a milestone for tourism recovery. July arrivals were up 8.5% on the same time last year and exceeded pre-COVID levels for the month. Nick Brunsdon from Infometrics says the South Island in particular continues to shine.
13: Queenstown and Christchurch saw quite strong recovery. Christchurch arrival was up 11%, Queenstown up 20%. Auckland did have some recovery, up 5.4%, and Wellington arrivals continue to weaken.
12: Boaties are being reminded about the dangers when crossing bars after two deaths in Manawatū. A vessel capsized near the Tangimoana River mouth this morning. The Transport Accident Investigation Commission says river and harbour bars are hazardous places for small boats and skippers need to understand the conditions. The first weekday commute for Auckland City Rail Link has seen a surge in use. Auckland Transport says as of 5pm, an estimated 72,500 boardings were counted, which is 25,000 more than the same time last Monday. An Australian man has been arrested after footage surfaced of a three-year-old driving a ute. The video appears to show the child sitting in his lap with both hands on the wheel of the Toyota Hilux, with the dad controlling the pedals as it swerves through the suburban streets of Perth. To sport, while coach Dave Rennie may feel the All Blacks are making good progress, there has been a reality check from former Springboks coach Nick Mallett. Looking ahead to next year's World Cup and a potential quarter-final matchup, Mallett thinks the ABs must change their strategy. Rugby with All Blacks Travel and Hospitality.com. And the 18-player Silver Fern squad retains the 12 who won gold at the recent Commonwealth Games in Glasgow.
1: Sports News.
0: Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill.
4: हम परशोक सूचनाएं आप तक लाते हैं एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस
14: सूचित किया जाता है सतीश चंद शर्मिला शोभना और नीता के पिता सावित्री के पति सुरेन चंद की मृत्यु वाइटाकरी हॉस्पिटल में हो गई अंतिम संस्कार वेनसडे 16 सितंबर को दोपहर 1 बजे एंस फ्यूनरल होम में किया जाएगा जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 0273646393 पर कॉल कर सकते हैं सतीश चंद शर्मिला शोभना और नीता के पिता सावित्री के पति सुरेन चंद की मृत्यु वाइटाकरे हॉस्पिटल में हो गई अंतिम संस्कार वेनसडे 16 सितंबर को दोपहर 1 बजे एंस फ्यूनरल होम में किया जाएगा जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 0273646393 पर कॉल कर सकते हैं बिनेश समर आत्माराम स्नेहलता और बेला सिंह की माँ उषा समर की सास भूतपूर्व लोकाला बे सुआ निवासी स्वर्गीय राम समर की पत्नी जसोदा कुमार की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई अंतिम संस्कार वेनसडे दोपहर 3:30 बजे एंस फ्यूनरल होम में किया जाएगा श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए बिनेश को कॉल करें 0214963321 पे बिनेश समर आत्माराम स्नेहलता और बेला सिंह की माँ उषा समर की सास भूतपूर्व लोकाला बे सुआ निवासी स्वर्गीय राम समर की पत्नी जसोदा समर की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई अंतिम संस्कार वेनसडे को दोपहर 3:30 बजे एंस फ्यूनरल होम में किया जाएगा श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए बिनेश को 0214963321 पर कॉल करें सूचित किया जाता है रातुमारा रोड नोम्बोआ फीजी के स्वर्गीय रामलाल के पुत्र एवोंडेल के प्रकाश लाल के पति ऑकलैंड के शिवनेश लाल तथा सिडनी ऑस्ट्रेलिया के शिवनील लाल के पिता फिजी में फॉर्मर नसीनो और सुआ सॉकर रेप एवोंडेल के सुनेश लाल की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई अंतिम संस्कार थर्सडे 17 सितंबर को दोपहर 1 बजे मनुकाओ मेमोरियल गार्डन्स विरी में किया जाएगा जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 0223104961 पर कॉल कर सकते हैं रतुमारा रोड नम्बुआ फिजी के स्वर्गीय रामलाल के पुत्र एवोंडेल के प्रकाश लाल के पति ऑकलैंड के शिवनेश लाल तथा सिडनी ऑस्ट्रेलिया के शिवनील लाल के पिता फिजी में फॉर्मर नसीनो और सुआ सॉकर रेप एवोंडेल के सुनेश लाल की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई अंतिम संस्कार थर्सडे 17 सितंबर को दोपहर 1 बजे मनुकाओ मेमोरियल गार्डन्स में किया जाएगा जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 0223104961 पर कॉल कर सकते हैं
4: शोक सूचनाएं वीकडेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी
0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
15: करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
1: Drive Show with Sandy and Rusby brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe. Massive home show deals available in store now. Only at Beds R Us Manukau and Pukekohe and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWN Havel and Omura Jaiku.
16: Let's go! 3, 2, 1.
0: Trend Makers. The Drive Show with Sandy and Rusby.
15: Masti karenge, mauj katenge, garda paad denge.
17: छह बज चुके हैं एंड आपका स्वागत है ट्रेंड मेकर्स में हाय सैंडी
18: गुड इवनिंग टू यू ट्रेंड मेकर्स में आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आयुष्मान खुराना को आयुष्मान खुराना आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं सो आयुष्मान खुराना की जर्नी आज हम सेलिब्रेट यहां पे करने वाले हैं जिनका रियल नेम इज निशांत खुराना
17: क्या बात कर रहे हो
18: Yeah, his real name is Nishant Khurana. Wow.
17: तो आयुष्मान खुराना कहाँ से आया उसका नाम यार?
18: नहीं पता मुझे आयुष्मान खुराना कहाँ से आया बढ़िया.
17: और एक तो वो भी बहुत मानते हैं मेरे को लग रहा है ये इसमें ना, because his spelling of like name का spelling is थोड़ा different ना.
18: Yeah, yeah. So his name was Nishant Khurana. He was born with Nishant Khurana only in Chandigarh of course. So his first TV appearance was not Roadies. At around 17, he appeared on channel V Pop Stars.
17: Oh wow.
18: Ab mujhe ye nahi pata tha before this. मुझे निशांत नाम नहीं पता था कि आयुष्मान खुराना का है. चैनल वी पे आए थे वो MTV से पहले. सो वहाँ पे वो गए थे इन 2002
17: में ही आए थे.
18: या मैन, हिज करियर स्टार्टेड लॉन्ग लॉन्ग बैक.
17: लेकिन देखो हमेशा से उसको करना ही था ना कुछ तो भी अराउंड टीवी या अराउंड स्क्रीन, तो इसलिए पहले से ट्राई किया. But yeah, I think one of the very successful actors who's not been in Bollywood, like who's not from Bollywood,
18: yeah.
17: Family is not from Bollywood, but has made a mark.
18: By the way, jo unka radio show tha na, uska naam tha Big Chai, Maan Na Maan, Main Tera Ayushman.
17: Arre, kya baat hai yaar.
18: So creative, right?
17: Yeah, very nice, yaar.
18: Big Chai. So
17: maan
18: yeah,
17: maan,
18: Ayushman.
17: Main Ayushman.
18: Maan Na Maan, Main Tera Ayushman.
17: अगर ऐसे ही अगर आपको मौका मिलता सैंडी कि एक आपके शो का नाम रखो जिसमें आप सैंडी रख सकते हो या आपका नाम रख सकते हो तो क्या आप क्या नाम रखते हैं?
18: सोचना पड़ेगा ना इसके बारे में.
17: टॉक, मैं बोलूं टॉक डीप विद संदीप.
18: नॉट रियली, मैं डीप बातें करती हूँ क्या?
17: तो
18: It should suit the personality, ना? आप बताओ क्या नाम होना चाहिए. रुजबे का शो होता उसके नाम पे क्या नाम होना चाहिए, सैंडी का शो होता उसके नाम पे क्या शो होना चाहिए. ड्राइव शो का नाम चेंज करके अगर आपको भी नाम रखना है तो वो क्या रखोगे?
17: मेरे शो का नाम बहुत सिंपल है.
18: हाँ.
17: Forget your bae, listen to रुजबे.
18: पहले था इसका ऑकलैंड का बे.
17: ऑकलैंड का बे
18: रुजबे.
17: तो अभी हो गया फॉरगेट योर बे, लिसन टू रुजबे. Anyway, अभी आज हम आयुष्मान खुराना के गाने सुन रहे हैं तो आपको स्टार्ट ऑफ करते विद दिस वेरी ब्यूटीफुल ट्रैक. उनकी सिंगल, उनका सिंगल
18: गाना है एंड वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सॉन्ग ऑफ आयुष्मान खुराना.

0: You're listening to Humpling Bollywood's Biggest Hits और Trend Makers में आज आयुष्मान खुराना को हम celebrate कर रहे हैं। 14 September 1984 को इनका birth हुआ था चंडीगढ़ में और उसके बाद उन्होंने master's degree भी लिया mass communication में from Punjab University और उन्होंने actively perform किया है college street theatre में भी।
1: So Punjab University उधर ही है चंडीगढ़ में है। सो या इन्होंने बहुत सारी मूवीज़ में काम किया एंड रोडीज़ में जब ये आए ना ड्यूरिंग रोडीज़ एक टास्क था इनका आयुष्मान खुराना का जहाँ पे इट इन्वॉल्व्ड स्पर्म डोनेशन
0: एंड इमेजिन द फर्स्ट मूवी दैट ही डिड वाज आल्सो अराउंड द टॉपिक ऑफ स्पर्म डोनेशन
1: 100% विकी डोनर बट विकी डोनर जैसी हमने मूवी देखी ना आई थिंक कोई एक पर्सन कोई भी पर्सन नहीं होगा जिसको ये मूवी क्रिंज लगी हो कि यार किस सब्जेक्ट के ऊपर मूवी बनाई है क्या किया है यू नो कई बार होता है कि यार ये क्या टॉपिक है बट आयुष्मान खुराना डिड इट सो वेल कि किसी को ये टॉपिक क्रिंज ही नहीं लगा एवरीवन वाज लाइक वाओ ही डिड सच अ गुड जॉब
0: नो ही डिड अ वेरी नेचुरल जॉब लाइक वो मूवी में ना मेरे को लगता है उस मूवी की राइटिंग भी बहुत बढ़िया रही है बिकॉज
1: राइटिंग
0: ही हैज being the voice of the society
1: yes.
0: वो immediately agree थोड़ी करता है वो करने में
1: yeah.
0: वो बोलता है कि ये क्या बात कर रहे हो अपनी identity छुपाता है
1: पहले
0: वो डर डर के चीजें कर रहा है
1: yeah.
0: फिर बाद में उसका पोल खुलता है फिर उसके बाद वो सारे उसके जो पूरा मूवी में जो उसका ट्रांजिशन रहा
1: है वो मेरे को लगता है बहुत ही effortless एक्टर है आयुष्मान खुराना जब आप उसकी एक्टिंग देखते हो ना मूवी देखते हैं हम तो हमें वो करेक्टर लगता है कि आयुष्मान खुराना वो करेक्टर जी रहा है ही इज नॉट प्लेइंग समवन
0: ही इज दैट कैरेक्टर
1: ही इज दैट कैरेक्टर
0: एंड ये मुझे इसीलिए मुझे कार्तिक आर्यन ना मैं नहीं इतना रिलेट कर पाता हूँ कार्तिक आर्यन के साथ
1: तुम वहां पे कैसे आ गए
0: क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट सेम ही मतलब देखो दोनों फ्रॉम नॉट फ्रॉम बॉलीवुड है ठीक
1: हाँ.
0: है लेकिन दोनों की पॉपुलैरिटी बहुत अच्छी है बट मुझे लगता है कि आयुष्मान खुराना इज सो टैलेंटेड and he's done such variety of roles usko uska utna due nahi mila hai jitna kartik aaryan ko mila hai
1: that's nahi mera take alag hai mereko lagta hai kartik aaryan ki apni hi jagah hai lekin jo aishman khurana ne jo kamaya hai nahi he's acting also mujhe achhi lagti hai mujhe unki kafi movies hai jo kafi logo ko nahi achhi lagi mujhe achhi lagi jaise shehzada
0: shehzada to achhi movie hai shehzada to achhi
1: lekin kafi ko movie achhi nahi lagi aur mereko sonu ki jitu ki sweetie bhi achhi lagi thi मतलब आई लाइक द काइंड ऑफ रोल ही डिड
0: स्वीटी भी अच्छी थी वैसे
1: हाँ, तो फिर प्रॉब्लम क्या है
0: उसकी एक्टिंग मतलब
1: बाय द वे वी आर नॉट डूइंग एंटी कार्तिक आर्यन शो राइट नाउ उसमें
0: नो यू आर राइट वी आर डूइंग आयुष्मान खुराना
1: या
0: वी शुड स्टिक टू आयुष्मान खुराना
1: या प्लीज
0: आयुष्मान खुराना और कार्तिक आर्यन कोई साथ में मूवी किए उन्होंने
1: आई डोंट थिंक सो
0: नहीं अभी तक नहीं किए ना वेल I don't know where these boys are यार आयुष्मान खुराना दिख रहे नहीं आजकल उनकी लास्ट मूवी वो थी उसके साथ यार वो हथौड़ा त्यागी के साथ कौन है उसका नाम के जयदीप अलावत के साथ
1: जयदीप
0: अलावत के साथ लास्ट मूवी एक्शन हीरो द एक्शन हीरो वन ऑफ द क्लास मूवीज
1: उसके बाद की ना आयुष्मान खुराना ने
0: की उसके बाद भी मूवी
1: या
0: ज्यादा दिखते नहीं है लेकिन अभी आजकल करते भी होंगे तो
1: कुछ भी हो तुम्हें मेरे को लगता है आयुष्मान खुराना की मूवी देखे बहुत टाइम हो गया
0: मुझे बहुत टाइम हो गया देखे लेकिन
1: अभी उसकी मूवी आई थी पति पत्नी और वो दो
0: हाँ इसलिए नहीं देखी ना आपने देखी वो मूवी
1: मैंने या देखी मैंने शुरुआत की मूवी की
0: शुरुआत की
1: मिडल तक भी पहुंची बट देन आई
0: गिव अप कर दिया
1: वो मूवी मुझे आयुष्मान खुराना की नहीं अच्छी लगी उसके पहले थामा मूवी आई थी
0: थामा मूवी वाज गुड
1: या देन ड्रीम गर्ल 2 एक्शन हीरो वाज इन 2022
0: हां बट वही मेरे को बहुत अच्छी लगी थी एक्चुअली वो टाइम पे एनीवे मूवी दैट एक्चुअली गॉट आयुष्मान खुराना इन बॉलीवुड उस मूवी का गाना और उनका गाया हुआ गाना आपके लिए इस बार एंजॉय कीजिए

0: ट्रेंड मेकर्स।
1: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है। जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है। हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है। We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations, 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927-88600.
2: Check out these fresh deals from New World North Island. Get pork shoulder roast bone-in, $9.99 per kilo. Or Dole Bobby bananas, $3.79 each. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
3: Gym, swim and move for under $10 a week for the first 12 weeks. That's less than a couple of coffees. And there's no joining fee. Search Auckland Council Pools and Leisure. T's and C's apply. Tāmaki Turiki. Altogether Auckland.
4: Naya hybrid dhoondh rahe ho? To Havel hi lo. Right now, Andrew Sims Merukau mein brand new Havel H6 hybrid drive away sirf 40,990 se. Plus on-road cost. No deposit finance lo. Apni trade-in ke liye zabardast price pao. Aur discover karo ki kyun zyada kiwis Havel choose kar rahe hain. Stylish, spacious aur technology se bhara hua. Wo bhi hybrid efficiency ke saath. Aaj hi visit karo Andrew Sims JWM Merukau. Havel hybrid. More for your money. Terms and conditions apply.
5: Hey Neha, congratulations on your first home. तूने तो कहा था कि दो दो banks ने loan देने से और एक famous broker ने तो case लेने से ही मना कर दिया था। ये घर कैसे?
6: अरे ये तो लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला का कमाल है। एक रियल एस्टेट वाले ने उन्हें सजेस्ट किया, मैंने उन्हें फेसबुक पर ढूंढा और डायरेक्टली कांटेक्ट किया।
5: नेहा, अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ।
7: फर्स्ट होम बाया बनना है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है तो आज ही कॉल करें लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला को ऑन 0800 लॉजिक गुरु।
8: Media Works Complaints, how can I help?
9: Yeah, hello?
8: Hi.
9: Hi, yeah, can you guys take a radio jingle out of my brain?
8: Oh, you mean like a jingle extraction? It's our job to put advertising in there.
9: Well, okay, well, what about something like a brain surgeon?
8: They'll probably just explain how repeat hearing puts things deep in your emotional memory, and I really don't think it's necessary. But yes, if you must, I do have the name of one.
9: Great, sing it to me.
10: Advertise with
11: Media Works.
10: New Zealand listens to us.
0: The beat of Bollywood.
12: World's best. हमारी कोई ब्रांच नहीं
13: है. Are you ready to go home?
14: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe. Massive home show deals available in store now. Only at Beds R Us Manukau and Pukekohe. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaku.

0: आप सुन रहे हैं हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर भी इन्होंने जीता है, आयुष्मान खुराना की। आज हम बात कर रहे हैं ट्रेंड मेकर्स में, उनका बर्थडे है आज, सेलिब्रेट कर रहे 14th ऑफ सितंबर को।
1: यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग करियर भी रहा है, चैनल वी से MTV रोडीज, रेडियो जॉकी, MTV VJ, TV होस्ट, बॉलीवुड एक्टर, प्लेबैक सिंगर, अवार्ड विनर। एंड देखा जाए बहुत सारे अवार्ड शोज जो होते हैं जैसे फिल्म फेयर अवार्ड्स, आईफा, बहुत सारी जगह पे इन्होंने होस्टिंग की है।
0: या एंड इफ यू लुक एट हिज 2020 के पहले का टाइम, जस्ट बिफोर 2020, ठीक है, ही हैज जस्ट गिवन बैक टू बैक हिट्स। दम लगा के हाइशा 2015 में हिट मूवी, बहुत अच्छी मूवी थी वो भी। बरेली की बर्फी बहुत अच्छी मूवी, शुभ मंगल सावधान हिट, अंधाधुन उसमें उनको नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला, फिर बधाई हो, आर्टिकल 15, ड्रीम गर्ल, बाला इतनी नहीं चली बट बाला भी एक बहुत ही अलग टॉपिक पे थी मेरे दिल के करीब और सर के भी। एंड देन आफ्टर दैट इट वाज शुभ मंगल ज्यादा सावधान, विच वाज अगेन ग्राउंड ब्रेकिंग फॉर मेन स्ट्रीम हिंदी सिनेमा, क्योंकि इसके ऊपर उन्होंने ओपनली एक गे रोमांटिक लीड का रोल प्ले किया था।
1: या सो एक्शन हीरो, उससे पहले वैसे डॉक्टर जी भी आई, अनेक मूवी भी आई,
0: बहुत अच्छी मूवी थी।
1: डॉक्टर जी वाज अनदर वन, देन एक्शन हीरो, ड्रीम गर्ल 2, थामा, सो ये सारी मूवीज उनकी आई है। अभी आई एम वेटिंग फॉर दिस वन मूवी जिसके लिए आयुष्मान खुराना का टोटली डिफरेंट फेस हम देखने वाले हैं, सूरज बरजातिया के साथ मूवी कर रहे हैं। ये प्रेम मोलिया, so प्रेम इज नाउ आयुष्मान खुराना।
0: नया प्रेम आ गया है मार्केट में।
1: सो मुझे लगता है आई एम वेटिंग दिस रोल ऑफ आयुष्मान खुराना।
0: सो और भी बातें करेंगे आयुष्मान खुराना के बारे में, अभी के लिए उनके ही आवाज का ये गाना। आज मुझे लग रहा है सारे गाने आयुष्मान खुराना ने गाए है यार,
1: वही सारे गाने आयुष्मान खुराना के ही।
0: अरे क्या बात है, एंजॉय कीजिए।

0: You're listening to Hum Playing Bollywood's Biggest Hits, Ayushmann Khurrana Hits, and उन्हीं की आवाज में आज आप सारे गाने सुन रहे हैं. ड्राइव शो में हम आपके लिए ट्रेंड मेकर्स में अलग अलग थीम्स लेकर आते हैं. आज आयुष्मान खुराना का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं हम, तो अगर आपको ऐसे और डिफरेंट थीम्स चेकआउट करने हैं तो रोवा ऐप पे जाके आप ट्रेंड मेकर्स इस म्यूजिक स्टेशन को चेकआउट कर सकते हो, या पॉडकास्ट या म्यूजिक स्टेशन में आता है वो.
1: आप एक्चुअली में वो म्यूजिकल पॉडकास्ट आता है, तो ट्रेंड मेकर्स में जाके आपको ये सारे गाने भी मिलते हैं. वेल, अभी यहाँ पे टाटा बाय बाय कहने का वक्त आ चुका है, और आयुष्मान खुराना को और भी प्रोजेक्ट्स में, बाय द वे 9th अक्टूबर को भी उनका एक मूवी आने वाली है जिसका नाम है उड़ता तीर.
0: ये कॉमेडी मूवी है क्या?
1: ये कॉमेडी मूवी है, कॉमेडी एंटरटेनर है. आई एम जस्ट नॉट हैप्पी विद द एक्ट्रेस इन दिस मूवी.
0: क्यों, कौन है? दिशा पता नहीं,
1: नहीं
0: तो
1: सारा अली खान.
0: ओह नो,
1: आई नो. मतलब नथिंग अगेंस्ट हर, बट डेफिनेटली
0: नथिंग अगेंस्ट हर. ये सब बोलने के बाद बोल रहे हो
1: नथिंग अगेंस्ट हर? नहीं, बट अगेंस्ट हर कॉमेडी में को लगता है कि सारा अली खान ना जहाँ पे कॉमेडी की बात आती है शायद वो अच्छे से निभा नहीं पा रही है. बट यू नेवर नो, दिस मूवी माइट बी डिफरेंट.
0: इसमें पारुल गुलाटी भी है.
1: ओके,
0: पारुल गुलाटी कौन है पता है आपको?
1: सुना है यार.
0: अरे यार, ये वो फाउंडर है, वो अभी इसमें भी आई थी शायद से, ट्रेटर या अलायंस या कुछ तो भी ऐसे रियलिटी शो में भी आई थी. सो शी इज द फाउंडर फॉर एक प्रोडक्ट, शार्क टैंक पे आई थी वो सबसे पहले. आई थिंक वही है, ये बाल बेचती है शायद से, या कुछ मेकअप या आइटम, विग्स बेचती है शायद से. हाँ,
1: बाल बेचती.
0: अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और एंजॉय कीजिए. बाय.

सब मेरे दोस्त माई फ्रेंड, जब भी किसी फाइव स्टार होटल जाते हैं, या तो खाने के लिए या किसी से मिलने के लिए और या किसी और काम के लिए, तो आप ही बेहतर जानते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं आज आपको अपना अनुभव सुनाता हूँ, जिसे सुनकर आप

सर में खदर था बुखार वन मुझे खाने की वन बोली मैंने बोला यो जोनी जोनी मैनेजर कुछ पूछा सुनते हैं आप मैंने मांगा नहीं खाना तुम चीनी मुझे लगते वो लंगूरी वो हैपनिंग मैन बोला सर सॉरी आई एम वेरी वेरी सॉरी मैं यहां हूं इम्प्लॉई मुझे नौकरी ना भाई फिर भी मैं करूंगा बोलिए बोलिए क्या आपको चाहिए।

लाया मेरा सर चकराया, मैंने बोला बैग ला लाया और कुर्राया कॉल द प्रेसिडेंट सब घबराया जब प्रेसिडेंट आया मेरा मन मचला देखा सोनी सोनी पूरी लाल साड़ी वाली आगे खड़ी है मैडम क्या समस्या हुई है बुलवाया मुझे क्या प्रॉब्लम है सर कुछ नहीं कुछ नहीं वो चलता रहता है बस नहीं नहीं सर हम होटल की तरफ से आपसे माफी मांगने के लिए कन्फेशन करते हैं क्या आपको चाहिए।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: rock and roll. Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: Does your floor need a makeover? Adore your floor for less with Flooring Extra's affordable floor makeover sale. For a limited time, you can save on their best-selling range of carpet and hard flooring, including 15% off all Quickstep laminate and timber. Plus, enjoy 36 months interest-free with QCard. To get your flooring makeover underway, visit your locally owned Flooring Extra showroom today. TC's fees and credit criteria apply.
2: Flooring Extra. Adore your floor.
3: Shine Dental has a fresh new look with more space and the same caring team. New patients ke liye ultrasonic scale and polish from $99 or one tooth acrylic denture sirf $599 mein. Plus free dental examinations for new and existing patients. Free wins and ACC codes. Or under 18s ke liye free treatment. Visit Shine Dental at 574 Great South Road, Manukau. Book today on 09-277-6644. T's and C's apply.
4: नया हाइब्रिड ढूंढ रहे हो तो हैवेल ही लो राइट नाउ एंड्रू सिम्स मेलुकाउ में ब्रांड न्यू हैवेल हाइव 6 हाइब्रिड ड्राइव होए सिर्फ 40,990 से प्लस ऑन रोड कॉस्ट नो डिपॉजिट फाइनेंस लो अपनी ट्रेड इन के लिए जबरदस्त प्राइस पाओ और डिस्कवर करो कि क्यों ज्यादा किविज हैवेल चूज कर रहे हैं स्टाइलिश स्पेशियस और टेक्नोलॉजी से भरा हुआ वो भी हाइब्रिड एफिशिएंसी के साथ आज ही विजिट करो एंड्रू सिम्स JWM मेलुकाउ हैवेल हाइब्रिड मोर फॉर योर मनी टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
5: हे नेहा कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर फर्स्ट होम तूने तो कहा था कि दो दो बैंक्स ने लोन देने से और एक फेमस ब्रोकर ने तो केस लेने से ही मना कर दिया था ये घर कैसे
6: अरे ये तो लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला का कमाल है एक रियल एस्टेट वाले ने उन्हें सजेस्ट किया मैंने उन्हें फेसबुक पर ढूंढा और डायरेक्टली कॉन्टेक्ट किया
5: नेहा अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ
7: फर्स्ट होम बाया बनना है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है तो आज ही कॉल करें लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला को ऑन 0800 लॉजिक गुरु
8: Time check. Brought to you by Maan Tyres. For all kinds of tyres and mechanical services, open 7 days. Call Maan Tyres on 0800-00010.
9: Hum News. Brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with logic.
10: Good evening to you with the latest at 8. I'm Jeff Bryan. The first full working day of Auckland's City Rail Link as of 5 this evening. An estimated 72,500 boardings were counted. That's 25,000 more than were recorded by the same time last Monday. Police confirming that one person died following a crash in the Canterbury town of Waimate this afternoon. The single vehicle crash on State Highway 1 near O'Neill's Road was reported at 20 past 2. And Erica Stanford claims any attempt by Labour to unwind Nationals' education gains would be devastating. However, Labour claims the minister is deliberately misrepresenting the party's policy. In sport, NRL Premiership winner Matty Johns thinks high expectations have put too much pressure on the Warriors. After the loss to the Dolphins, he's told the Backstage podcast, this week will be even harder. Rugby League with Machinery House in a league of their own. And former Silver Ferns shooters Alia Dunn and Topaya Selby-Rickett are back in the national squad. The only new face in the 18-player squad is young tactics defender Laura Barmer.
11: Sports News.
9: Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
12: World's best, hamari koi branch nahi hai.
9: Hum. Night Cafe on Hum. Aapka moment. Krish ka magic. Only on Hum.
13: गुड इवनिंग एंड वेलकम एवरीवन मैं क्रिश आ गया हूँ स्टूडियो में आपके साथ देने के लिए इंटरेस्टिंग खबरें आज मैं लेकर आऊँगा आपके लिए क्योंकि आज नाइट कैफे में जब हम लेकर आते हैं आपके लिए नो लॉजिक मंडे तो बहुत कुछ रहता है इसके लिए बस आप हमें सुनते रहो हमारा साथ देते रहो क्योंकि 8 to midnight ये प्रोग्राम आपके लिए रहता है और हर एक नाइट कैफे में मैं आ जाता हूँ आपका साथ देने के लिए इस हफ्ते मंडे टू थर्सडे नाइट कैफे में भी मैं आपका साथ दूंगा तो जितने भी हमारे प्यारे लिसनर्स हैं वेलकम टू द शो और देर ना करते हुए शुरू करते हैं आपके लिए No Logic Monday.
9: Where sense takes a break.
11: No Logic Monday.
13: वेलकम एवरीवन, नो लॉजिक मंडे में आपका स्वागत है। मैं क्रिश आपका साथ दूंगा टिल मिडनाइट, लेकिन ये सेगमेंट में टिल 9 PM तक आपके लिए इंटरेस्टिंग खबरें मैं लेकर आऊँगा। कुछ ऐसे सरप्राइजिंग न्यूज़ हमारे पास है, कुछ ऐसे शॉकिंग न्यूज़ भी है जो दुनिया भर से हम लेकर आते हैं। आज मैं आपको बताऊँगा कि एक आदमी को जेल टाइम मिला फॉर यूजिंग रोबोट वैक्यूम टू रिकॉर्ड चीटिंग वाइफ। इनफैक्ट इस ये जानकारी मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लेकिन वर्ल्ड फास्टेस्ट ह्यूमेनोइड रोबोट के बारे में जानकारी देंगे। और इसके अलावा पॉलिश मैन फेसेस 8 years इन प्रिजन ओवर पिज्जा प्रैंक, और अगलीएस्ट हवाईयन शर्ट, ये इन्फॉर्मेशन भी मैं एक्चुअली आपको बता चुका हूँ, लेकिन इसमें एक नया अपडेट आया है, इस पर जानकारी मैं आपको दूंगा। फीट जूस ड्रिंकिंग ट्रेंड स्प्रेड्स टू चाइना, इस पर जानकारी मैं आपको दूंगा। तो बहुत कुछ है आपके, इसके लिए आप हमारा साथ देते रहे। वेलकम टू द शो, नो लॉजिक मंडे में आपका स्वागत है।

Welcome to the show, everyone. You're listening to your number one humping Bollywood's biggest hits. No Logic Monday aapke liye jaari hai aur interesting khabre mein aapke liye lekar aa raha hoon. Ek bizarre cosplay trend jisme drinks ko banaya gaya hai made from food soaked lemonade or cola. Ab ye China pahunch chuki hai. Ye trend originally appeared at a cosplay convention in Saint Jose. Aur kaha gaya hai ki Guangzhou convention mein cosplayers reportedly sold cups for about 50 yen aur video में दिखाया गया है कि लोग लाइनअप हो रहे थे टू बाय द अनयूजुअल ड्रिंक्स और ये स्ट्रेंज ट्रेंड क्विकली काफ़ी लोगों के अटेंशन को ग्रैब कर रहा है और डिसगस्ट कुछ लोग है अबाउट दिस ट्रेंड अक्रॉस चाइनीज सोशल मीडिया लेकिन वहीं पर लोग ट्राई भी करना चाहते हैं इसको तो ये शॉकिंग न्यूज़ आपके लिए मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ कुछ इंटरेस्टिंग खबरें कुछ

0: इंटरेस्ट क्या मतलब करता है समझ में नहीं आ रहा। तेरे घर का पता है यार, ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया।
1: तो कटिंग लाना है।
0: अरे मैं क्या बोल रहा हूँ।

0: No Logic Monday.
1: You're listening to number one, hum playing Bollywood's biggest hits. Krish ke saath hai, interesting songs ek ke baad ek main aapke liye lekar aaunga. Iske liye bas aap hamara saath dete raho. Aur saath mein gaane to bahut lajawab honge aapke liye. तो इसके लिए भी आप हमें सुनते रहो. वो विंडो क्लीनर्स कम्पीट फॉर वर्ल्ड चैंपियनशिप. काफ़ी जगहों पर विंडो क्लीनर्स को बैन कर दिया गया है बिकॉज रास्तों पर थोड़ा डिस्ट्रप्शन क्रिएट होता है. लेकिन विंडो क्लीनर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड लंदन में गैदर हो चुके हैं फॉर ए हाईली अनयूजुअल कॉम्पिटिशन और कॉम्पिटिशन बैटल कर रहे हैं टू बिकम द वर्ल्ड्स बेस्ट विंडो क्लीनर. और इससे ये हाईलाइट होता है, ये हाईलाइट करेंगे, इनफैक्ट प्रदर्शित करेंगे उनका स्पीड, टेक्निक और प्रिसिशन जो एक्सपर्ट विंडो क्लीनर्स को ज़रूरत है. और ये एनुअल इवेंट को कहा गया है विंडो क्लीनिंग वर्ल्ड कप. ये ऑडिटी सेंट्रल जो एक वेबसाइट है, इसने इसको ये डिस्क्राइब किया, ये खिताब दिया है, नेम दिया है टू दिस कॉम्पिटिशन. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ कुछ और इंटरेस्टिंग खबरें बहुत ही जल्दी आपके लिए.
2: Ladies and gentlemen, let me tell you the story of Mr. Sutro. 1, 2, 3, start.

0: nonsense makes perfect sense. No Logic Monday.
1: नो लॉजिक मंडे आपके लिए जारी और मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ। इंटरेस्टिंग खबरें मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, एक एक करके। शॉकिंग न्यूज़ भी हमारे पास है जो आपके लिए मैं पेश कर रहा हूँ। एक आदमी को 8 साल की जेल की सज़ा हुई ओवर पिज्ज़ा प्रैंक। 23-year-old पोलिश मैन है जिन्होंने हंड्रेड्स ऑफ पिज्ज़ाज को ऑर्डर किया फ्राम रैंडम पीपल्स एड्रेसेस। इनफैक्ट अलग अलग बिजनेस से इन्होंने पिज्ज़ा को ऑर्डर किया और कुछ ऑर्डर्स में पर्सनल इन्फॉर्मेशन और डिस्टर्बिंग थ्रेट्स भी इंक्लूडेड थे। एक ऑर्डर में तकरीबन 300 पिज्जाज को ऑर्डर किया गया जो 37,000 लॉटीज का जो वैल्यू था, और रेस्टोरेंट्स सीवियर फाइनेंशियल लॉसेस सफा किए बिकॉज ऑफ दीज बोगस ऑर्डर्स। और पुलिस ने सस्पेक्ट को अरेस्ट किया और इनको 8 साल की जेल की सज़ा होने की संभावना है इन प्रिजन। मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ और इंटरेस्टिंग खबरें मैं आपके लिए और भी लेकर आता रहूँगा। बस इसके लिए आप हमारा साथ देते रहो। नो लॉजिक मंडे आपके लिए जारी है।

0: कैफे ऑन हम। हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
1: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा। न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काऊ घी। जब खाने में होगी इतनी शुद्धता इतना स्वाद तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा।
2: मुझे भी।
1: कशिश प्योर देसी घी अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड। खुशियाँ पकाएं, खुशियाँ खिलाएं।
3: Make the most of your deck with a stylish louver from Trade Tested. From tiny decks to massive decks, we've got a louver that'll suit you. Easy to put together and unbeatable value starting at only $3,000. Make your backyard great at Trade Tested today.
4: Great news. Flu vaccinations are now free for all children aged 6 months to under 5 years. It's not too late to help protect your little ones from serious illness this flu season. So book now with your healthcare provider or visit bookmyvaccine.nz.
5: The beat of Bollywood.
6: World's best, hamari koi branch nahi hai.
5: Night Cafe on Hum. Where sense takes a break.
7: No Logic Monday.
8: नो लॉजिक मंडे आपके लिए जारी है और मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ। सुनते रहो इंटरेस्टिंग खबरें और गाने तो आपके लिए है ही। आपके लिए मैं पेश करूँगा डमेशा वर्ल्ड्स मोस्ट क्राउडेड बीच। इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूँ, ये शेंजेन चाइना में है। इट्स अबाउट 1.8 किलोमीटर्स लॉन्ग। पीक पीरियड्स में यहाँ पर 200,000 लोग जमा हो सकते हैं। एनॉर्मस क्राउड इस बीच को वॉल टू वॉल सी ऑफ पीपल बना देता है। और कहा गया है कि डिस्पाइट द कंजेशन डमेशा रिमेन्स ए ह्यूजली पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन। और ये एक्स्ट्रॉर्डनरी विजिटर डेंसिटी, इनको ये निकनेम भी दिया है कि इट इज़ वर्ल्ड्स मोस्ट क्राउडेड बीच। मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ।

सब क्या बोल रहे सब लोग एमएवे बंटा है मालूम है ना मचाएंगे जो नहीं नाचते उसको भी नचाएंगे लेट्स डू इट ए

You're listening to number one, hum playing Bollywood's biggest hits. एक एक करके आपके लिए आपके फेवरेट सॉन्ग्स तो पेश करते हैं, लेकिन सामाजिक सूचना में बहुत कुछ हो रहे हैं, इस पर भी जानकारी आपको दूंगा. क्या कुछ इवेंट्स होने को है, धार्मिक जो इवेंट्स है, इस पर भी जानकारी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ. इसके लिए आप हमारा साथ देते रहे. जितने भी हमारे ऑनलाइन लिसनर्स हैं, आपको भी याद करते हैं. हमारे नाइट शिफ्ट वर्कर्स, आप भी काम कर रहे हैं. जितने भी हमारे ड्राइवर्स हैं सड़कों पर, सावधानी आप बरतिएगा. और मैं चाहता हूँ कि आप हमारा साथ ऐसे ही देता रहे जैसे आप देते हैं, क्योंकि वेरी डेडिकेटेडली आपका साथ हमें मिलता है, आपसे इंटरेक्शन भी होती रहती है, तो बहुत ही अच्छा लगता है. आप सभी के नाम अगला गाना हम शामिल करने जा रहे हैं. कुछ और खबरें बहुत ही जल्दी मैं लेकर आऊँगा आपके लिए. क्रिश का साथ है एंड कीप लिसनिंग टू नंबर वन, हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स.

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: Calm because Punjabi swag is on.

0: Media.
1: Streaming on Rover.
2: Hey Neha, congratulations on your first home. तूने तो कहा था कि दो दो बैंक्स ने लोन देने से और एक फेमस ब्रोकर ने तो केस लेने से ही मना कर दिया था। ये घर कैसे?
3: अरे ये तो लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला का कमाल है। एक रियल एस्टेट वाले ने उन्हें सजेस्ट किया, मैंने उन्हें फेसबुक पर ढूंढा और डायरेक्टली कॉन्टेक्ट किया।
2: नेहा, अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ।
4: फर्स्ट होम बाया बनना है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है तो आज ही कॉल करें लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला को ऑन 0800 लॉजिक गुरु।

0: ka moment. Krish ka magic. Only on Hum.
1: You are listening to number one Hum playing Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. कुछ सामाजिक सूचना है आपके लिए. श्री राम मंदिर 11 ब्रिक स्ट्रीट हेंडरसन में गणेश उत्सव सेलिब्रेट किया जा रहा है. ट्यूजडे 15 सितंबर से लेकर संडे 20 सितंबर के तक सभी धर्म प्रेमियों को सादर आमंत्रण है. और भी जानकारी के लिए आप 09836 4647 पर कांटेक्ट कर सकते हैं. महाप्रसाद हर एक दिन आपके लिए यहाँ पर आयोजित किया गया है. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ.

0: मार्च 2027 एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुस्बे, टिकट्स बुक हो गए
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है,
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन,
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स्ट ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुस्बे, ओनली ऑन हम।
6: प्रोफेशनल फाइनेंशियल्स है साथ आपके, लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे, नो ब्रोकर चार्ज, बस ट्रस्टेड एडवाइस, हर डील बनाए परफेक्ट राइट।
7: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स, लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक।
6: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो, हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो, सब कुछ मिलेगा यही, अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए।
7: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी। कॉल 09846-9934 और सर्च PFSL, T&Cs, लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई।
8: From climate change to a lack of loose change, from small changes to changes in global power, change is constant. And so is the news on this station, your source for everything changing. In association with RNZ News, change is in the air.
9: Spring savings are on now at Beds R Us. Save on selected sleepyhead beds like the Chiropractic Perform, half price, queen size, now from 2299. Step up your sleep with spring savings at Beds R Us Manukau and Pokekohe, where dreams begin.
10: The beat of Bollywood.
11: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
10: Night Cafe. You're listening to Krish.
12: Let's go.
13: You're listening to number one, I'm playing Bollywood's biggest hits. Krish के साथ है रोवा। अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। रोवा को यूज़ करने में बहुत फ़ायदे हैं, आपको पता है बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स भी रोवा के ज़रिए होते हैं। हमारे म्यूज़िक प्लस स्टेशंस भी आप रोवा पर सुन पाएंगे। हम रिवाइंड हो, हम 80s जूक बॉक्स हो, फिजी भजन हो या चढ़दी कला पंजाबी हिट्स हो, फिजी कीर्तन संग्रह हो या फिर राहत फतेह अली खान के सूफी और कवाली सॉन्ग्स का एक बहुत ही प्यारा लिस्ट हो, तो ये सभी कुछ आपको रोवा पर ही मिलेंगे। तो रोवा पर पॉडकास्ट का भी एक्सेस आपको मिल सकता है, तो इस तरह से आप बहुत फ़ायदे में रहते हैं। कॉम्पिटिशन्स और प्राइजेज जीतने के लिए भी रोवा बहुत ही फ़ायदेमंद है, तो आज ही डाउनलोड करें आपके फायदे के लिए। मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ, सुनते रहो हम, नाइट कैफे जारी है एंड इट विल बी फॉर यू अंटिल मिडनाइट। मैं क्रिश आपके साथ देता रहूँगा।

0: Today on Hum.
1: Ladies and gentlemen.
2: Unfiltered with Sandy and Rizvi. Kyunki dunya mein already bahut sare perfect, polished, Instagram-friendly stories hain. Aur unka humse koi lena dena nahi. Yahan kahaniyan hoti hain raw. Emotions hote hain real. Aur conversations hote hain bina mask ke.
3: Raja, mantri, chor, sipahi, sab yahan aate hain.
2: Unfiltered with Sandy and Rizvi. On Rowa, Spotify, or anywhere you get your podcast.
4: Kya baat hai us khane mein jo पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन कोरमा या चना मसाला रेसिपीज चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है तो इंतजार किस बात का आज ही अपने नजदीकी सुपर मार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए शान फूड्स असली स्वाद हर घर के लिए
5: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो
6: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स नोटरी पब्लिक बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स
7: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी लीजेस सबडिविजन इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटॉर्नी फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz
8: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो बोली बस मेरा फोकस है
9: हाँ। अच्छा
8: बताओ तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं
9: मिसेस सिंह
10: अरे पम्मी जी मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने
11: मॉडर्न क्लासिक शेकर स्टाइल किचन्स फोकस किचन्स यूनिट के 33 वॉन्सली रोड ओटाहू कॉल 09281-3050 और विजिट focuskitchens.co.nz
2: Time check.
12: Brought to you by Maan Tires. For all kinds of tires and mechanical services. Open 7 days. Call Maan Tires on 0800-00010.
2: Hum News. Brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with logic.
13: Good evening to you with the latest at 10. I'm Jeff Bryan. New figures point to a milestone for tourism recovery. July arrivals were up 8.5% on the same time last year and exceeded pre-COVID levels for the month. Boaties are being reminded about the dangers when crossing bars after two deaths in Manawatu. A vessel capsized near the Tangi Moana River mouth this morning. The Transport Accident Investigation Commission says river and harbour bars are hazardous places for small boats. A multi-million dollar public transport corridor for Wellington has the thumbs up from the Regional Council. Greater Wellington's Public Transport Committee has endorsed the Harbour Quays business case. In sport, the Warriors Knights elimination final on Sunday evening. Lekha Halasima reported as highly doubtful. Hamstring injuries are rarely sorted in a week. As for Jackson Ford, the full extent of his injury will be revealed when the team's named tomorrow evening. Rugby League with Machinery House in a league of their own. And former Silver Ferns shooters Ali Dunn and Topaya Selby-Rickett are back in the 18-player national squad. The only new face is tactics defender Laura Barmer.
2: Sports News. Brought to you by

0: Night Cafe on Hum.
1: You're listening to number one Hum playing Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. Unfiltered Dry सुनना ना भूले. बहुत interesting topic पर बातें हो रही है, जैसे कि if you die tomorrow तो आपके पैसों का, आपके घर का, किवी सेवा, jewelry और business का क्या होगा. काफ़ी लोग सोचते हैं कि इसका आंसर काफ़ी obvious है, ये चीज़ें आपके partner, आपके बच्चों या आपके family के पास जा सकता है. But what if that's not actually how it works? In New Zealand, अगर आप will के बगैर आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपका estate will be subject to intestacy laws और outcome may not be what you expect. क्योंकि जो एपिसोड ऑफ अनफिल्टर्ड ड्राइव विद सैंडी और रिज़बे होने जा रहा है, इसमें अनकंफर्टेबल, ऑफ्टन अनकंफर्टेबल सब्जेक्ट ऑफ विल्स, एस्टेट्स और व्हाट हैपेंस आफ्टर यू डाई, इस पर बातें होगी और सम ऑफ द बिगेस्ट मिसकंसेप्शंस को अनकवर किया जाएगा अराउंड इनहेरिटेंस और एस्टेट प्लानिंग. तो इसमें तानिया पिंटो, सीनियर ट्रस्टी एट पब्लिक ट्रस्ट है, इनसे बातें होगी. Who will break down what happens when someone dies without a will, aur unke assets ke liye kaun entitled rahenge, aur why having a partner doesn't necessarily mean ki automatically unko sab kuch mil jayega, aur kya hota hai agar family disagree hote hain about an estate. Drive text kare 5599 par for full audio, ya phir unfiltered with Sandy or Rizbe text search kare on Rover and Spotify for the podcast. Main Krish aapke saath de raha hoon.

0: the moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: You're humming along with Krish on your number one. Hum playing Bollywood's biggest hits. Kuch na kuch alag hum par hota hai. Trend makers ke baare mein aapne suna hoga. About this musical podcast. Ye ek power-packed musical journey hai jahan par har gana curate kiya gaya hai around a unique theme in Drive Show with Sandy and Rusbe. From genres jo eras ko define karta hai to tributes celebrating legends of Bollywood. Chahe wo iconic singers ho, visionary composers ho, poetic lyricists ho, ya phir unforgettable actors ho. Har ek episode mein ek story aapko milega aur wo bhi through sangeet music. अगर ये जो एक और जो एपिसोड आप सुनना चाहेंगे ये इसमें अगर आप एक रोड ट्रिप प्लान कर रहे हैं या फिर लॉन्ग ड्राइव के लिए सिर्फ जा रहे हैं यू आर कवर्ड क्योंकि स्पेशली क्यूरेटेड प्लेलिस्ट बनाया गया है टू सेट द मूड कीप द एनर्जी अप और एवरी किलोमीटर ऑफ योर जर्नी काफ़ी एंजॉय

0: Cafe on Hum.
1: Driving you home.
2: The Drive Show with Sandy and Rusby.
3: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हूँ.
4: ये गलत बोल दिया यार.
3: और पहनता भी नहीं है उसको.
4: अब उस बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूँ मैं अभी बेचने के लिए. कोई लेगा क्या? रुजबे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ.
3: इंटरेस्ट
5: ब्रांड हो गया अभी वो.
4: अभी ब्रांड हो गया ना.
3: रुजबे के बाल लगे उस.
2: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us, Manukau and Pukekohe. Massive home show deals available in store now. Only at Beds R Us, Manukau and Pukekohe. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jenku.
6: 1921 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं. पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना, बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस, ऑन साइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस, और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑन साइट क्रेमेटोरियम, और जब भी जरूरत हो, दिन हो या रात, हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा. मॉरिसन्स फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए.
7: The kids depend on us for everything. Meals, rides, band-aids, bedtime stories. But who do we depend on?
8: Hi, I'm Nitesh Hira from Assure One. School holidays remind us how much our families rely on us. My job is making sure reliance never becomes a risk. Helping you understand your options so your family is covered whatever happens. Call Assure One on 0800-77-HIRA or visit assureone.co.nz. North and Vale Advisory Limited, trading as Assure One, is a licensed financial advice provider.
9: You know Elite Bathroomwear? Family owned since 2002. 48 hard-working Kiwis. One obsession? Bathrooms. With the ultimate showroom and the biggest range, curating the best brands and bathroom fittings so you don't have to compromise. You asked? Elite delivered. The spring bathroom sale is on for September only. It's your chance to have that high-end bathroom with incredible savings. Elite Bathroomwear. Kiwi owned and operated. 59 Allens Road, East Tāmaki. See you there.

0: Coffee on Hum.
1: You're humming along with Krish on your number one hum, playing Bollywood's biggest hits. Ganesh Utsav सभी जगहों पर मनाया जा रहा है गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में. तो वहीं पर नॉट शो भारतीय संगम की ओर से सूचना है सभी धर्म प्रेमियों के लिए कि गणेश चतुर्थी पूजा 19 सितंबर को होने जा रहा है 11 AM onwards. ताकापुना वो मेमोरियल हॉल में ये होगा. 7 द स्ट्रेंड आपको पहुंच जाना है ताकापुना. फ्री पार्किंग यहां पर अवेलेबल है. 11 AM गणेश पूजा और सत्यनारायण पूजा होगा. एक दिन में 1 बजे महाप्रसाद लंच आपको दिया जाएगा. 2 PM कल्चरल इवेंट्स होंगे. 4 PM ढोल ताशा और क्लोजिंग सेरेमनी भी आपके लिए यहाँ पर रहेगा. तो आप जाकर नॉर्थ शोर भारतीय संगम द्वारा ये इवेंट में भाग ले सकते हैं. मैं कृष आपके साथ दे रहा हूँ. सुनते रहो हम.

0: You're listening to Krish.
1: Let's go!
2: नाइट कैफे यहीं पर खत्म होता है दोस्तों. आपने हमारा साथ दिया, थैंक यू सो मच. कल मुलाकात होती है इंटरेस्टिंग खबरों के साथ. मैं आ जाऊंगा आपका साथ देने के लिए कल ट्यूसडे, तो कोक स्टूडियो रीलोडेड भी आपके लिए लेकर आऊंगा. अपना बहुत ही ख्याल रखें. हैव अ वंडरफुल नाइट एंड गुड नाइट एवरीवन.

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता, महसूस

0: smile right there.
1: Streaming on Rover.
2: प्रोफेशनल फाइनेंशियल्स है साथ आपके लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे नो ब्रोकर चार्ज बस ट्रस्टेड एडवाइस हर डील बनाए परफेक्ट राइट
3: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक
2: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो सब कुछ मिलेगा यही अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए
3: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी कॉल 09846-9934 और सर्च PFSL T&Cs लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई Night Flight.

0: भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: सुनो, आज फिर प्रॉपर्टी एजेंट्स का फोन आया, घर बेचने को कह रहे थे।
2: बेचना तो कभी भी बेच सकते हैं, लेकिन मार्केट में उतना मिलेगा नहीं। डेवलप करना बेहतर लगता है, पर पैसों का डर है।
1: इसीलिए NZPMI से बात कर लो, वो फीजिबिलिटी देखते हैं और प्लानिंग से फंडिंग तक सब संभाल लेते हैं।
3: हर प्रॉपर्टी बेचना जरूरी नहीं, आपकी जमीन की असली वैल्यू उसके डेवलपमेंट में हो सकती है। आज ही NZPMI के पॉल से बात कीजिए। NZPMI, टुगेदर वी बिल्ड सक्सेस। कॉल पॉल ऑन 0800-4NZPMI.
4: It's normal to feel low sometimes. Just like how the weather changes, so can our moods. Pay attention to your feelings. Reach in and check how you're doing. Reach out and talk to someone you trust. If you need to talk with a trusted professional, Asian Family Services is here to support. Call the Asian Helpline on 0800-862-342 for free, confidential support. If you or someone you know is in immediate danger, please call 111 or emergency services.
5: एक सच जो पूरे सिस्टम को दो हिस्सों में बांट देता है। अ क्राइम थ्रिलर इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स। दायरा, स्टारिंग करीना कपूर खान एंड पृथ्वीराज सुकुमारन।
6: लॉ का एक फ्रेमवर्क है DCP कुमार, जिसके दायरे में मैं काम करती हूँ।
7: और मैं नहीं करता।
5: दायरा, रिलीजिंग इन सिनेमाज ऑन 18 सितंबर।
7: ओपन शट केस है, उनकी स्टोरी ओवर है।
8: कहाँ ओवर, अभी तो शुरुआत है।
5: डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फोरम फिल्म्स, रेटिंग TBC।
9: The beat of Bollywood.
10: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है।

0: 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुस्बे, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टो प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुस्बे, ओनली ऑन हम।

0: Palace Supermarket Newlyn, Namaste New Zealand Immigration Services, Indelible Homes, GEM Entertainment, Tradeworks Group, Classic Automotive Solutions Limited, Malolo Rentals and Tours, or IIIE Science. जानकारियों के लिए हम सुनते रहें।
1: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो।
2: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
3: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279939 और विजिट legalassociates.co.nz।
4: एक सच जो पूरे सिस्टम को दो हिस्सों में बांट देता है, अ क्राइम थ्रिलर इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स, दायरा, स्टारिंग करीना कपूर खान एंड पृथ्वीराज सुकुमारन।
5: लॉ का एक फ्रेमवर्क है डीसीपी कुमार, जिसके दायरे में मैं काम करती हूँ
6: और मैं नहीं करता।
4: दायरा, रिलीजिंग इन सिनेमाज ऑन 18 सितंबर।
6: वो क्रिमिनल केस है, उनकी स्टोरी ओवर है।
7: कहाँ ओवर, अभी तो शुरुआत है।
4: डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फोरम फिल्म्स, रेटिंग टीबीसी।
8: Playing Bollywood's biggest hits.
9: Budget hit the gun name.
8: Night Fly.

बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई

0: anywhere you get your podcast.
1: Hey Neha, congratulations on your first home. तूने तो कहा था कि दो-दो banks ने loan देने से और एक famous broker ने तो case लेने से ही मना कर दिया था. ये घर कैसे?
2: अरे ये तो लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला का कमाल है. एक रियल एस्टेट वाले ने उन्हें सजेस्ट किया, मैंने उन्हें फेसबुक पर ढूंढा और डायरेक्टली कांटेक्ट किया.
1: नेहा, अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ.
3: फर्स्ट होम बाया बनना है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है तो आज ही कॉल करें लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला को ऑन 0800 लॉजिक गुरु.

0: flight on Hum.
1: Driving you home.
2: Drive show with Sandy and Rusby.
3: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हुआ।
4: ये गलत बोल दिया यार।
3: और पहनता भी नहीं है उसको।
4: अब बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूँ मैं अभी बेचने के लिए कोई लेगा क्या? रुस्बे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ
3: इंटरेस्ट
5: ब्रांड हो गया अभी वो।
4: अभी ब्रांड हो गया ना
3: रुस्बे के बाल लगे उस
2: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us, Manukau and Pukekohe. Massive home show deals available in store now. Only at Beds R Us, Manukau and Pukekohe. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
6: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
7: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
8: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेज, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz।
9: The kids depend on us for everything. Meals, rides, band-aids, bedtime stories. But who do we depend on?
10: Hi, I'm Nitesh Hira from Assure One. School holidays remind us how much our families rely on us. My job is making sure reliance never becomes a risk. Helping you understand your options so your family is covered whatever happens. Call Assure One on 0800-77-HIRA or visit assureone.co.nz. North and Vale Advisory Limited. Trading as Assure One is a licensed financial advice provider.
11: Bollywood ka asli blockbuster. Pure sheher pe kabza.

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: रिवाइंड सिर्फ रोवा पर।
1: सोना संसार पापा टोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे।
2: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं, समझे?
1: सोना संसार पापा टोटो, जहां था वहां अभी भी है। शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स, पापा टोटो।
3: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा टोटो। सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर गोल्ड।
4: नाइट फ्लाइंग

0: rock and roll. Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: सुनो, आज फिर प्रॉपर्टी एजेंट्स का फोन आया, घर बेचने को कह रहे थे।
2: बेचना तो कभी भी बेच सकते हैं, लेकिन मार्केट में उतना मिलेगा नहीं। डेवलप करना बेहतर लगता है, पर पैसों का डर है।
1: इसीलिए NZPMI से बात कर लो, वो फीजिबिलिटी देखते हैं और प्लानिंग से फंडिंग तक सब संभाल लेते हैं।
3: हर प्रॉपर्टी बेचना जरूरी नहीं, आपकी जमीन की असली वैल्यू उसके डेवलपमेंट में हो सकती है। आज ही NZPMI के पॉल से बात कीजिए। NZPMI, टुगेदर वी बिल्ड सक्सेस। कॉल पॉल ऑन 0800 4NZPMI.
4: 1% finance and $2,000 off exclusive to West City Auto Group. That's right, get behind the wheel of JQ J7 SHS for just $47,990 plus on-road costs. With 1% finance and $2,000 off, experience premium style, advanced technology and super hybrid efficiency all in one impressive SUV. Hurry, limited stock available at 1% finance. Speak with Jimmy Taylor and team at West City Omura JQ. For T's and C's, head to westcityautogroup.nz.
5: The beat of Bollywood.
6: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है।

0: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
1: से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं। पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना, बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस, ऑन साइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस, और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑन साइट क्रेमेटोरियम, और जब भी जरूरत हो, दिन हो या रात, हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा। मॉरिसन्स फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए।
2: हैवान इंसान नहीं होता, पर हर इंसान हैवान बन सकता है।
3: अंधा होने से बुरा पता है क्या होता है? बेवकूफ होना।
2: हैवान स्टारिंग अक्षय कुमार, सैफ अली खान एंड बोमन ईरानी।
4: अपने बदले की आग में और कितने मासूमों की जान लोगे तुम?
3: ये आखिरी
2: हैवान नाउ शोइंग इन सिनेमास। डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फोरम फिल्म्स। रेटिंग TBC।

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
3: That is very that is a very acceleration.
2: That's a very acceleration. Yeah.
3: Amazing acceleration.
2: This is my fancy English. That's a very.
3: अरे होता है यार, सब चलता है. आधी नींद में हूँ मैं.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
4: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living Monaco. Spring sale on now. Beautiful furniture with 60 months interest free. T's and C's apply. Only at Harrington Living Monaco.
0: Weekdays 6 to 10 a.m.
5: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है. जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है. हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है. We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and on-site cremations. 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927-88600.
6: Hey Neha, congratulations on your first home. तूने तो कहा था कि दो-दो banks ने loan देने से और एक famous broker ने तो case लेने से ही मना कर दिया था. ये घर कैसे?
7: अरे ये तो लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला का कमाल है. एक रियल एस्टेट वाले ने उन्हें सजेस्ट किया, मैंने उन्हें फेसबुक पर ढूंढा और डायरेक्टली कॉन्टेक्ट किया.
6: नेहा अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ.
8: फर्स्ट होम बाया बनना है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है तो आज ही कॉल करें लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला को ऑन 0800 लॉजिक गुरु.

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: 0 to 800 kilometers per hour. That's a massive.
3: That is very that is a very acceleration.
2: That's a very acceleration. Yeah.
3: Amazing acceleration.
2: This
3: record,
2: is my fancy
3: say.
2: English. That's a very.
3: अरे होता है, सब चलता है. आधी नींद में हूँ मैं.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
4: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living Monaco. Spring sale on now. Beautiful furniture with 60 months interest free. T's and C's apply. Only at Harrington Living Monaco.
0: Weekdays 6 to 10 a.m.
5: Commonwealth Vault aapke precious belongings ko rakhta hai safe aur secure. Gold, bullion, aur precious metals ki value jab all time high pe hai, tab ye pehle se कहीं ज्यादा जरूरी है कि आपके एसेट्स थेफ्ट और नेचुरल डिजास्टर से प्रोटेक्टेड रहें। जब आप अपने वैल्यूएबल्स कॉमनवेल्थ वॉल्ट को इंट्रस्ट करते हैं तो आपको मिलता है पीस ऑफ माइंड, ये जानते हुए कि वो सेफ, सिक्योर और प्रोटेक्टेड रहेंगे। कॉमनवेल्थ वॉल्ट, सिक्योरिंग योर वैल्यूएबल्स फॉर अ लाइफटाइम एंड बियॉन्ड। डिटेल्स एट commonwealthvault.go.nz। दैट्स commonwealthvault.go.nz।
6: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ? बोली, बस मेरा फोकस है।
7: हाँ। अच्छा
6: बताओ, तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं।
7: मिसेस सिंह,
8: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
4: मॉडर्न क्लासिक शेकर स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू। कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
9: You know Elite Bathroomware? Family owned since 2002. 48 hard-working Kiwis. One obsession? Bathrooms. With the ultimate showroom and the biggest range, curating the best brands and bathroom fittings so you don't have to compromise. You asked? Elite delivered. The spring bathroom sale is on for September only. It's your chance to have that high-end bathroom with incredible savings. Elite Bathroomware, Kiwi-owned and operated, 59 Allens Road, East Tāmaki. See you there.
10: एक सच जो पूरे सिस्टम को दो हिस्सों में बांट देता है। अ क्राइम थ्रिलर इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स, दायरा, स्टारिंग करीना कपूर खान एंड पृथ्वीराज सुकुमारन।
11: लॉ का एक फ्रेमवर्क है डीसीपी कुमार, जिसके दायरे में मैं काम करती हूँ।
12: और मैं नहीं करता।
10: दायरा, रिलीजिंग इन सिनेमाज ऑन 18 सितंबर।
12: वो कल्चरल केस है, उनकी स्टोरी ओवर है।
13: कहाँ ओवर, अभी तो शुरुआत है।
10: डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फोरम फिल्म्स, रेटिंग टीबीसी।
0: Check.
14: Brought to you by Mann Tires. For all kinds of tires and mechanical services, open 7 days. Call Mann Tires on 0800 00 00 10.
0: Hum News. Brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with logic.
15: Good morning, I'm Gary Denver with the latest at 6. There's a warning to be prepared for some grim figures when the GDP is announced on Thursday. It'll be the first quarter to fully reflect the global oil crisis. Prime Minister Christopher Luxon says the volatile Middle East situation will have an impact.
16: The good news is that New Zealand's fuel supply remains secure and our fuel importers continue to report confidence in securing fuel supply out to November.
15: Christchurch is vowing to remain proactive in selling itself. Infometrics and analysis shows the city's tourism numbers have just returned to pre-pandemic levels. Head of destination Kath Lowe says they're in the third year of running roadshows in Australia.
17: We've got a campaign going in market later this month into China, and we are going to keep telling the story.
15: Events are being held across the country this Māori Language Week. Ngā Hiwi Apanui of the Māori Language Commission says there is a host of things on offer.
18: There's all sorts of activities from plays through to people getting together for chats and coffee, for instance, in Rotorua.
15: President Trump has declared himself the only guardrail the AI industry needs as fears mount that humanity's at threat. He posted that artificial intelligence needs a strong and smart president with high IQ, claiming the US has that in spades. In sport, commentator Tony Johnson says there's plenty to be gained for the All Blacks series defeat to the Springboks. TJ told the DSPN podcast the coaching staff would have learned a lot.
19: And they'll go, OK, what worked, what didn't work? And if that happens, losing a test series does have a silver lining, as 2009 had a silver lining 2 years later at the World Cup.
15: Rugby with All Blacks Travel and Hospitality.com. And Nathan Cleary's escaped a ban at the NRL judiciary. The Panthers halfback will have to pay a fine for a grade one dangerous tackle.
0: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill.
20: हम पर शोक सूचनाएं आप तक लाते हैं एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस।
21: सूचित किया जाता है कि सावित्री के पति यानी सतीश चंद, शर्मिला, शोभना और नीता के पिता सुरेन चंद की मृत्यु वैटाकरे अस्पताल में हो गई। अंतिम संस्कार कल 1 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस 11 बोल्डउड प्लेस वीरी में किया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 02736463933 पर संपर्क कर सकते हैं। सावित्री के पति यानी सतीश चंद, शर्मिला, शोभना और नीता के पिता सुरेन चंद की मृत्यु वैटाकरे अस्पताल में हो गई। अंतिम संस्कार कल 1 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस 11 बोल्डउड प्लेस वीरी में किया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 02736463933 पर संपर्क कर सकते हैं। रतुमारा रोड नंबुआ सुवफीजी के स्वर्गीय रामलाल के पुत्र यानी एवनडेल की प्रकाश लाल के पति और शिवनेश लाल तथा सिडनी ऑस्ट्रेलिया के शिवनील लाल के पिता नसीनु और सुवा के भूतपूर्व सॉकर एप एवनडेल के सुनेश लाल की मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार बृहस्पतिवार को 1 बजे मेनकाओ मेमोरियल गार्डन्स 361 पोहिनुई रोड वीरी में किया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 02231049611 पर संपर्क कर सकते हैं। रतुमारा रोड नंबुआ सुवफीजी के स्वर्गीय रामलाल के पुत्र यानी एवनडेल की प्रकाश लाल के पति और शिवनेश लाल तथा सिडनी ऑस्ट्रेलिया के शिवनील लाल के पिता नसीनु और सुवा के भूतपूर्व सॉकर रैप एवनडेल के सुनेश लाल की मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार बृहस्पतिवार को 1 बजे मेनकाओ मेमोरियल गार्डन्स 361 पुहिनुई रोड वीरी में किया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 02231049611 पर संपर्क कर सकते हैं। लौदालबे सुफा के भूतपूर्व निवासी स्वर्गीय राम सुमेर की पत्नी यानी बिनेश सुमेर आत्माराम, स्नेहलता और बेला सिंह की मां जसोदा कुमार की मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार कल 3:30 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस 11 बोल्डउड प्लेस वीरी में किया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 02149632161 पर संपर्क कर सकते हैं। लौदालबे सुवा के भूतपूर्व निवासी स्वर्गीय राम सुमेर की पत्नी यानी बिनेश सुमेर आत्माराम, स्नेहलता और बेला सिंह की मां जसोदा कुमार की मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार कल 3:30 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रिमेशंस 11 बोल्डउड प्लेस वीरी में किया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 02149632161 पर संपर्क कर सकते हैं।
20: शोक सूचनाएं वीकडेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे, शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी।
0: नॉन स्टॉप बॉलीवुड
22: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
0: Playing Bollywood's biggest hits. Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
21: 8 degrees temperature Auckland mein abhi aap feel kar rahe hain. Aaj ka high 17, overnight kam se kam 9 degrees rahega. Kuch badal chhaye rahenge. Aaj kabhi kabhar halki barish ho sakti hai. Sunrise bas 15 minute baad aur sunset aaj ka sham 6:12 par hone ko hai.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
4: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living Manukau. Spring sale on now. Beautiful furniture with 60 months interest free. T's and C's apply. Only at Harrington Living Manukau.
0: Breakfast Catch Up.
21: सात मिनट हो रहे हैं 6:06 नमस्कार अ वेरी गुड मॉर्निंग स्वागत है आपका वेलकम टू द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा आज मंगलवार है 15 तारीख सितंबर आज की ये सुबह आप सभी को बहुत बहुत बार शुभ और मुबारक हो आ गए हैं आपका साथ देने के लिए ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा और अभी से लेकर ठीक 10 बजे तक हमारा और आपका साथ इस प्रोग्राम में रहने वाला है आज पूजा तो नहीं लेकिन मैं रहूंगा आपके साथ और इन 4 घंटों के आपके सफ़र को बढ़िया बनाने की अपनी ओर से हम कोशिश करेंगे जिसमें ज़रूरी खबरें आपके लिए शामिल हैं साथ ही में कई कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेने का मौका और आपके मनचाहे गानों का ये लाजवाब सफ़र ऐसा ही चलता रहेगा उम्मीद है कल का दिन आपका अच्छा रहा होगा और अब एक नए दिन के लिए एक नई सुबह के लिए आप तैयार होंगे और आज क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल्स जो है ये हम आपको बारी बारी से देंगे और साथ ही में इस घंटे आज हम देखेंगे खबरों में क्या कुछ है इसका भी इस पर भी डिटेल्स जो है ये आपके लिए हम पर हम ज़रूर लेकर आएंगे और साथ ही में आज 15th ऑफ सितंबर कुछ खास आप सेलिब्रेट कर रहे हैं आज आपका बर्थडे है या फिर आज आपकी शादी की सालगिरह है तो इस दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं जो है ये हम आपको दे रहे हैं और इसी तरह से आप अपनी खुशियां जो है ये मनाते रहें और आपकी खुशियों में हम शामिल होते रहें यही हमारी कामना और दुआएँ हैं तमन्नाएँ हैं और इस घंटे और भी डिटेल्स जो है ये बारी बारी से आपको हम जरूर देंगे।
1: धूम तेरे किट धूम तेरे किट।

0: Sunny Side Up.
1: हर दिन ऐसी कुछ न कुछ कहानियां आपके लिए हम लेकर आते हैं ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा, जो शायद कहीं ना कहीं हमें कुछ इंस्पायर जो है ये करती है। आज की कहानी जो है बेनिन नाम के एक शख्स की है, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी के शुरुआती दौर के बारे में एक बहुत ही ब्रीफ स्टोरी जो है ये शेयर की है। और इन्होंने कहा कि इन्होंने एक नौकरी जो है शुरू में जब शुरू की थी तो वो एक डॉगी डे केयर में काम करते थे, और एक दिन क्या हुआ, उन्हें अकेला छोड़ दिया गया एक ट्राइपोड डॉग के साथ, यानी कि एक ऐसा कुत्ता था जिसका एक पैर नहीं था, और वो जो कुत्ता था उसे पुरुषों से बहुत नफरत थी, क्योंकि किसी एक पुरुष की वजह से उसने अपना एक पैर जो है ये खो दिया था। तो बेनिन ने बताया कि शुरू में ही कुत्ते ने ये इंडिकेशन दे दिया था उसको कि ये आदमी को बहुत पसंद नहीं करता है, तो उसने बहुत पुश नहीं किया इंटरेक्ट करने के लिए, और वक्त दिया कि कुत्ता उसके साथ थोड़ा कंफर्टेबल फील करे। बाकी जो डॉग ओनर्स हैं वो अपने कुत्तों को लेकर चले गए, और एक घंटा और बाकी था जब ये कुत्ता और बेनिन दो ही लोग बाकी थे। तो बेनिन ने कहा कि उसने कुत्ते के साथ खेलने की कोशिश की लेकिन कुत्ते ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। अब बेनिन भी बोर हो रहा था, तो उसने तीन बॉल जो हैं ये देखे और ये सोचा कि चलो मैं इसे जगल कर लेता हूँ। एंड उन्होंने कहा इट्स इम्पोर्टेंट टू नोट दैट आई एम नॉट वेरी गुड एट डूइंग दिस, बट क्या हुआ कि ऐसा करते करते कुत्ते का अटेंशन जो है ये उसको मिल गया, और धीरे से कुत्ता जो दूर बैठा था उसके पास आ गया, पूंछ हिलाने लगा और देखने लगा। तो बॉल जो है ये एक बार गिरा उसके हाथ से, कुत्ता चुपचाप देख रहा था, एंड वो चीज़ कुत्ते को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी कि बॉल इसके हाथ से नीचे गिर रहा है। उसने फिर सारे बॉल्स उठाए और फिर जगल करना शुरू किया, और जानबूझकर एक बॉल नीचे गिरा दिया। कुत्ते ने लपक कर उस बॉल को उठाया, आगे जाकर थोड़ी देर तक उसको च्यू करता रहा, और फिर धीरे से बेनिन के हाथ में वो बॉल गिरा दिया। और ऐसा करते करते तकरीबन 3-4 मिनटों में कुत्ता जो है ये बेनिन के साथ खेलने लगा, समझने लगा, जानने लगा, और उसके बाद कई बार उसके मालिकों ने बेनिन के पास कुत्ते को छोड़ा, और एक बहुत अच्छा रिश्ता जो है दोनों के बीच कायम हो गया। तो भाई देखिए, प्यार और मोहब्बत की भाषा जो है ये कहने की ज़रूरत नहीं, जानवर भी समझते हैं। तो कभी कभी हम ही ऐसी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं जो शायद हमारी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं से कुछ खुशी जो है ये ला सकती है।

0: Supermarket Newlyn, Namaste New Zealand Immigration Services, Indelible Homes, Gem Entertainment, TradeWorks Group, Classic Automotive Solutions Limited, Malolo Rentals and Tours, or IIIA Science. जानकारियों के लिए हम सुनते रहें.
1: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद. Bring home everyone's favorite Shan Foods recipe mixes. Bombay biryani हो या butter chicken, korma या chana masala. Recipes चाहे vegetarian हो या non-vegetarian. Shan recipe mixes हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती हैं. तो इंतजार किस बात का? आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से Shan recipe mixes खरीदिए. Shan Foods, असली स्वाद हर घर के लिए.
2: Spend $30 at Trade Depot and get fast free delivery anywhere in Auckland. Vogue dishwasher, just $299. Iceland fridge freezer, just $299. My Dia washing machine, just $299. Shop online now at Trade Depot. Spend $30 and get fast free delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply.
3: Hey Neha, congratulations on your first home. तूने तो कहा था कि दो-दो banks ने loan देने से और एक famous broker ने तो case लेने से ही मना कर दिया था. ये घर कैसे?
4: अरे ये तो Logic Finance के गुरु कैंडोला का कमाल है. एक real estate वाले ने उन्हें suggest किया. मैंने उन्हें Facebook पर ढूंढा और directly contact किया.
3: Neha, अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ.
5: First home buyer बनना है या investment property लेनी है? तो आज ही call करें Logic Finance के गुरु कैंडोला को on 0800 Logic Guru.
6: Media Voice complaints. How can I help?
7: Yeah. Hello.
6: Hi.
7: Hi. Yeah. Can you guys take a radio jingle out of my brain?
6: Oh, you mean like a jingle extraction? It's our job to put advertising in there.
7: Well, okay. Well, what about something like a brain surgeon?
6: They'll probably just explain how repeat hearing puts things deep in your emotional memory, and I really don't think it's necessary. But yes, if you must, I do have the name of one.
7: Great. Sing it to me.
8: Advertise with Media Works. New Zealand listens to us.
9: The beat of Bollywood.
10: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
9: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
11: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living Monaco. Spring sale on now. Beautiful furniture with 60 months interest free. T's and C's apply. Only at Harrington Living Monaco.
12: Global Headlines.
13: आज सुबह के मुख्य समाचारों में, सऊदी अरेबिया ने इराक से हुए ड्रोन अटैक्स के बाद अपनी ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन को बंद कर दिया है, जिससे पिछले 6 महीने से चल रहे यूएस ईरान वो के बीच ग्लोबल ऑयल मार्केट पर खतरा और बढ़ गया है. अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इसका आरोप ईरान बैक्ड ग्रुप्स पर लगाया है, जबकि ईरान ने इस आरोप को कैटेगरिकली डिनाई किया है और अभी तक किसी ग्रुप ने रेस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम नहीं की है. इस पाइपलाइन के बंद होने से दुनिया के करीब 4% ऑफ ऑयल सप्लाई ऑफलाइन हो सकती है, जिससे पहले से ही परेशान ग्लोबल एनर्जी मार्केट में क्राइसिस और गहरा होने की आशंका है. भारत में राजस्थान अर्बन बॉडी इलेक्शंस में रूलिंग बीजेपी ने कांग्रेस को पीछे छोड़ते हुए 4,179 वोट्स पर जीत हासिल की है और 10 में से 4 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में क्लियर मेजोरिटी हासिल कर ली है. इंडिपेंडेंस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2,273 वोट्स जीते हैं और चीफ मिनिस्टर भजनलाल शर्मा के होम टाउन भरतपुर में 65 में से 36 वोट्स पर कब्जा किया है. कांग्रेस ने बीकानेर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में मेजोरिटी हासिल की है और भूतपूर्व सीएम वसुंधरा राजे के गढ़ झलावर म्यूनिसिपल काउंसिल में बड़ी जीत दर्ज की है. फिजी में सुपर मजिस्ट्रेट्स कोर्ट ने भूतपूर्व डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर प्रोफेसर बिमान प्रसाद के खिलाफ चल रहे फाइके केस को थर्सडे तक के लिए होल्ड पर रख दिया है, जबकि हाई कोर्ट आज प्रोसीडिंग्स पर इंटरिम स्टे की एप्लीकेशन पर सुनवाई करेगा. फाइके का लॉयर जोसेफ वर्क का कहना है कि हाई कोर्ट में एप्लीकेशन होने के बावजूद मजिस्ट्रेट्स कोर्ट पर कार्रवाई रोकने की कोई पाबंदी नहीं है और प्रोसिक्यूशन एविडेंस लेना जारी रख सकता है. प्रोफेसर प्रसाद के काउंसिल रिचर्ड नायडू की दलील के बाद मजिस्ट्रेट्स कोर्ट ने मामले के अगले आदेशों के लिए थर्सडे सुबह तक के लिए हियरिंग एडजर्न की है. इंग्लिश प्रीमियर लीग का एक मैच आज सुबह 7 बजे से खेला जाएगा. इस मैच में लीड्स यूनाइटेड न्यूकासल यूनाइटेड को होस्ट करेगा. मैच पर अपडेट्स आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे. ये रहे सुबह के मुख्य समाचार।
12: Bollywood's most wanted.
14: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ।
15: मैं लाऊं अपना A game.
12: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: All bana de.
1: Brought to you by Lifestyle Furniture, Manuko, Mount Wellington, and Westgate. Up to 60% off on now.
2: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाने चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागिन।

0: 27 मिनट रह गए हैं 7 बजने में ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा. हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स 104.2 एफएम ईयर ओवर पर आप हमारा साथ दे रहे हैं. थैंक यू सो मच. गुड मॉर्निंग के कुछ मैसेजेस आपके आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सुबह सुबह हमें याद करने के लिए. सबसे पहले बॉबी मान जी, वेरी गुड मॉर्निंग आपको हम कहना चाहेंगे. मिस्टर मटा मटा, आपका भी मैसेज आया है. राम राम, हैप्पी ट्यूजडे एवरी वन, हैव अ ग्रेट डे. आपको भी वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए और सुबह सुबह हमें प्रोग्राम में याद करने के लिए. इस दिन की शुभकामनाएं देने के लिए भी आपको अनेकों बार शुक्रिया हम कह रहे हैं. और बॉलीवुड में भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, अभी काफ़ी बातें हो रही हैं करीना कपूर खान की आने वाली फिल्म जो है दायरा, इसके बारे में 12 सितंबर को तकरीबन 3 दिन पहले खबर आई थी कि फिल्म दायरा जो है उसे आई रेटिंग दी गई है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन द्वारा. और खबर ये आ रही है कि फिल्म में कोई विजुअल कट नहीं किया गया है, यानी कि ओल जो वायलेंट सीन्स वगैरह थे सभी उसी तरह से दिखेंगे. और ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि इस फिल्म में काफ़ी हैवी ड्यूटी हार्ड हिटिंग डायलॉग्स जो है ये रहेंगे, उनको भी काटा छाटा नहीं किया है. एक छोटा सा मॉडिफिकेशन ही किया गया है एग्जामिनिंग कमिटी द्वारा. और एक डायलॉग जो है करीना कपूर खान का ये चेंज किया गया है, एक वोट जो है उसको रिप्लेस किया गया वोट मिनिस्टर के साथ. और जब ये चेंज कर दिया गया, दायरा को पास कर दिया गया 11 सितंबर को. ये फिल्म जो है 2 hours 23 minutes की है और मेघना गुलजार ने इसे डायरेक्ट किया है, जिसमें पृथ्वीराज सुकुमारन जो है ये काम कर रही हैं. एंड इट मार्क्स द 10th करीना कपूर खान फिल्म दैट विल बी फॉर अडल्ट्स ओनली. बाकी के जो 9 फिल्म्स हैं, 2001 में अजनबी, 2003 में चमेली, 2004 में देव, 2006 में ओमकारा, 2009 में कुर्बान, 2012 में हीरोइन, 2016 में उड़ता पंजाब, उसके बाद 2018 में वीरे द वेडिंग और 2024 में बकिंगम मर्डर्स. दायरा फिल्म जो है बस 3 दिनों बाद रिलीज होने को है. और लेट्स सी क्या और डिटेल्स इस फिल्म को लेकर सामने आते हैं और वक्त के साथ ये फिल्म जो है बॉक्स ऑफिस पर कैसा कमाल कर पाती है. जानकारियों के लिए हम के साथ ही आपको रहना है.
1: ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा.
2: डोंट माइंड, लेकिन आप दोनों की जोड़ी बड़ी क्यूट है.
3: Accurate traffic.
4: You made it with Caboodle.
5: Fine spells with a lot of cloud today, a high of 17 degrees. All good with public transport, including the City Rail Link. So far, so good for day 3 today. Northern Motorway, if you're driving, just 18 minutes in from Constellation Drive. Slow at Silverdale and Constellation to Waido Valley. Northwestern, slowing close to the city, 20 in from Massey and Southern 23. Manukau to town, slow Papakura to Manurewa. Southwestern, fine both ways.
4: Impress even the toughest critics with Caboodle's stylish, affordable and easy to install kitchens.
6: It's normal to feel low sometimes. Just like how the weather changes, so can our moods. Pay attention to your feelings. Reach in and check how you're doing. Reach out and talk to someone you trust. If you need to talk with a trusted professional, Asian Family Services is here to support. Call the Asian Helpline on 0800-862-342 for free, confidential support. If you or someone you know is in immediate danger, please call 111 or Emergency Services.
7: Commonwealth Vault आपके precious belongings को रखता है safe और secure. Gold, bullion और precious metals की value जब all time high पे है, तब ये पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है कि आपके assets theft और natural disaster से protected रहें. जब आप अपने valuables Commonwealth Vault को entrust करते हैं, तो आपको मिलता है peace of mind, ये जानते हुए कि वो safe, secure और protected रहेंगे. Commonwealth Vault, securing your valuables for a lifetime and beyond. Details at commonwealthvault.go.nz. That's commonwealthvault.go.nz.
8: What if your next holiday wasn't just a holiday, but the adventure everyone's still talking about? This Easter, Bali and Bangkok, one epic trip. 5-star all-inclusive stays, breakfast, lunch, dinner, sorted. Return flights from Auckland to Bali, to Bangkok and back. Sightseeing, activities, even dinner cruises in both cities, all included. Come, explore with Sun Tours and a whole group of fellow travelers. Call 0800 Sun Tours for affordable prices. Spaces are limited. Your story starts here.
4: Get ready, Auckland City. This Thursday, be first through the doors at Nolim and Queen Street for grand opening deals too good to miss. Save big on a huge range of tech. Enjoy giveaways, a live DJ and more at Nolim and Queen Street. T's and C's apply.
3: Make the most of your deck with a stylish louver from Trade Tested. From tiny decks to massive decks, we've got a louver that'll suit you. Easy to put together and unbeatable value starting at only $3,000. Make your backyard great at Trade Tested today.

0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Manukau. Spring sale on now. Beautiful furniture with 60 months interest free. T's and C's apply. Only at Harrington Living Manukau.
2: 21 मिनट रह गए हैं अभी 7 बजने में और द ब्रेकफास्ट शो विद विजय पूजा आपके लिए जारी है. आज 15th ऑफ सितंबर है. एक बार फिर आपको याद दिलाते हैं, अगर आपने अपने बर्थडे या एनिवर्सरी मैसेजेस हमारे पास नहीं भेजे हैं, वक्त है आपके पास. 7:30 बजे के बाद आपको हम विश करेंगे इस प्रोग्राम में. तो उससे पहले अपने मैसेजेस आप हमें 5599 पर ज़रूर भेज सकते हैं या buzz@humfm.com पर ईमेल भी कर सकते हैं. 15th ऑफ सितंबर को देखें, पर्टिकुलरली यूएस में नेशनल google.com डे जो है ये मार्क किया जाता है. इसका मतलब ये होता है कि खासतौर पर वहाँ पर अप्रिशिएट करने का दिन है गूगल को, क्योंकि देयर टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल जो हर दिन गूगल का इस्तेमाल करते हैं और उसको अप्रिशिएट करने का आज वहाँ खास दिन मार्क किया जाता है. इट्स इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी और उसके साथ आईटी प्रोफेशनल्स डे ये भी आज मार्क किया जा रहा है. मई का हेट डे, जो लोग सेविंग करते हैं, फेल्टिंग करते हैं, नीटिंग करते हैं, तो आज ये आप बना सकते हैं. और इसके साथ ग्रीन पीस डे ये भी आज मार्क किया जा रहा है. एंड इट्स चीज टोस्ट डे, बहुत सारे लोगों का ये हॉट फेवरेट हमेशा होता है. तो ये चीज़ें आज मार्क की जा रही हैं और इन चीज़ों के बारे में आपको तो हम डिटेल्स देते ही रहते हैं. उसके अलावा एक और चीज़ जो है जो इस वीक हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, इस द मौरी लैंग्वेज वीक. मौरी लैंग्वेज वीक में अगर देखें तो कई चीज़ों के बारे में हम बातें करते रहते हैं टेरियो में, और इससे रिलेटेड कुछ हमारे फेसबुक पेज पर भी आपको मिलेगा जो वहाँ जाकर आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं. फिलहाल आज किस फिल्म के बारे में हम बातें करने जा रहे हैं आज का हमारा पहला सवाल, तो आपको कुछ एक्टर्स का नाम हम बता रहे हैं और आपको अनुमान लगाना होगा कि फिल्म कौन सी है. तो अच्छी तरह से आप सुने. द एक्टर्स आर नाना पाटेकर, तबू, जयाप्रदा. नाना पाटेकर, तबू और जयाप्रदा, तीन नाम हमने आपको दिए हैं. इन तीन नामों से क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये कौन सी फिल्म हो सकती है? अगर हाँ तो BF अपना आंसर और अपना नाम ये 5599 पर आप हमारे पास भेजें.
3: Let's go.
4: Straight from the heart. Unlock your property's true sale value with NZPMI, your

0: तो अभी अगर देखें, आज की जो फिल्म हमने आपको बताई है, नॉट इवन अ सिंगल करेक्ट आंसर, एक भी सही जवाब इसके लिए अभी तक हमारे पास नहीं आया है। तीन नाम हमने आपको बताए हैं, नाना पाटेकर, तबू और जया प्रदा। ये तीन एक्टर्स जो हैं, अगर इनका नाम आप सुनते हैं, कोई ऐसी फिल्म है जो आपके जहन में आती है, आपके दिमाग में आती है कि हाँ इस फिल्म में इन्होंने काम किया था। चलो एक नाम और हम आपको बता देते हैं, जैकी श्रॉफ। चार एक्टर्स हमने रिवील कर दिए हैं, क्या आप अनुमान लगा पाते हैं? नाना पाटेकर, तबू, जया प्रदा और जैकी श्रॉफ, इन्होंने इस फिल्म में काम किया। अब क्या आप अनुमान लगा पाते हैं या नहीं, अभी दो मिनट बाद इस पर हम नजर डालेंगे।
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
2: चुप हो जाओ पापी, चुप हो जाओ।
3: March 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
4: रुजबी, टिकट्स बुक हो गए,
5: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा,
4: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी,
5: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन,
4: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
6: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
7: हेलो एवरीबॉडी।
3: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
8: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
3: टेक्स्ट ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुस्बे, ओनली ऑन हम। Accurate traffic.
9: Wardrobes Direct spring sale.
10: A high of 18, a lot of cloud, fine at times today. Coming into the city, Southern Motorway, we are slow Papakura on and off to Papatoetoe, and then again at Mount Wellington and Ellerslie, 28 minutes Manukau to town. Southwestern looking okay. The Northwestern 25 Massey to the city, slow at Te Aritu, Pātiki and then St. Luke's to the city. Northern 22 from Constellation, slow there to Wairau Valley at Esmond and back at Silverdale.
9: Upgrade your wardrobes and sliding doors. New spring sale. Visit Wardrobes Direct's two Auckland showrooms.
11: Professional Financials है साथ आपके, लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे, नो ब्रोकर चार्ज, बस ट्रस्टेड एडवाइस, हर डील बनाए परफेक्ट राइट।
12: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स, लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक।
11: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो, हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो, सब कुछ मिलेगा यहीं, अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए।
12: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी। कॉल 09846-9934 और सर्च PFSL, T's and C's, लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई।
13: You know Elite Bathroomwear? Family owned since 2002. 48 hard-working Kiwis. One obsession? Bathrooms. With the ultimate showroom and the biggest range. Curating the best brands and bathroom fittings so you don't have to compromise. You asked? Elite delivered. The spring bathroom sale is on for September only. It's your chance to have that high-end bathroom with incredible savings. Elite Bathroomwear. Kiwi owned and operated. 59 Allens Road, East Tāmaki. See you there.
14: NIB's got your back. Sign up for NIB hospital cover before 30 November 2026 and get a $200 gift card after paying for your first 3 months. See nib.co.nz for full eligibility criteria and T's and C's.
15: Kick breast cancer to the curb and volunteer for the Pink Ribbon Street Appeal this October. Pick a two-hour shift at a time and location that suits you to help the thousands of women diagnosed with breast cancer. Sign up at pinkribbonvolunteer.org.nz.
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
3: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Manukau. Spring sale on now. Beautiful furniture with 60 months interest free. T's and C's apply. Only at Harrington Living Manukau.
1: Breakfast catch up. Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
0: भैया आज तो कमाल ही हो गया, जो सवाल हमने आपसे पूछा है, जिस फिल्म के बारे में हमने आपसे पूछा है, चार ही लोगों ने अटेम्प्ट किया है अभी तक जवाब देने का, और क्या उनके आपके जवाब सही है या नहीं, ये तो हम 7 बजे न्यूज एंड स्पोर्ट्स अपडेट के बाद बताएंगे। कृणाल हैं साथ में, रोनाल्ड हैं, नीतिका और फिजा। ओनली 4 ऑफ यू, 4 लोगों ने ही कोशिश की है बताने की कि ये फिल्म जो है ये कौन सी हो सकती है। अभी तक और आज हमने अभी तक 4 नाम जो है ऑलरेडी रिवील कर दिए हैं कि कौन से वो 4 एक्टर्स हैं जो इस फिल्म में काम कर रहे हैं। नाना पाटेकर, तबू, जयप्रदा और जैकी श्रॉफ, ये 4 नाम हमने रिवील कर दिए हैं। 5th और आखिरी नाम अब हम आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान से आप सुने। जो 5th एक्टर है इज अमिताभ बच्चन। 5th एक्टर है अमिताभ बच्चन। तो अब आप सोचे कि कौन हो सकते हैं ये कौन सी फिल्म ये हो सकती है, नाना पाटेकर, तबू, जयप्रदा, जैकी श्रॉफ, अमिताभ बच्चन। इन सभी ने बहुत सारी फिल्मों में तो एक साथ काम किया नहीं है, अब कौन सी वो फिल्म हो सकती है जिसके बारे में आज हम आपसे जानना चाहते हैं। जवाब अपना भेजें और न्यूज इन स्पोर्ट्स अपडेट के बाद देखेंगे कौन कौन से आंसर्स जो है ये आपने हमारे पास भेजे हैं और उनमें से कितने जवाब सही हैं, कितने जवाब गलत हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। बस आज का हमारा पहला थ्रोबैक उस्ताद राहत फतेह अली खान से आप एंजॉय करें। इसके बाद न्यूज इन स्पोर्ट्स अपडेट भी लेटेस्ट हम आपकी खातिर इस प्रोग्राम में लेकर आने वाले हैं।

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: 9 degrees temperature अभी ऑकलैंड में आप फील कर रहे हैं. आज का हाई जो है ये 17 डिग्रीज होगा. ओवरनाइट कम से कम 9 डिग्रीज. कुछ बादल छाए रहेंगे, कभी कभार हल्की बारिश हो सकती है. सनसेट शाम 6:12 पर आज होगा.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
2: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living Manukau. Spring sale on now. Beautiful furniture with 60 months interest free. T's and C's apply. Only at Harrington Living Manukau.

0: 1800 634 234।
1: तो याद रहे, परमेश और उनकी टीम से बातें आप कर सकते हैं मेगा फाइनेंस ऐप में, और उनकी बेहतरीन सेवाओं से फायदा उठा सकते हैं जिनकी ओर से अब मॉर्निंग मैडनेस हम शुरू करने जा रहे हैं। ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स 104.2 एफएम और रोवर पर 3:30 हो रहे हैं, 7:00। इस घंटे थोड़ी ही देर में बताएंगे आज का दिन आपके लिए कैसा गुजरेगा, आपके राशि वाइब्स हम लेकर आएंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट 7:30 न्यूज हेडलाइंस, सेलिब्रिटी अलार्म भी खेलेंगे इसी घंटे आपके साथ। अपार्ट फ्रॉम दैट, पिछले घंटे जो सवाल हमने आपसे पूछा, क्या गति हुई है आज के मूवी ऑफ द डे की, तो सबसे पहले क्रुणाल ने अपना जवाब जो है ये हमें भेजा। रोनल्ड थे, नीतिका, फिजा, दीज वे द फोर पीपल इनिशियली जिन्होंने अपने आंसर्स हमारे पास भेजे थे। उसके बाद विधि है, हरमिलाप, नीलेश, सईद और राहुल, 4-5 और लोगों ने ही आज अटेम्प्ट किया। क्लूज हमने आपको आज की फिल्म के लिए कुछ जो दिए थे वो थे नाना पाटेकर, तबू, जयप्रदा, जैकी श्रॉफ और अमिताभ बच्चन, ये एक्टर्स थे। और इसके अलावा अगर देखें तो इस फिल्म में मुकुल देव, आयशा जुल्का, मुकेश ऋषि जैसे अवतार गिल और कई अन्य कलाकारों ने भी काम किया था। ये फिल्म जो है 1999 में आई थी, 1999, और इस फिल्म के जो डायरेक्टर थे मेहुल कुमार, उनकी बेटी जहान ब्लोच ने इस फिल्म में अमिताभ बच्चन की बेटी का रोल जो है ये प्ले किया था, और वो फिल्म थी कोहराम। नाना पाटेकर और अमिताभ बच्चन ने एक साथ इस पिक्चर में काम किया था।

0: 1034.
1: Rashi Vibes.
2: आज का दिन आपका कैसा रहेगा? मेष यानी एरीज, आज सबसे पहले आपके लिए कहा जा रहा है कि आज पार्टनर्स के साथ आपका तालमेल जो है ये बहुत बढ़िया बैठने वाला है। इसके अलावा नए डील्स से आपको फायदा हो सकता है। ऑफिस में आज कॉलीग्स का सपोर्ट और समर्थन जो है ये आपको मिलेगा। निजी जिंदगी में भी आज आप आगे बढ़ेंगे। वृष यानी टॉरस, आज जो लोग नौकरी करते हैं आपके लिए दिन बड़ा अच्छा होगा। अटका हुआ काम आपका पूरा होगा। लोन रिपेमेंट्स वगैरह करने में आसानी होगी। अचानक आपके एक्सपेंसेस कुछ बढ़ सकते हैं, इसका ख्याल आपको रखना पड़ेगा। मिथुन यानी जेमिनी, आज क्रिएटिव कामों से या मीडिया से जुड़े लोगों के लिए बहुत अच्छा दिन होगा। बिजनेस में कुछ नए आइडियाज से बड़ा फायदा हो सकता है। बच्चों की ओर से कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। फाइनेंशियली आज आप अपने दिन में कुछ इम्प्रूवमेंट्स जो है ये देखेंगे। और इसके अलावा कर्क यानी कैंसर, प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई काम आपका बन सकता है। आज अपने मन को फोकस्ड रखें, कंट्रोल में रखें, ये बहुत ही ज़रूरी है। व्हीकल पर या प्रॉपर्टी पर पैसे खर्च हो सकते हैं। सिंह यानी लियो, आज आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। छोटे ट्रैवल पर अगर आप निकलते हैं तो इससे आपको फ़ायदा हो सकता है। और फाइनेंशियली आज पैसों का फ्लो जो है अच्छा रहेगा। दिन भर काफ़ी फ्रेश और एनर्जेटिक आप फील करेंगे। कन्या यानी विगो, आज बिजनेस में कहीं पैसा आपका फंसा पड़ा था तो ये आज वापस मिल सकता है। परिवार वालों के साथ, पार्टनर के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे। बचत करने में आज आप सक्सेसफुल होंगे। तुला यानी लिब्रा, आज मेंटली यू विल बी एट पीस और लोग काफ़ी अट्रैक्टेड होंगे आपकी तरफ। जो फाइनेंशियल डिसीजंस हैं अच्छी तरह से सोच समझ कर ले। कुछ नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आज आपको मिल सकती हैं। वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो, भाग दौड़ कुछ ज्यादा करनी पड़ेगी जिससे आप कुछ टेंस्ड हो सकते हैं। विदेशी सोर्सेस से यानी ओवरसीज सोर्सेस से आपके बिजनेस को फायदा हो सकता है। अपने पार्टनर के बात से शायद आपका मन थोड़ा दुखी हो। इट्स इंपॉर्टेंट कि बातचीत के जरिए इस इशू को आप रिजोल्व करें। अचानक अनचाहे एक्सपेंसेस सामने आ सकते हैं, इसीलिए किसी के साथ भी लेन देन करते समय आज आपको सावधान रहना चाहिए। धनु यानी सेजिटेरियस, आपके लिए कहा गया है कि आज अपनी इच्छाओं को आप पूरा कर सकते हैं। क्लाइंट्स से आपको कोई बड़ा फायदा हो सकता है। बिजनेस में दोस्तों के साथ, अपने जीवन साथी के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने का मौका आपको मिलेगा। और हेल्थ आज आपका बहुत बढ़िया रहेगा। मकर यानी कैप्रिकॉर्न, आपके लिए कहा गया है आज काफ़ी इन्फ्लुएंशियल रहेंगे आप लोगों के बीच में। बॉसेस आज आपको अपना पूरा सपोर्ट देंगे। बिजनेस डील्स फाइनलाइज हो सकते हैं। कोई सरकारी काम था तो ये भी आज पूरा हो सकता है। और आज अपने निजी जिंदगी को, शायद पर्सनल लाइफ को आप उतना टाइम नहीं दे पाए क्योंकि काम में आज आप काफ़ी बिजी रहेंगे। कुंभ यानी एक्वेरियस, आज किस्मत का पूरा साथ रहेगा आपका आपके साथ। और आज अटके हुए पैसे आपको मिलेंगे। अचानक पैसों का फायदा हो सकता है। एंड आज आपके लिए कहा गया है कि रिसर्च या फिर एजुकेशन से रिलेटेड लोगों के लिए दिन बड़ा अच्छा गुजरने वाला है। मीन यानी पाइसेस, आज कामों में कुछ रुकावटें आ सकती हैं। हो सके तो किसी तरह का रिस्क ना लें। फैसले करने में भी आप रश ना करें। कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह साइन कर रहे हैं या करना है आज आपको, तो अच्छी तरह से पेपर जो है ये पढ़ ले। फाइन प्रिंट्स पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी होगा। किसी भी तरह की गलतफहमी से आज जहां तक हो सके बच कर रहने की कोशिश करें। सो दिस वे योर राशि वाइब्स ऑन हम। और अब 17 मिनट हो रहे हैं 7 बजकर।
1: द ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
3: चुप हो जाओ पापियो, चुप हो जाओ।
1: कीप काम बिकॉज़ पंजाबी स्वैग इज ऑन।
4: ਮੰਗੀਏ ਤੇ

0: Streaming on Rover.
1: होम लोन के साथ थोड़ा कैश भी पाना चाहते हैं? नया होम लोन लेना हो या मौजूदा लोन का रिव्यू करवाना हो, स्क्विरल आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त डील कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। जानिए पावर ऑफ द स्क्विरल इफेक्ट। squirrel.co.nz

0: thinking of renovating or extending your home? Greystone Builders specializes in renovations and extensions of kitchen and bathrooms, decks and fences, and offer professional house painting. Licensed builders providing quality work at reasonable prices. Call Greystone Builders on 021-165-9362. That's 021-165-9362 for a free quote. Or visit greystonebuilders.co.nz.
1: Get ready, Auckland City. This Thursday, be first through the doors at Nolim and Queen Street for grand opening deals too good to miss. Save big on a huge range of tech. Enjoy giveaways, a live DJ and more at Nolim and Queen Street. T's and C's apply.
2: In business, relationships matter, respect matters, and so does keeping your word. As a business owner, what do you do when customers won't pay your invoices? Kedar Limited, they understand that the Indian community values trust, relationships, respect and keeping their word. With 20 years of debt recovery experience, they use respectful follow-up and mediation to recover your B2B debts. Want your invoices paid? Call Kedar Limited on 022-090-9845. Pehle baat, phir solution or payment fee.
3: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
4: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Manukau. Spring sale on now. Beautiful furniture with 60 months interest free. T's and C's apply. Only at Harrington Living Manukau.
3: Celebrity Alarm. Hit it.
5: 20 मिनट हुए हैं 7 बजकर और अब वक्त है आज के सेलिब्रिटी को आप पहचानने की कोशिश करें कि ये कौन हो सकते हैं और उसके बाद और भी बातें होंगी लेकिन सबसे पहले इनकी आवाज़ जो है ये हम आपको सुना रहे हैं
6: I don't read all the things written about me. I wasn't aware that the world thought I was so weird and bizarre. But when you grow up as I did in front of 100 million people since the age of 5 You're automatically different. My child.
5: तो अब बताएं कि ये कौन हो सकते हैं किस सेलिब्रिटी की ये आवाज हो सकती है बी एफ अपना आंसर और अपना नाम ये 5599 पर आपको हमारे पास भेजना है
6: I don't read all the things written about me. I wasn't aware that the world thought I was so weird and bizarre. But when you grow up as I did in front of 100 million people, Since the age of 5, you're automatically different. My childhood.
5: तो अब हमें इनका नाम चाहिए इतने देर में तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कोशिश की जाती है लेट्स सी कितने लोग अटेम्प्ट भी कर पाते हैं आज के हमारे सेलिब्रिटी को पहचानने की और अपना जो जवाब है ये हमारे पास आप भेजते हैं कुछ देर बाद आंसर्स जो हैं इन पर भी हम नज़र डालेंगे और कई खबरें हैं कभी आपने सुना है कि ये कोई अपना जो प्रमोशन है वो डिक्लाइन कर दे हैव यू एवर कम अक्रॉस समवन जिन्होंने उनको मिल रहे प्रमोशन को डिक्लाइन कर दिया कि नहीं नहीं नहीं मुझे ये प्रमोशन नहीं चाहिए एक बड़ी यूनिक स्टोरी आज हमारे हाथ लगी है वो हम आपको बताएंगे फिलहाल बी एफ आज के हमारे सेलिब्रिटी का नाम और अपना नाम ये 5599 पर आप हमारे पास भेजें नेहा है साथ में भावना है 1919 आपने तो अपना नाम ही नहीं लिखा आपने भी अपना जो जवाब है ये हमारे पास भेजा है थैंक यू सो मच ट्राई करें लेट्स सी आप में से कितने लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं आज के सेलिब्रिटी को
3: बॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड
7: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ
8: मैं लाऊं अपना ए गेम
3: ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स बिल्ड योर ड्रीम्स

0: 0800 634 234.
1: News headlines.
2: सुबह के मुख्य समाचारों में, सऊदी पाइपलाइन पर ड्रोन अटैक्स, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के बंद होने और रशियन रिफाइनरीज पर यूक्रेन के हमलों से ग्लोबल डीजल शॉर्टेज बढ़ गई है, जिससे न्यूजीलैंड में फ्यूल प्राइसेस तेजी से ऊपर जा रहे हैं। न्यूजीलैंड में पिछले 28 दिनों में 91 पेट्रोल 15 सेंट्स बढ़कर $3.11 और डीजल 14 सेंट्स बढ़कर $2.79 पर लीटर तक पहुंच गया है। आईएई के पॉलिसी एडवाइजर टेरी कॉलिंस का कहना है कि जब तक ओवरसीज कॉन्फ्लिक्ट्स कम नहीं होते, तब तक नवंबर यूएस मिड टर्म या फिर क्रिसमस तक फ्यूल प्राइसेस से राहत मिलने की कोई आशा नहीं है। ऑकलैंड के स्टारशिप और किड्स फर्स्ट हॉस्पिटल्स में बच्चों के सबसे ज्यादातर फ्लू सीजन के चलते एक्स्ट्रा पेडिट्रिशियंस बुलाए गए हैं और इलेक्टिव प्रोसीजर्स को कॉल ऑफ कर दिया गया है। पीएचएफ साइंस के मुताबिक पिछले 4 हफ्तों से हर हफ्ते करीब 70 बच्चे सवेरे रेस्पिरेटरी सिम्टम्स के साथ एडमिट हो रहे हैं, जो जुलाई एंड से 85% का बड़ा जंप है। डेम टेयूला फेस्टिवल ने इसे सालों का सबसे बेड विंटर बताया है, जहां डिहाइड्रेशन, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स और हाई फीवर के चलते बच्चों को इमरजेंसी डिपार्टमेंट और इंटेंसिव केयर में भर्ती करना पड़ रहा है।

0: प्रीमियर लीग का एक मैच फिलहाल लीड्स यूनाइटेड और न्यूकासल यूनाइटेड के बीच खेला जा रहा है। प्रथम हिस्से में तकरीबन आधे घंटे का खेल पूरा हो चुका है और अभी लीड्स की जीत न्यूकासल के खिलाफ 1-0 से हो रही है। इस मैच पर और भी अपडेट्स आपके लिए बारी बारी से हम पर हम लेकर आते रहेंगे। ये रहे सुबह के मुख्य समाचार।
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja,
2: brought to you by Fortune, with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Monaco, spring sale on now. Beautiful furniture with 60 months interest free. T's and C's apply. Only at Harrington Living Monaco. Accurate traffic.
3: Auckland Pet Expo this weekend.
4: A lot of cloud, but still fine today. Got a high of 17. Coming in on the southern motorway, 40 minutes Manukau to town, an hour from Drury. Slow patches all the way from Papakura, a bit heavy closer to the city. Northwestern, 41 in from Massey. Slow the whole way. It's heavy upper harbour to the Causeway and at St. Luke's. Northern, half an hour Constellation to the city, an hour from Silverdale. Very heavy at Silverdale and heavy on and off from Constellation.
3: Auckland Pet Expo, Auckland Showgrounds this weekend. PetAnimalExpo.co.nz.
5: The kids depend on us for everything. Meals, rides, band-aids, bedtime stories. But who do we depend on?
6: Hi, I'm Nitesh Hira from Assure One. School holidays remind us how much our families rely on us. My job is making sure reliance never becomes a risk. Helping you understand your options so your family is covered whatever happens. Call Assure One on 0800-77-HIRA or visit assureone.co.nz. North and Vale Advisory Limited, trading as Assure One, is a licensed financial advice provider.
7: Indulge in the sumptuous flavors of South Asia at Sudima Auckland Airport's popular food festival. Their specialist chefs are preparing an exquisite buffet from India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal and more. Gather your family and friends for a memorable evening of food and fun this Labor weekend, 24th and 25th October. Early bird tickets just $75 per person with a welcome drink included. Kids 6 to 12 half price, under 5s free. Book now at sudimahotels.com/foodfestival.
8: 4.95% finance on your next car. Exclusive to West City Auto Group. Right now, get into the Havel Jolion, Havel H6, Tank 300 or Canon Ute range with 4.95% per annum fixed finance for 48 months with just 20% deposit. Whether you're after something stylish, practical, rugged or ready for work, they've got something for everyone. But hurry, this exclusive offer won't last forever. Speak with Jimmy Taylor and team at West City GWM. For T's and C's, head to westcityautogroup.nz.
9: Hey Neha, congratulations on your first home. तूने तो कहा था कि दो-दो banks ने loan देने से और एक famous broker ने तो case लेने से ही मना कर दिया था। ये घर कैसे?
10: अरे ये तो Logic Finance के गुरु कैंडोला का कमाल है। एक real estate वाले ने उन्हें suggest किया। मैंने उन्हें Facebook पर ढूंढा और directly contact किया।
9: Neha, अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ।
11: First home buyer बनना है या investment property लेनी है? तो आज ही call करें Logic Finance के गुरु कैंडोला को on 0800 Logic Guru.
12: The beat of Bollywood.
13: World's best हमारी कोई branch नहीं है।
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
2: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Monaco. Spring sale on now. Beautiful furniture with 60 months interest free. T's and C's apply. Only at Harrington Living Monaco.
1: Birthday greetings.
14: Iska birthday bhai?
15: Mera bhi birthday hai. Chalo line mein aa jao.
14: Happy birthday to you.
0: Many happy returns of the day. आज का ये दिन आपको बहुत बहुत बार शुभ और मुबारक हो। सबसे पहले शर्मिला कुमार, आज आप अपना 37th बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। खुशी के इस मौके पर आपके जितने भी परिवार वाले हैं सभी शुभकामनाएं और बधाइयां आपको दे रहे हैं। पति हैं आपके संजू, साथ में बेटी हैं आपकी, मनोज ने भी आज आपको याद किया है, सेल्विन है और इसके अलावा श्वेता हैं, मीनाक्षी हैं, सोनिया, अनीता, आरतिका, रोशनी, सभी ने आज आपको बेस्ट विशेस दी हैं, आपकी लंबी उम्र की कामना और प्रार्थना की है। आज का ये खास दिन आपको बहुत बहुत बार शुभ और मुबारक हो। अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आपके साथ और भी जितने लोग जहां कहीं पर भी आज अपना स्पेशल डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप सभी को आज का ये खास दिन अनेकों बार शुभ और मुबारक हो।

0: dance experience. Call 0800-634-234.
1: 22 मिनट रह गए हैं अभी 8 बजने में. 8 पर न्यूज एंड स्पोर्ट्स अपडेट हम आपके लिए लेकर आएंगे और आज प्रोग्राम में एक खास मेहमान जो हैं ये भी आने वाले हैं, तो उनके बारे में डिटेल्स जो हैं ये बाद में चलकर आपको हम ज़रूर देंगे कि कौन है ये और क्या होने वाला है, किस चीज़ के बारे में उनसे बातें जो है ये हम करेंगे. तो इन डिटेल्स की खातिर आपको हमारे साथ ही इस प्रोग्राम में शामिल रहना पड़ेगा. फिलहाल ये भी याद रखें कि इट्स नॉर्मल टू फील लो समटाइम्स, इट्स जस्ट लाइक द वेदर चेंजेस. पे अटेंशन टू योर फीलिंग्स, रीच इन एंड चेक हाउ यू आर डूइंग, रीच आउट एंड टॉक टू ए ट्रस्टेड प्रोफेशनल. सपोर्ट इज अवेलेबल एट एशियन फैमिली सर्विसेज. कॉल एशियन हेल्पलाइन ऑन 0800-862-342 फॉर फ्री एंड कॉन्फिडेंशियल मेंटल हेल्थ सपोर्ट. इफ यू और समवन इज इन इमीडिएट डेंजर, please call 111 or the emergency services. आज का हमारा जो celebrity alarm है, अभी तक आप में से कुछ लोगों ने कोशिश की है अपने जवाब जो है ये हमारे पास भेजे हैं. थैंक यू सो मच. नेहा है, साथ में भावना है, 1919 जैसे हमने पहले आपको बताया, उसके बाद इमरान, मनीषा और कविता आपने अपना जवाब भेजा है, अलका है और साथ में आंचल है, आयरा है, हेबा आपने अपना जवाब भेजा है, मोनिशा है और अंजलि और कविता और आपके साथ और भी जितने लोगों ने सलीन डियोन लिखकर हमारे पास भेजा है वो जवाब सही नहीं है. अच्छी तरह से जो आवाज़ है इसे आप सुने और उसके बाद आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें कि ये सेलिब्रिटी कौन हो सकते हैं, ये आवाज जो है किन की हो सकती है.
2: I don't read all the things written about me. I wasn't aware that the world thought I was so weird and bizarre. But when you grow up as I did in front of 100 million people since the age of 5, you're automatically different.
1: तो अब ये आखिरी बार आवाज हमने आपको सुनाई है और इतना भी आपको बता दें कि ये इंडिया से नहीं है, इतना हम आपको बता सकते हैं. तो अब कोशिश करें कि कौन ये हो सकते हैं. बी एफ अपना आंसर और अपना नाम ये 5599 पर आप हमारे पास भेजें. देखिए आप में से कितने लोग सही आंसर्स जो है ये हमारे पास भेज सकते हैं. कुछ देर बाद आज का जो सही जवाब है ये भी आपको इस प्रोग्राम में हम देने वाले हैं.
3: Let's go.
4: Straight from the heart. Unlock your property's true sale value with NZPMI, your local.

0: by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
1: समय की ओर देखें तो अभी 13 मिनट रह गए हैं 8 बजने में। 8 पर न्यूज़ एंड स्पोर्ट्स अपडेट हम लेकर आएंगे। अपने समय को आप मिला लें कि भाई यू आर ऑन टाइम, चाहे बच्चों को स्कूल छोड़ना है या फिर खुद ऑफिस पहुंचना है, एंड टाइम के साथ अगर आप चलते हैं तो रिजल्ट्स अच्छे हासिल करेंगे, वरना इधर से उधर भाग दौड़ जो है कि आपको करनी पड़ेगी। और आप में से कुछ लोगों ने अपने आंसर्स हमारे पास भेजे हैं। निक हैं, साथ में प्रिया हैं, तनिषा एंड शिखा, थैंक यू सो मच। जेनिस कुमार हैं, 7207 आपने अपना आंसर भेजा है। जाफर हैं, इसके अलावा 7190 आपका भी जवाब आया है। अली हैं पापाटोई से, क्रिश आपने भी अपना जवाब भेजा है, और राजेश फ्रॉम मनुरेवा, तनिषा जो है आपने भी अपना आंसर जो है ये हमारे पास भेजा है आज के हमारे सेलिब्रिटी अलार्म के लिए। तो थैंक यू सो मच आप सभी के आंसर्स की खातिर। एंड सेलिब्रिटी जिनकी आवाज़ हमने आज आपको सुनाई वाज द लेट माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन की आवाज़ जो है ये आपने सुनी, और हमने कहा है कि आज 8 बजे के बाद या ऑन द ब्रेकफास्ट शो लेटर ऑन एक खास मेहमान जो है ये भी हमारे साथ रहेंगे इस प्रोग्राम में, उनसे भी कुछ खास बातें होंगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, किसी ने जानना चाहा था कि हम बोर्डिंग कॉल इसका ड्रो क्या हो चुका है। नहीं, ड्रो अभी नहीं हुआ है, जो चेक्स हैं ये फ़िलहाल किए जा रहे हैं। आपने अपनी एंट्रीज जो है ये डाली या फिर हम बोर्डिंग कॉल में हिस्सा लिया, थैंक यू सो मच, नाम आपके ड्रो में शामिल हो गए हैं। और ड्रो जो है इसी फ्राइडे को किया जाएगा, ड्रोज हैपनिंग ऑन फ्राइडे, शुक्रवार को जो ड्रो है ये किया जाएगा, और तब पता चलेगा कि आप में से वो कौन है जिनको मिलेगा 2 रिटर्न एयर टिकट्स टू वनुआतु विद $1,000 स्पेंडिंग मनी। ये सब कुछ आपके नाम होने वाला है, तो आप में से कोई एक लकी होगा। सुनते रहें द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा। दूसरी तरफ अगले शुक्रवार को 25th of September को वैदिक सेंटर पापाटोई टोई में हम कीर्तन संग्रह के लिए रिकॉर्डिंग जो है ये की जाएगी, और जितने भी लोग रजिस्टर हो चुके हैं थैंक यू सो मच, और आपको भी हम इनवाइट कर रहे हैं कि आप आएँ और इसका हिस्सा बने, देखें कि किस तरह से रिकॉर्डिंग जो है यहाँ पर की जाएगी। आपको कोई एंट्री फ़ी जो है ये नहीं पे करना होगा, कुछ रिफ्रेशमेंट्स और कावा वगैरह जो है वो वहाँ पर ऑन सेल होंगे, जो आप चाहें तो एंजॉय कर सकेंगे। एंड देयर बी अपॉर्चुनिटी टू विन सम प्राइजेस आल्सो, और ये रहेगा नेक्स्ट वीक फ्राइडे को वैदिक सेंटर 32 ग्लेसगो एव पापाटोई टोई में। और अगर आप यहाँ पर आने वाले हैं तो डू लेट अस नो, तो उसी हिसाब से हम इनाम जो है ये आपके लिए लेकर आएंगे कि कितना इनाम जो है ये हमें लेकर आना चाहिए। आप क्या करें अभी, अगर आप नेक्स्ट वीक फ्राइडे को आ रहे हैं, हम की टीम भी यहाँ पर, हमारे कई साथी रहेंगे जिनसे आपका मिलना हो सकता है, तो आप के आर लिखें, उसके बाद अपना नाम लिखें और कहाँ से आप आने वाले हैं, जहाँ भी आप रहते हैं जिस सबब में उस सबब का नाम, ये हमारे पास 5599 पर टेक्स्ट कर दें। जितने लोग टेक्स्ट करेंगे आप सभी के नामों को भी एक ड्रो में शामिल किया जाएगा, और नेक्स्ट वीक फ्राइडे को ये ड्रो होगा वैदिक सेंटर 32 ग्लेसगो एफ पापाटोई टोई में। अगर आपका नाम निकलता है तो बड़ा ही शानदार इनाम जो है ये आपको मिल सकता है। अभी तो सरप्राइज है, इनाम हम रिवील नहीं करेंगे, ये आपको पता चलेगा जब आप आएंगे नेक्स्ट वीक फ्राइडे को, तकरीबन शाम 6:30 बजे से रिकॉर्डिंग जो है ये शुरू हो जाएगी। और अगर आप रजिस्टर हुए हैं एज एन आर्टिस्ट तो आपको बहुत जल्द इसके बारे में और भी डिटेल्स जो है ये दिए जाएंगे। और आप आ रहे हैं कलाकारों को देखने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, या फिर फॉर एन इवनिंग जहाँ पर आप देखें कि किस तरह से रिकॉर्डिंग्स जो है ये की जाती है, ये स्टूडियो स्टाइल रिकॉर्डिंग जो है ये एक लाइव एटमोसफियर में हम करने वाले हैं, तो ये एक्सपीरियंस करने का मौका भी आपको मिलेगा। सो इफ यू आर कमिंग अलोंग, KR अपना नाम और किस सबब से आप आने वाले हैं, ये तीन चीजें लिखें और 5599 पर उसे हमारे पास अभी से लेकर 8 बजे के बीच हम आपको टाइम दे रहे हैं, उसे भेज दे ताकि आपके नामों को हम ड्रो में शामिल कर सकें। और नेक्स्ट वीक फ्राइडे को अगर आपका नाम निकलता है तो ये इनाम जो है ये आपको मिल सकता है। तो अभी देखेंगे आप में से कितने लोग हैं जो अपने मैसेजेस हमारे पास भेजते हैं। फिलहाल आइए आज का हमारा अगला थ्रोबैक, ये एंजॉय करने का टाइम अब हो चुका है।

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: Almost 13 degrees temperature hone wala hai Auckland mein aaj ka high 17 hoga, overnight kam se kam 9 degrees hai. Kuch badal chhaye rahenge, kabhi kabhar halki barish ho sakte hai. Sunset aaj ka sham 6:12 par hoga.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
2: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living Monaco. Spring sale on now. Beautiful furniture with 60 months interest free. T's and C's apply. Only at Harrington Living Monaco.
0: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton. Trend Patrol.
1: 3 minutes away here, 8:00 on Hum playing Bollywood's biggest hits. The Breakfast Show with Vijay and Pooja aapke liye jari hai. Aur aaj Trend Patrol mein, aap chutti par kyun jaate hain? आप हॉलीडे पर क्यों जाते हैं? What is the reason that you go on a holiday? घूमने कहीं जाते हैं तो क्या कैसा रूटीन आपका होता है? हॉलीडे बेसिकली ट्रेडिशनली हॉलीडे का मतलब होता है कि यू नो यू मेक द मोस्ट ऑफ द टाइम यू गेट ड्यूरिंग योर ब्रेक. जल्दी से कई लोग तो तड़के सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर निकल जाते हैं साइट सीइंग के लिए, लंच, लेट डिनर और जितने हो सके एक्टिविटीज़ वगैरह करते हैं बिफोर चेकआउट या मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट डेस्टिनेशन, जो भी हो. लेकिन अभी एक नया चैलेंज जो है ये सामने आया है और ये ब्रेक जो है थोड़ा डिफरेंट होता है. दिस टाइप ऑफ टूरिज्म, मैंने आज से पहले इस तरह के टूरिज़म के बारे में नहीं सुना था. इसको कहते हैं स्लीप टूरिज़म. ये ट्रेवल इंडस्ट्री में अगर देखें एक नया चलन, एक नया ट्रेंड सामने आया है. इट्स बिल्ट अराउंड द आइडिया ऑफ ट्रेवलिंग समवेयर स्पेसिफिकली टू रेस्ट या फिर रीसेट या अपना जो स्लीप पैटर्न है उसे इम्प्रूव करने के लिए. विच मीन्स लोग चूज़ कर रहे हैं क्वाइटर प्रॉपर्टीज़ जहाँ पर उनको और ज़्यादा आराम करने का मौका मिले, या स्लीप फोकस्ड वेलनेस प्रोग्राम्स हो, या फिर सिंपली लिविंग इनफ स्पेस इन द डे टू स्लीप विदाउट एन अलार्म. ग्लोबल वेलनेस इंस्टीट्यूट ने आइडेंटिफाई किया है स्लीप टूरिज्म को एज अ मेजर वेलनेस ट्रेंड फॉर 2026 और ये दिखाया है कि इसमें लोगों की बहुत ज़्यादा दिलचस्पी जो है ये बढ़ रही है. जो वाइडर रिसर्च है इसमें ये पाया गया है कि द ग्लोबल स्लीप इकोनॉमी इज वैल्यूड एट मोर देन $585 billion. ये इंटरेस्ट एक ऐसे टाइम पर आ रहा है जब लोग स्ट्रगल कर रहे हैं टू गेट इनफ स्लीप. यूएस का जो सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन है उसके मुताबिक 30.5% ऑफ यूएस एडल्ट्स जो हैं ये इन्होंने रिपोर्ट किया है कि उन्हें 2024 में औसतम यानी एवरेज 7 घंटे से कम की नींद मिली है. दैट फिगर इज स्पेसिफिक टू द US और ट्रेवलर्स जो ग्लोबल हैं उन पर अप्लाई नहीं होता है. लेकिन इसके बाद चलकर स्लीप और रिकवरी पर काफ़ी चिंता जो है ये व्यक्त की गई थी. तो उसके बाद 2 साल लगे हैं या फिर पिछले 2 सालों में ये जोर पकड़ता गया और 2 सालों बाद आकर ये ट्रेंड दुनिया भर में पॉपुलर हो गया है जो लोग सिर्फ आराम करने के लिए ले रहे हैं स्लीप ट्रेवल. कुछ ट्रेवलर्स के लिए द आंसर इज टू मेक द हॉलीडे इटसेल्फ लेस डिमांडिंग और एक सर्वे में ये पाया गया है कि 1 in 5 ग्लोबल ट्रेवलर्स एन्जॉय स्पेंडिंग हॉलीडे बस ऐसे ही बेड में आप पड़े रहो. रिपोर्ट में ये भी पाया गया कि 63% सेड दे स्लीप बेटर व्हेन स्लीपिंग अलोन, 37 प्रेफर्ड अ सेपरेट बेड फ्रॉम देयर पार्टनर जब वो ट्रेवल करते हैं. इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं. तो आज ट्रेंड पेट्रोल में नया चलन जो है, नया ट्रेंड जो है स्लीप टूरिज्म. आप जब छुट्टी पर जाते हैं कितने घंटे तकरीबन सोने को आपको मिलता है, आराम करने को मिलता है? क्या आप भी इसी तरह से ज़्यादा रेस्ट करते हैं या फिर व्हेन यू गो आउट हॉलीडे पर जाते हैं, ब्रेक पर जाते हैं, यू वांट टू मेक द मोस्ट ऑफ इट. जितना टाइम हो सके घूमने फिरने में, फ्रेंड से मिलने में, अगर इफ़ यू आर गोइंग बैक टू योर होम कंट्री और समवेयर जहाँ पर आपके दोस्त आपके फैमिली मेम्बर्स हो उनके साथ जितना ज़्यादा हो सके टाइम स्पेंड करते हैं. आपका जो टूरिज्म है या आपका जो ब्रेक है इज़ इट फोकस्ड ऑन रेस्टिंग और डूइंग थिंग्स दैट यू एन्जॉय डूइंग? हाउ डू यू डिस्क्राइब अ हॉलीडे? 7 मिनट हो रहे हैं फिलहाल अब 8 बजकर।

0: 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुजबे, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स्ट ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम।
1: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए। वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद। ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस। बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है। तो इंतजार किस बात का? आज ही अपने नजदीकी सुपर मार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए। शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के।
6: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है। जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है। हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है। We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and on-site cremations. 11 Boulderwood Place, Beery. Call 24/7 on 0927-88-600.
7: बूढ़ा हो गया हूँ माते, घर ढूंढते ढूंढते।
1: इनको तो अब तक घर मिल गया होगा।
8: अब हमारा क्या होगा?
9: घर ढूंढना है तो लोन लेने की टेंशन से बचना, फालतू की बातों से बचना।
1: तो क्या करें?
10: लोग कहते हैं इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना। दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन।
11: The kids depend on us for everything. Meals, rides, band-aids, bedtime stories. But who do we depend on?
12: Hi, I'm Nitesh Hira from Assure One. School holidays remind us how much our families rely on us. My job is making sure reliance never becomes a risk. Helping you understand your options so your family is covered whatever happens. Call Assure One on 0800-77-HIRA or visit assureone.co.nz. North and Vale Advisory Limited. Trading as Assure One is a licensed financial advice provider.
13: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
14: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Monaco. Spring sale on now. Beautiful furniture with 60 months interest free. T's and C's apply. Only at Harrington Living Monaco.
15: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton.
16: What's your take?
17: What's your take? वक्त अब हो चुका है on the breakfast show with Vijay and Pooja. और आज कुछ खास बातें जो हैं ये हम इस प्रोग्राम में करने जा रहे हैं। अक्सर अनेक पहलुओं पर हम चर्चा करते हैं, बातें जो है ये करते हैं। और आज हमारे स्टूडियोज़ में एक ख़ास मेहमान जो है ये आए हुए हैं जिनसे हम बातें करेंगे। और इनकी आवाज़ आपने शायद पहले भी सुनी हो, और बहुत सारे लोग तो पर्सनली भी जानते हैं। और इनका नाम है राजेश कृष्णमूर्ति जी। राजेश भाई, बड़े सालों बाद इस तरह से आपसे मिल रहे हैं। सुबह सुबह आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग, नमस्ते
18: जी। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल विजय भाई
17: जी। वो आप एंड ये
18: विशिंग ऑल योर लिसनर्स हैप्पी गणेश चतुर्थी एज वेल। बड़े मुबारक मौके पे आपसे वापस रूबरू होने का मौका मिला है, तो मैं गणपति जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी उन्होंने हमें वापस मिलाने में कराई है।
17: राजेश भाई, दो तीन पहलू हैं जिन पर आज हम बातें जो है ये करना चाहेंगे. द फर्स्ट वन इज एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, यू नो, एक सेंस ऑफ प्राइड जो है ये फील होता है जब ऐसा कोई हमारी कम्युनिटी में करता है. और वो है आपने अपनी किताब जो है ये लॉन्च की है. तो सबसे पहले किताब के बारे में, आज नॉवल के बारे में कुछ बातें जो है ये हो जाएं.
18: श्योर. लिखता तो मैं बचपन से ही था
17: जी,
18: लेकिन ओवर द इयर्स फिर मैंने कहा चलो इसको अब एक मतलब ना एक किताब लिखी जाए
17: जी.
18: 8 साल पहले मैंने स्टार्ट किया था इस किताब को.
17: अच्छा.
18: हाँ. एंड फिर क्या होता है कि आई एम नॉट अ प्रोफेशनल राइटर फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, लाइक अ नॉवलिस्ट
17: जी.
18: तो लिखो फिर वो गैप आ जाए एंड देन यू गो बैक टू इट अगेन, तो आपको लगे कि नहीं जो पहले लिखा था वो सही नहीं है, राइट? देन यू री राइट द होल थिंग. तो ऐसे करते करते करते री राइटिंग करते करते इट टुक मी सो लॉन्ग दिस. देन एट वन पॉइंट इन टाइम लास्ट ईयर हम बोला यार 8 साल हो गया, दिस इज टू मच, सो आई हैव टू चेंज माई अप्रोच. Okay. Which is what I did. So it was a mindset change. Ki I said, whatever I've written, I'll just leave it as it is. And I will start from where I finished off last time. पिछली बार
17: जहाँ से आगे
18: हाँ वहाँ से आगे बढ़ेंगे ऐसा हमने सोचा. एंड दैट्स हाउ आई मैनेज टू फिनिश इट बाई अर्ली दिस ईयर जनवरी में हमने फिनिश किया. एंड ऑफिशियली आई लॉन्च द बुक ऑन 14th of February 2026.
17: वैलेंटाइंस डे
18: फॉर टू रीजन्स. वन इज इट इज हमारी श्रीमती जी का बर्थडे भी है.
17: अरे वाह.
18: तो उनको भी डेडिकेट किया वो बुक. एंड द बुक इज ऑल्सो एन इंडो कीवी लव स्टोरी.
17: Achha.
18: The title of my novel is called Between Curry Leaves and Kauri Trees. So okay. Curry leaves, of course, being a symbol of India, and kauri trees, which is native to New Zealand. So Jee. It's an Indo-Kiwi love story. In simple terms, it's about a young boy from UP, jahan se main hoon. जी. तो थोड़ा बहुत मेरा अपना बचपन का मैंने उसमें से इंस्पिरेशन ड्रॉ किया है, हालांकि द स्टोरी इज एंटायरली फिक्शनल. तो अ बॉय फ्रॉम स्मॉल टाउन यूपी, ही कम्स टू न्यूजीलैंड एज अ स्टूडेंट.
17: अच्छा.
18: एंड देन ही फॉल्स इन लव हियर विद अ कीवी गर्ल. एंड फिर आप जानते हो कैसा होता है, यू नो, जनरली सिचुएशंस ओवरटेक देम एंड देन दे गो देयर ओन वेज. एंड इयर्स लेटर आफ्टर दे हैव बोथ सक्सीडेड इन देयर ओन फील्ड्स, दे मीट बैक हियर. दोनों न्यूजीलैंड छोड़ चुके हैं.
17: अच्छा
18: जी. एंड वो मतलब किस्मत की बात देखिए, दे मीट अगेन ईच अदर हियर इन न्यूजीलैंड. And फिर they take whatever they had left off. And वो ताना बाना वापस से बुनते हैं. और वो that is the story essentially.
17: अच्छा. तो that spark remained after despite being apart from force.
18: Yeah. So then the separation or the distance actually gave them an idea of what they were missing. लेकिन फिर वो hesitation होता है ना कि कौन पहला स्टेप ले एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो सर्कमस्टांसेस ब्रॉट देम बैक टू न्यूजीलैंड, राइट? एंड देन दे बम्प इनटू ईच अदर. सो वो एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है वेयर दे एक्चुअली मीट ईच अदर. सो वो आपको शायद अगर आप पढ़ेंगे तो देयर इज अ लॉट ऑफ ऑकलैंड इन इट इन द बुक एज वेल. So, you know, Parnell or ye cafe, wo cafe, and all those things which a lot of Aucklanders will be able to relate to. And of course, people from India can relate to the small town, jaise main Kanpur se hoon, for example, right? So there are so many other small towns like that, which people can relate to. Ki haan bhai, humare yahan aise hi hota hai, ya waise hi hota tha, you know, and wahan se, each person, I think, each Indian especially, can relate to the main protagonist's story. कि वो गाँव से कैसे निकल के शहर में आया एंड देन वहाँ से फिर न्यूजीलैंड आया एंड देन his or her growth and all that. ये है नटशेल में स्टोरी. एंड इट्स गॉट अ गुड रिस्पॉन्स सो फार. इट्स अवेलेबल ऑन Amazon. एंड क्वाइट अ फ्यू पीपल हैव एक्चुअली रेड इट एंड दे हैव गिवन मी अ गुड फीडबैक. So I'm planning another book now, which has given me the strength and and the motivation to write my second book. It's not a continuation of the first one. Wo alag story hai. But my genre, as I can call it, is basically relationships and love and all that. So the second book is also, which I've already started working on. So that is also going to be something similar, but not may not be a transcontinental love story like this one.
17: That's quite interesting to see. And अब शायद मन में कहीं ना कहीं ये चाह जग रही है कि पता करें फिल्म की तरह एंड में क्या होता है, बट उसके लिए तो किताब जो है ये पढ़नी पड़ेगी, बिटवीन करी लीव्स एंड काउरी ट्रीज. तो कानपुर, लड़की न्यूजीलैंड में कहाँ की, यही ऑकलैंड की थी?
18: जी.
17: अच्छा, तो कानपुर और ऑकलैंड की ये प्रेम कहानी जो है ये आपको मिल जाएगी अमेजोन पर.
18: कानपुर से ऑकलैंड तक आप ये कह सकते हैं इन अ वे, ऑल्दो इट इज कम्प्लीटली फिक्शनल स्टोरी, इज कम्प्लीटली फिक्शनल, बट इट एवरीबडी हु हैज कम हियर एज अ स्टूडेंट एंड देन स्टेड बैक इन दिस लवली कंट्री कैन रिलेट टू इट.
17: या कमाल की कहानी, डेफिनेटली मैं तो पढ़ने वाला हूँ. जैसे किताब के बारे में पता चला तो अभी उतना टाइम नहीं मिला कि जाकर पढ़ूँ, बट आई एम डेफिनेटली गोइंग टू रीड दिस स्टोरी. नाउ जब आपने आप ये कहानी सुना रहे थे, यू नो आई कुड विजुअलाइज द सीन्स इन फ्रंट ऑफ माय आईज, एंड वो आ जाती है, ब्रिंग्स इन टू माइंड मूवीज, फिल्मों के बारे में भी जहन में आ जाता है. एंड इंटरेस्टिंगली हम लोगों की मुलाकात जो है फिल्म इंडस्ट्री या उससे जुड़ी चीज़ों को लेकर कई साल पहले जो है ये हुई थी, व्हेन यू वर बैक इन फिजी, एंड आपका जो एक्सपर्टीज़ है उस टाइम पर हम लोगों ने बहुत उसका फ़ायदा उठाया और लोगों तक आपने बहुत सारी चीज़ें जो है ये पहुँचाई. अगर लोगों को पता नहीं होगा कि बॉलीवुड से, अगर जो लोग शायद आपको पर्सनली नहीं जानते होंगे कि बॉलीवुड से कैसा रिश्ता है आपका, तो कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे?
18: बॉलीवुड से तो हमारा घर का नाता है
17: जी,
18: राइट, बिकॉज सम ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स आर इन्वॉल्व इन बॉलीवुड. हाँ, I'm not at liberty to mention names, and, but some of the big guns, big production houses, usme mere apne, immediate family members kaam karte hain. And then one part of my family is into the distribution business back home in India,
17: okay.
18: The film distribution and all that. So, kafi hamara raha hai. And we still continue that link with films in general and Bollywood as well. In particular,
17: and I think Oceania region mein, yeah, on this side of the world, I haven't met someone

0: आलमारा से वीरजारा तक
1: जी.
0: तभी वीरजारा रिलीज हुई थी तो इट वाज अ शो बिटवीन आलमारा विच वाज लाइक द फर्स्ट मूवी टू वीरजारा एट दैट पॉइंट इन टाइम.
1: जी तो अभी क्या आपने वो जारी रखा है या फिर?
0: फिल्म्स तो खैर मेरा पैशन है ही तो मैं फॉलो करता हूँ एंड आई क्रिटिक देम मायसेल्फ राइट सो बट आई डोंट राइट एज फ्रीक्वेंटली अबाउट इट as I used to, you know, of course, काफी चीजें और भी आ गई हैं, like book writing and so on and so forth. You know, so I don't write it, but of course, I understand and analyze and watch literally every film that gets released. अभी latest जो मैंने देखी थी, which is Haiwan.
1: अच्छा जो वीकेंड पर आई.
0: जी हाँ वो प्रियदर्शन की मूवी है. प्रियदर्शन as you might remember is a well-known South के director who has transitioned well into Bollywood, into Hindi films. 1993 में उनकी पहली हिंदी फिल्म आई थी गर्दिश जैकी श्रॉफ के साथ.
1: हाँ यस यस हाँ
0: दैट वाज अ ह्यूज हिट एंड दैट वाज अ रीमेक ऑफ अ मलयालम मूवी इन विच मोहनलाल वाज द मेन कैरेक्टर. So Jackie Shroff played Mohanlal's character and that became a hit. And then for Priyadarshan has given you Halchal, Hangama, ye type ke jo hai na comedy movies kafi sari unhone di hain.
1: Ji.
0: Now this one, Haiwan, is actually a remake of his own movie called Oppam.
1: Achha.
0: In Malayalam. And that was a super duper hit. And usme bhi Mohanlal hi the. तो सैफ अली खान का जो रोल है इसमें दैट वाज ओरिजिनली प्लेड बाय मोहनलाल या द वन एंड ओनली मोहनलाल बट एंड देन आई हैव सीन द ओरिजिनल एज वेल ये भी देखी है मैंने तो आई मीन माय टेक इज दैट द ओरिजिनल इज ऑलवेज द ओरिजिनल एंड वे बेटर राइट. अगर मैं कंपैरिजन करूं जैसे ना रीमेक्स में राइट सो इट इज इन्होंने इसको थोड़ा महाराष्ट्राइज किया है या बॉलीवुडाइज किया है.
1: ऑब्वियसली वो तो करना ही
0: पड़ेगा. वो जब उन्होंने वो किया है ना इट लॉस्ट इट्स सोल.
1: ओके
0: राइट सो वो जो केरला बेस्ड स्टोरी उन्होंने बनाई थी दैट हैड अ रॉनेस अबाउट इट विच यू कुड यू नो रिलेट टू बट इसमें उसको थोड़ा वो जैज दे दिया उन्होंने तो इसकी वजह से यू कांट रिलेट टू इट.
1: अच्छा
0: ऐसा ऐसा हो गया तो द स्टोरी टेलिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ फिल्म मेकिंग.
1: जी
0: तो वो स्टोरी टेलिंग में दे हैव गॉन मोर फॉर फॉर्म रादर देन कंटेंट. ये मेरा टेक है इसमें.
1: ओके दैट्स इंटरेस्टिंग. एक और शायद क्योंकि अभी तो टाइम इतना कम आपको मिला है एंड आई थिंक जो वन ऑफ द रिसेंट रिलीज्ड आई थिंक
0: हनुमान मंच
1: नहीं ये अरशद वारसी ने अभी किरदार प्ले किया है महाराज का घमासान में.
0: ओ घमासान नहीं वो मैंने अभी देखी नहीं.
1: हाँ यू नो आप यूपी को बिलोंग करते हैं तो यू माइट रिलेट टू क्योंकि आई डोंट नो द हिस्ट्री बिहाइंड इट लेकिन उसमें लिखा था ना कि इट्स इंस्पायर्ड फ्रॉम सम ट्रू इवेंट्स बट अरशद वारसी आई कांट रिकॉल लास्ट मैंने उनको उस जैसा कैरेक्टर प्ले करते हुए कब देखा होगा. दैट वाज अमेजिंग. सो हाउ डू यू थिंक बॉलीवुड आगे बढ़ रहा है विद टाइम यू नो
0: इंटरेस्टिंग टाइम्स अभी चल रहे हैं बॉलीवुड में बिकॉज द ट्रेंड इज चेंजिंग. इफ आई टेक यू बैक इन टाइम 1947 इंडिपेंडेंस के टाइम लाहौर वॉज द फिल्म कैपिटल.
1: अच्छा
0: ऑफ इंडिया अनडिवाइडेड इंडिया का लाहौर वॉज द कैपिटल एंड देन बॉम्बे धीरे धीरे से डेवलप हो रहा था बट वंस पार्टीशन हैपन एंड इंडिपेंडेंस हैपन्ड देन अ लॉट ऑफ अब जैसे कपूर खानदान दे आर ऑल फ्रॉम लाहौर राइट दे मूव टू मुंबई.
1: Okay.
0: And then early days, of course, the Kapoors and many others who came from, Lahore and Pakistan, what today is Pakistan, they settled down in Mumbai. So they were mostly Punjabis. So there was a Punjabi domination for a while in the filmmaking, production वगैरह में. And then उनके जो second generation बच्चे बच्चे वो सब आने लगे. But heroines में they would always go for southern heroines.
1: Yeah.
0: Vijayanti Mala, Hema Malini, Shri Devi, you name it. There was a time when it was the south heroines. And Punjabi production houses.
1: Okay.
0: That was the combination. And then,

0: DJ and Pooja.
1: Chup ho ja, papi ho. Chup ho ja.
2: Accurate traffic.
3: Kitchen Mania free installation.
4: A lot of cloud, mainly fine though today, 17 hour high. Into the city, Southern Motorway easing a bit, 45 minutes Manukau to town. Slow from Manurewa, heavy patches Papatoetoe to Ellerslie. Southwestern, heavy northbound at Whitty. Northern, 28 in from Constellation, easing at Silverdale, crawling Greenwater Constellation, then slow to the bridge. Northwestern, 38 in from Massey, heavy on and off from Upper Harbour.
3: Order your new Kitchen Mania kitchen and receive free installation. Kitchenmania.co.nz. T's and C's apply.
5: Professional Financials has saath aapke. Loan aur insurance ek chhat ke niche. No broker charge, bas trusted advice. Har deal banaye perfect right.
6: Refinance ke liye compare kare different banks. Loan process was simple and frank.
5: Business finance ya income protection ho. Har step पर गाइडेंस परफेक्ट हो, सब कुछ मिलेगा यही, अपना फ्यूचर सिक्योर बनाएं।
6: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी। कॉल 09846-9934 और सर्च PFSL, T's and C's, लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई।
7: हर हैवान इंसान नहीं होता, पर हर इंसान हैवान बन सकता है।
8: अंधा होने से बुरा पता है क्या होता है? बेवकूफ होना।
7: हैवान स्टारिंग अक्षय कुमार, सैफ अली खान एंड बोमन ईरानी।
9: अपने बदले की आग में और कितने मासूमों की जान लोगे तुम?
8: ये आग ही है।
7: हैवान नाउ शोइंग इन सिनेमास। डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फोरम फिल्म्स। रेटिंग TBC।
10: 1% finance and $2,000 off exclusive to West City Auto Group. That's right, get behind the wheel of JQ J7 SHS for just $47,990 plus on-road costs. With 1% finance and $2,000 off, experience premium style, advanced technology and super hybrid efficiency all in one impressive SUV. Hurry, limited stock available at 1% finance. Speak with Jimmy Taylor and team at West City Omura JQ. For T's and C's, head to westcityautogroup.nz.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
11: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living Manukau. Spring sale on now. Beautiful furniture with 60 months interest free. T's and C's apply. Only at Harrington Living Manukau.
0: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoetoe and Hamilton.
12: Let's go.
0: Straight from the heart.
13: Unlock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800-4-NZPMI.
14: 12 मिनट रह गए हैं फिलहाल, अब 9 बजे में 9 पर न्यूज एंड स्पोर्ट्स अपडेट भी हम आपके लिए लेकर आएंगे।

0: Accurate traffic.
1: Wardrobes Direct spring sale.
2: Fine today, but a lot of cloud, a high of 17. Coming in on the Northern Motorway, 28 minutes, Constellation Drive to town, easing at Silverdale, heavy gravel to Sunnynook and slow to the bridge. Northwestern, 33 in from Massey, heavy patches, Upper Harbour to St Luke's, then easing. Southern, 38, Manukau to the city, slow from Papatoetoe, heavy from Penrose. Southwestern, still a bit slow northbound through Whitty.
1: Upgrade your wardrobes and sliding doors. New spring sale. Visit Wardrobes Direct's two Auckland showrooms.
3: When India comes to town, Aotearoa feels different. Tickets are on sale now at nzc.nz. Be there, because this isn't cricket. This is Black Caps versus India.
4: Farmers Manchester Mania sale is now on with an amazing 50% off duvet covers, sheets, duvet inners, pillows and more. 50% off towels by top brands like Sheridan, plus 50% off sleepyhead beds. Shop Farmers Manchester Mania. Conditions and exclusions apply.
5: Hey Neha, congratulations on your first home. Tune to kaha tha ki do banks ne loan dene se aur ek famous broker ne to case lene se hi mana kar diya tha. ये घर कैसे?
6: अरे ये तो लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला का कमाल है।
5: एक रियल एस्टेट वाले ने उन्हें सजेस्ट किया, मैंने उन्हें फेसबुक पर ढूंढा और डायरेक्टली कांटेक्ट किया।
6: नेहा, अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ।
7: फर्स्ट होम बाया बनना है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है तो आज ही कॉल करें लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला को ऑन 0800 लॉजिक गुरु।
8: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ? बोली, बस मेरा फोकस है।
9: हाँ। अच्छा
8: बताओ, तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं।
9: मिसेस सिंह,
10: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
11: मॉडर्न क्लासिक शेकर स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू। कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
12: In business, relationships matter, respect matters, and so does keeping your word. As a business owner, what do you do when customers won't pay your invoices? At Kedar Limited, they understand that the Indian community values trust, relationships, respect, and keeping their word. With 20 years of debt recovery experience, they use respectful follow-up and mediation to recover your B2B debts. Want your invoices paid? Call Kedar Limited on 022-090-9845. Pehle baat, phir solution aur payment bhi.
13: Check.
14: Brought to you by Maan Tires. For all kinds of tires and mechanical services, open 7 days. Call Maan Tires on 0800 00 00 10.
15: Good morning, isme theek 9 baj rahe hain.
13: Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
16: Good morning, I'm Gary Denver with the latest at 9. A new poll makes grim reading for the country's two main parties. Both are under 30%, with Labour on 28 and National on 27 in the Post's Freshwater Strategy poll. The Greens lead the rest on 14, while New Zealand First is at 13, ACT 9, Opportunity 6 and Te Pāti Māori 2%. New figures show fewer property sales and longer times to sell in August amid a wait-and-see approach to factors like the election. REINZ has the national median house sale price falling 1.3% year-on-year to $750,000. Sales fell 13% nationally to the sixth lowest August number in 35 years of its records. Concerns being aired that it's taking up to 10 years for some people to get a multiple sclerosis diagnosis. This week is MS Awareness Week. MS New Zealand's Amanda Rose says they'll ask Pharmac to update diagnostic criteria in line with updated international guidelines.
17: The delayed access to those treatments often, unfortunately, means that their disease has progressed and they might have worse outcomes, and often there's preventable and irreversible disability.
16: And a pack of wild African dogs has travelled 4,000 kilometres in search for a mate. Their movements tracked across Zambia with GPS collars. Scientists say it bodes well for wildlife trying to survive amid growing pressure from humans. In sport, two of the best Black Caps captains will begin plotting the course for the England cricket team this week. White ball coach Brendan McCullum's excited to link up with incoming test coach Stephen Fleming.
18: So there's a bit of time pick, but we'll get there and look forward to doing it with Flem. He's always good conversationalist and it'll be good fun being able to work through things together.
16: And in rugby league, with Machinery House in a league of their own, Warriors wing Dylan Watene Zalesniak is set to return from a broken collarbone when they name their team at 6 tonight for Sunday's NRL finals game against the Knights at Eden Park.
3: Sports News.
13: Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
19: World's best. Hamari good brands bhi hai.
13: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. कॉल 0800 462626।
15: ऑलमोस्ट 14 डिग्रीज टेम्परेचर हो चुका है ऑकलैंड में, आज का है 17, ओवरनाइट कम से कम 9 डिग्रीज आज रहेगा, बादल छाए रहेंगे, रह रहकर कुछ हल्की बारिश आज हो सकती है, सनसेट शाम 6:12 पर आज होगा।
13: The Breakfast Show with Vijay and Pooja,
11: brought to you by Fortune, with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Monaco, spring sale on now. Beautiful furniture with 60 months interest free. T's and C's apply. Only at Harrington Living Monaco.
3: What's going on? Kya bakte ho?
0: Arey kehna kya chahte ho?
15: हर दिन आपके लिए कुछ ऐसी स्टोरीज हम लेकर आते रहते हैं ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा, जिसे सुनने के बाद हम खुद भी सोचते हैं कि भाई क्या बकते हो, ऐसा कौन करता है, ऐसे तो नहीं होता है, हमने ऐसा नहीं सुना और समथिंग लाइक दैट। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, एक नया ट्रेंड और सामने आया है और इस ट्रेंड के तहत एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था ओडीसीटी की, इसमें कहा गया है कि बहुत सारे यंग मेन दुनिया भर में अपेरेंटली अब एक नया ब्यूटी ट्रेंड जो है ये फॉलो कर रहे हैं, और इसमें दे आर शेविंग देयर आईलैशेस फॉर ए मोर मैस्कुलिन लुक। लॉन्ग आईलैशेस जो है, इसके बारे में शायद आई रियली डोंट नो, लेकिन कहते हैं कि फीमेल्स पर ये ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। हाउएवर लॉन्ग लैशेस आर नॉट एज पॉपुलर अमंग मैन। कुछ अल्फा टाइप्स अपेरेंटली कंसीडर देमसेल्व्स टू फेमिनिन और उसे ट्रिम करा देते हैं ताकि वो और मैनली लगे देखने में, डिस्पाइट द सीरियस हेल्थ रिस्क ऑफ सच अ प्रोसीजर। वीडियोज जो हैं कई सामने आए हैं ऑफ मैन हैविंग देयर आईलैशेस कट और ट्रिम्ड एट बार्बर शॉप्स और ब्यूटी सलून, ताकि वो दिखने में और ज़्यादा मैस्कुलिन लग सके। भाई आईलैशेस कैसे कोई ट्रिम करा सकता है, दैट्स सो डेंजरस, आई रियली डोंट नो, बट है ये अजीब दुनिया। ऐसे और भी अजीब दुनिया की खबरें जो है ये हम आपके लिए इस प्रोग्राम में लेकर आते रहते हैं। थोड़ी देर बाद एक और मुलाकात जो है आज हम करने वाले हैं ऑन द ब्रेकफास्ट शो, और इसके बारे में भी डिटेल्स हम आपको थोड़ी ही देर में देंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल है, इसका जवाब अगर आज आप देते हैं तो मैं मानूँ आपकी, क्योंकि देखना है कि कितने लोग सही सही जवाब दे पाते हैं। ये एक पहेली है, देखे आप बूझ सकते हैं इसे या नहीं। मैं एक सवारी हूं पर मैं चलती नहीं, लोग मुझे धक्का देकर चलाते हैं, मैं कौन हूं? मैं एक सवारी हूं पर मैं चलती नहीं, लोग मुझे धक्का देकर चलाते हैं, मैं कौन हूं? BF अपना आंसर और अपना नाम ये 5599 पर भेजे। देखे आज सुबह आप में से कितने लोग एक्टिवली सोचकर सही जवाब दे सकते हैं।

0: What's going on?
1: What's up?
2: What's up, Auckland?
3: आपको हम बताते रहते हैं कि क्या कुछ हो रहा है हमारे आसपास या आने वाले दिनों में क्या कुछ होने को है, तो इसकी जानकारियां हर दिन हम पर आपके लिए होती हैं। और अभी तो श्री गणेश उत्सव ये कई जगहों पर मनाया जा रहा है और इसके बारे में जानकारियां जो है हर दिन हम पर आपको हम देते रहते हैं। सबसे पहले अगर देखें तो श्री राम मंदिर पर 11 ब्रिक स्ट्रीट हेंडरसन में श्री गणेश उत्सव मनाया जा रहा है और रविवार तक रहेगा। हर रात तकरीबन 7:30 बजे से कथा आरंभ होती है और अंतिम दिन जो पूजा है सुबह 9 बजे शुरू होगी और गणेश विसर्जन जो है दिन में 12 बजे होगा। उधर भारतीय मंदिर पर 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत की कथा जो है ये ब्रजराज रसिक डॉक्टर कृष्णा किनकर जी के साथ हो रही है, जो श्रीधाम वृंदावन से आए हैं और नाम संकीर्तन रिकॉर्ड होल्डर भी हैं। आप जाकर इसमें ज़रूर हिस्सा ले सकते हैं। और साथ ही में नोचो भारतीय संगम का गणेश चतुर्थी सेलिब्रेशन जो है ये 19th of September को रहेगा दिन में 11 बजे से, तो आप जाकर इसमें हिस्सा ले सकते हैं। गणेश पूजा होगी 1 बजे, महाप्रसाद 2 बजे, कल्चरल इवेंट्स जो है ये होगा और 4 बजे से ढोल ताशा और क्लोजिंग सेरेमनी आपके लिए होगा। वेद प्रचार सप्ताह जो है सालाना वेद प्रचार सप्ताह ये 28th of September से 4th October तक रहेगा। वैदिक सेंटर 32 Glasgow F Papatoetoe में और ये 30th anniversary सेलिब्रेशन है आर्य समाज न्यूजीलैंड में उसकी स्थापना को, तो आप जाकर इसमें ज़रूर हिस्सा ले सकते हैं। और कहाँ कहाँ पर क्या कुछ हो रहा है इसकी भी जानकारियाँ हम आपको बारी बारी से ज़रूर देते रहेंगे। सवाल भी हमने आपसे पूछा है, अभी तक अगर देखें एक ही सही जवाब आया है, मैं एक सवारी हूँ पर मैं चलती नहीं, लोग मुझे धक्का देकर चलाते हैं। आपको बताना है कि ये क्या है। BF अपना आंसर और अपना नाम ये 5599 पर आप हमें भेज सकते हैं।
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
4: Ladies and gentlemen,
2: unfiltered with Sandy and Rusby. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished, Instagram friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं।

0: Sandy and Rizvi on Rova, Spotify, or anywhere you get your podcast.
1: Coffee? The usual?
2: How about the unusual?
3: Can't wait for coffee? Then don't. Turn into Wild Bean Cafe at BP and try our new barista-made hojicha latte. Something a bit different at BP.
4: Spring savings are on now at Beds R Us. Save on selected sleepyhead beds like the Chiropractic Perform, half price, queen size, now from 2299. Step up your sleep with spring savings at Beds R Us Manukau and Pokekohe, where dreams begin.
5: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है। जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है। हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है। We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and on-site cremations. 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927-88-600.
6: Oh, I was just overtaking someone, officer. Could have only been a couple of k's over. But just for a second to get round them, you know? You're not going to ping me for that, are you? Surely just a warning. I've never even had a
7: crash involving three injured parties. Reported speeding vehicle collided with an SUV at an intersection. Two victims, stat one. We've lost the driver. We've heard it all. We've seen it all. Slow down.
4: The kids depend on us for everything. Meals, rides, band-aids, bedtime stories. But who do we depend on?
8: Hi, I'm Nitesh Hira from Assure One. School holidays remind us how much our families rely on us. My job is making sure reliance never becomes a risk. Helping you understand your options so your family is covered whatever happens. Call Assure One on 0800-77-HIRA or visit assureone.co.nz. North and Vale Advisory Limited. Trading as Assure One is a licensed financial advice provider.
9: नया हाइब्रिड ढूंढ रहे हो तो हैवेल ही लो राइट नाउ एंड्रू सिम्स मेलुकाउ में ब्रांड न्यू हैवेल H6 हाइब्रिड ड्राइव हुए सिर्फ 40,990 से प्लस ऑन रोड कॉस्ट नो डिपॉजिट फाइनेंस लो अपनी ट्रेड इन के लिए जबरदस्त प्राइस पाओ और डिस्कवर करो कि क्यों ज्यादा किविज हैवेल चूज कर रहे हैं स्टाइलिश स्पेशियस और टेक्नोलॉजी से भरा हुआ वो भी हाइब्रिड एफिशिएंसी के साथ आज ही विजिट करो एंड्रू सिम्स JWM मेलुकाउ हैवेल हाइब्रिड मोर फॉर योर मनी टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई

0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living Monaco. Spring sale on now. Beautiful furniture with 60 months interest free. T's and C's apply. Only at Harrington Living Monaco.
2: 18 minute we here abhi 9 bajkar on the breakfast show with Vijay and Pooja. Hum playing Bollywood's biggest hits 104.2 FM aur Rover par aap hamara saath de rahe hain. Thank you so much. Humne kaha tha ki aur bhi baatein aaj hongi, mulaqatein hongi aur aapko hum batate aaye hain Sanatan World Cup ke bare mein. Aur ye 11th Sanatan World Cup jo hai New Zealand mein host kiya ja raha hai aur hamare saath lines par jo Board of Governor aur General Secretary hai Sanatan World Cup Sports and Cultural Incorporated ke aur New Zealand Sanatan Sports and Cultural Incorporated ke Board of Governor aur Vice President Jiten Lal ji hai. Jiten bhai, aapka swagat hai program mein. Subah subah Jai Siya Ram.
3: Jai Siya Ram. Good morning bhai Vijay, kaise aap?
2: मैं एकदम बढ़िया, एक्साइटेडली लुकिंग फॉरवर्ड टू जो सनातन वर्ल्ड कप होने को है. अब देखिए, तकरीबन दो ही हफ्ते बाकी रह गए हैं जब ये वर्ल्ड कप जो है ये न्यूजीलैंड में शुरू होगा. तो अभी तक किस तरह से तैयारियां जो है ये चल रही हैं?
3: वेल, तैयारियां आई वुड से कि द स्टेज इज सेट विजय भाई, कि वी आर रेडी. एग्जैक्टली देयर इज 15 डेज फ्रॉम टुडे, और 15 डेज में ये जो हमारा इवेंट है ये विल टेक प्लेस एट बिल मैकिनली पार्क, और साथ साथ में सोका के लिए तो बिल मैकिनली पार्क, उधर विलियम ग्रीन पेकुरांगा में, और इधर फ्लैट बुश में बैरिकेटर्स फील्ड पर रहेगा, और ओमस्टन प्राइमरी पर. और याद रहे कि ये 30th ऑफ सितंबर को किक ऑफ होगा सुबह 10 AM पर, और ये चलता रहेगा संडे 4th अक्टूबर तक यहाँ पर.
2: और अभी अगर देखें तो सबसे पहले बातें करते हैं फुटबॉल सोका जो है, इसमें तो टीमें हिस्सा ले रही हैं. इसके अलावा और भी ये जो वर्ल्ड कप है इज जस्ट नॉट लिमिटेड टू सोका?
3: नो, डेफिनेटली नॉट विजय भाई. ये सोका एक जैसे मेन इवेंट रहता है, लेकिन इसके साथ साथ में और भी बाकी इवेंट हमारे साथ में है. वो अब ओपन जो लेडीज का नेटबॉल यहाँ पर होने वाला है सैटरडे को, 3rd अक्टूबर को, और साथ में हम वॉलीबॉल भी कर रहे हैं 4th अक्टूबर को यहाँ पर ओकलैंड में. वॉलीबॉल में भी करीबन 15 टीम्स हमारे साथ में, नेटबॉल में 17 टीम्स हमारे साथ में, और ये सब ओवरसीज से आ रहे हैं. काफी टीम्स यहाँ अमेरिका से, यू नो, ब्रिंगिंग अ वॉलीबॉल टीम फ्रॉम अमेरिका, इट्स क्वाइट अ बिग माइलस्टोन. और याद रहे कि हमारा गोल्फ भी जो यहाँ पर होने वाला है फ्राइडे जो 2nd अक्टूबर को हुआ पाई गोल्फ कोर्स पर ये होगा रिवरहेड में. तो यू नो, इट्स अ फुल ऑन वीकेंड, फुल ऑन 5 days रहेगा विजय भाई, विद हैविंग 75 टीम्स इन फुटबॉल. इट्स अ माइलस्टोन फॉर न्यूजीलैंड सनातन, की ये पहली बार कोई भी एथनिक टूर्नामेंट में कि हमारे पास इतना ज्यादा टीम हो चुके हैं.
2: तो फुटबॉल को अगर देखते हैं, आपने कहा कि 75 टीम्स हैं, किस किस कैटेगरी में या डिविजन्स में जो कॉम्पिटिशन्स हैं ये होंगे?
3: वेल, पहला तो जो प्रीमियर डिवीजन का रहेगा भाई, इसमें तो हमारे पास 29 टीम्स सिर्फ प्रीमियर यानी कि ओपन ग्रेड में है, और उधर देखते हैं तो 40 भी हमारे पास में 18 टीम्स हो चुका है, और 45 में हमारे पास 13 टीम्स है, 50s में हमारे पास 10 टीम है, और 55 में 5 टीम है. तो ये कैटेगरी हम जब बोलते हैं तो हमारे पास में टोटल मिलाकर प्रीमियर और जो वेटरन्स कैटेगरी, ये 5 कैटेगरी यहाँ पर टूर्नामेंट होगा.
2: और अलग अलग जो टीमें हैं अलग अलग पूल्स में हैं. अभी जैसे कि जो प्रीमियर टीमें हैं उसकी ओर अगर देखें तो ग्रुप ए में होक्स पे न्यूजीलैंड सनातन हैमिल्टन मेलबर्न और फिजी बरारा सांबे, तो ग्रुप बी में न्यूजीलैंड लोटोका न्यूजीलैंड ननरोंगा न्यूजीलैंड बा और फिजी वारिमबतिया, ग्रुप सी में मोनरेवा एनजेड मैनुकाओ और ऑकलैंड सनातन, साथ में फिजी नैंडी, ग्रुप डी में एनजेड रेकिरेकी एनजेड लंबासा वही टाकरे, ऐसी बहुत सारी टीमें जो हैं अलग अलग ग्रुप्स में हैं. और कितने लोग आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं विल बी ट्रैवलिंग फ्रॉम अब्रॉड जो यहाँ न्यूजीलैंड आने वाले हैं?
3: वेल, करीबन मिलाकर अगर जो आप फिजी ऑस्ट्रेलिया कनाडा अमेरिका, वी लुकिंग एट क्लोज टू 1500 प्लस पीपल यू नो कमिंग टू न्यूजीलैंड. And, you know, this is a good economy for New Zealand for this ethnic tournament. Saath-saath mein inka accommodation or jo transport yahan pe rahega. So it brings back a lot of money into the country. Na? So, I mean, it's one of the challenges ki, you know, itna sare team aa rahe hain and, you know, it's going to be a good tournament or saath-saath mein economy built hoga yahan par.
2: अभी लोग शायद सोच रहेंगे कि टूर्नामेंट जो है जब 30th सितंबर को शुरू होगा तो फुटबॉल जो है प्रीमियर ग्रेड और साथ में अलग अलग 40s, 45s, 50s, 55 ग्रेड के जो है ये अलग अलग वेन्यूज पर होंगे, नेटबॉल अलग अलग वेन्यूज पर होंगे, तो लोग किस तरह से जाकर जो टूर्नामेंट्स है या जो कॉम्पिटिशन है उनका मजा ले सकेंगे?
3: Well, I mean, football, अगर जो हम फुटबॉल की ओर देखते हैं विजय भाई, तो फुटबॉल में हमारे पास 5 फील्ड्स हैविंग 75 टीम्स, वी हम एक एक फील्ड में कर नहीं सकते, तो हमने बुक किया था विलियम ग्रीन जो पेकोरांगा में है, फेंसिबल यूनाइटेड का जो फील्ड है, इट्स ऑल टेफ, बिल मैकेनली आप जानते हैं टेफ है स्टेडियम है, और वहाँ पर बिल विलियम ग्रीन पर टेफ फील्ड है, ओमेस्टन प्राइमरी स्कूल पर आप देखते हैं तो वहां पर भी टेफ फील्ड है, और 2 ग्राउंड जो ग्रास फील्ड है ये बैरिकेड्स पर हमने इसको यूज किया है काउंसिल थ्रू, तो इनका भी हम यूटिलाइज करेंगे, तो अगर जो देखते मिलाकर 5 फील्ड्स वी गोट क्लोज टू 130 पूल मैचेस, यू नो 130 पूल मैचेस हमको फिनिश करना 5 डेज में, इट वॉज एन ईजी टास्क डूइंग दिस फिक्चर्स, तो क्या है कि हमको 5 डेज सिर्फ मिलता है, उसमें लॉन्ग वीकेंड भी नहीं है, इसीलिए हमारा जो टूर्नामेंट है ये किक ऑफ होगा 10 AM ऑन वेंसडे को, तो बहुत पहले से सभी टीमों को हमने बता दिए थे कि टूर्नामेंट किक ऑफ होगा, अभी कोई ओवरसीज में जाकर खेल रहे हैं तो इसी तरह टूर्नामेंट वहां पे भी होता है, दिन में होगा रात को भी होगा, तो लोग को टीमों को यहां पर रेडी रहना पड़ेगा।
2: और जो जो टूर्नामेंट इटसेल्फ होने जा रहा है या सनातन वर्ल्ड कप जो है ये यहाँ पर जबकि होने जा रहा है, एंड इन टीमों को 1500 लोग जबकि आ रहे हैं यहाँ पर होस्ट करना इटसेल्फ इज अ कॉस्ट, और उसके अलावा वहाँ यहाँ पर उनकी देख रेख और वो सारी चीज़ों का कैसे अभी तक ये मैनेज कर रहे हैं आप लोग?
3: Well, it's a very big budget, over $250,000 worth of budget hai inka bhai. Aur, you know, to be very honest, we are working towards the budget as well. It's not easy to gain $250,000 for this type of event. You know, times are tough for businesses out there, but, you know, we got sponsors who has made this thing successful for us. So, I mean, unko bhi hum thanks karna chahte hain, khas taur par, वेलेंटाइंस बफे रेस्टोरेंट्स और लाल्स ट्रांसपोर्ट लिमिटेड और साथ में राम्स क्लीनिंग सर्विसेज के ओर से ये टूर्नामेंट हम ला रहे हैं, साथ में और भी अन्य स्पॉन्सर्स हमारे पास में हैं, तो यू नो जस्ट लाइक टू थैंक दिस पीपल कि दे हैव जस्ट गॉट बिहाइंड अस कि मेक दिस इवेंट वेरी सक्सेसफुल। ना
2: और जो लोग टूर्नामेंट्स को देखने के लिए अलग अलग दिनों पर शायद आए, उनकी एंट्री फीस का के लिए उनको क्या करना होगा?
3: उनका जो पीपल का एंट्री फीस यहाँ पर फ्री है, सभी वेन्यू पर आप जाकर देख सकते हैं, अपने टीमों को सपोर्ट कर सकते हैं, और कभी भी सनातन इधर भी या लोकल टूर्नामेंट और इंटरनेशनल हमने किया है तो यहाँ पर हम कभी एंट्री फीस नहीं चार्ज किए हैं और ना करेंगे, सिर्फ आपको कार पार्किंग अपना बंदोबस्त करना पड़ेगा, बिल मैकेली के बाहर में अंदर आना है तो वहाँ पर पेइंग रहेगा, अदरवाइज और वेन्यू पर कार पार्किंग फ्री है।
2: और साथ ही में कोई फुटबॉल को अगर देख ले, कोई ऐसा प्लेयर दैट यू थिंक पीपल वुड डेफिनेटली लुक फॉर टू सीइंग एट द टूर्नामेंट?
3: वेल देयर इज लॉट ऑफ इंटरनेशनल बेस्ड प्लेयर्स कमिंग फ्रॉम फिजी आई मस्ट से, अभी उनका नाम आई मीन रजिस्ट्रेशन इज स्टिल हैपनिंग, सो अभी क्या है कि यू नो आवर एडमिन टीम इज वर्किंग टूवर्ड्स द डाटाबेस, उनका लिस्ट हम बाद में रिलीज करेंगे, आपको भी मिलेगा कॉपी, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत सारे इंटरनेशनल जो वेटरन्स में भी आप अगर जो देखते हैं तो वेटरन्स में भी जो फिजी इंटरनेशनल खेल चुके हैं और साथ साथ में ओवरसीज में बहुत सारे सोका खेल चुके हैं, उनका भी यहाँ पर पदार्पण होगा, और साथ साथ में जो हमारे 55 कैटेगरी में, ये भी बता दे विजय भाई वाल विद्या की 55 कैटेगरी it's a very you know it's a quite old age 55 but kuch teamon mein yahan par 55 category mein over 70 players khel rahe hain, So what we have decided ki we gonna award them as Sanatan legends. Humko award karenge. Aur, you know, we thank karenge ki, you know, at that age you are still playing. So, I mean, lot, you know, end of the day, there's lots of players coming from all over the country. Aur saath mein kaafi international level players khel chuke hain.
2: कुछ और जरूरी जानकारी है जो आप सोचते हैं कि टूर्नामेंट से दो हफ्ते पहले लोगों के पास होना बहुत ही जरूरी है
3: भाई ऑल आई कैन से बी प्रिपेयर्ड हम लोग ने बहुत काम किया है इस पर करीबन 6 मंथ से इसका जो प्रिपरेशन चल रहा है और ये मैं आज इतला कर देना चाहता हूँ कि वी आर रेडी एज अ ऑर्गेनाइज

0: driving you home? The Drive Show with Sandy and Rusby.
1: ये वही इंसान है जो 600 का हेडफोन खरीद के बैठा हुआ.
2: ये गलत बोल दिया यार.
1: और पहनता भी नहीं है उसको.
2: बाल जा रहे हैं ना मेरे यार, वो पहन के यार क्या करूँ मैं अभी बेचने के लिए. कोई लेगा क्या? रुजबे प्री ओन्ड हेडफोन्स 750 में सिर्फ.
1: इंटरेस्ट
3: ब्रांड हो गया अभी वो.
2: अभी ब्रांड हो गया ना.
1: रुजबे के बाल लगे उस.
0: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us, Manukau and Pukekohe. Massive home show deals available in store now. Only at Beds R Us, Manukau and Pukekohe. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
4: Shine Dental has a fresh new look with more space and the same caring team. New patients ke liye ultrasonic scale and polish from $99 or one tooth acrylic denture sirf $599 mein. Plus free dental examinations for new and existing patients. Free wins and ACC codes or under 18s ke liye free treatment. Visit Shine Dental at 574 Great South Road, Manukau. Book today on 09-277-6644. T's and C's apply.
5: White separated, pockets checked, cold wash, gentle cycle, powder measured just right. You close the door and push start. Then you see it. One red sock. One sock can ruin the whole wash. It's the same when you put soft plastics in your recycling bin. Let's sort it out. Search Auckland Council recyclable items. Tāmaki Tūtaki, All Together Auckland.
6: Thinking of an EV? Think MG. Thinking of fast charging, clever tech, impressive range, and electrifying performance? Think MG. Thinking of safety features like a 360-degree camera or a 10-year warranty? Think MG. If you're thinking of an EV, you know who to think. See your nearest MG dealer today. Terms and conditions apply.
7: The Breakfast Show with Weejay and Pooja.
8: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living Manukau. Spring sale on now. Beautiful furniture with 60 months interest free. T's and C's apply. Only at Harrington Living Manukau.
0: What's going on?
9: Daily Roundup ka waqt ho chuka hai. Aur aaj sabse pehle agar dekhe to... एक और पॉलिटिकल पोल जो है ये किया गया है, लेटेस्ट अब द पोस्ट फ्रेश वाटर स्ट्रेटजी पोल. और इसमें अब इस पॉलिटिकल पोल में दोनों जो मेजर पार्टीज हैं उन्होंने सपोर्ट खोया है, बट लेबर हैज कम आउट ऑन टॉप. जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसके मुताबिक जो पोल है उसमें लेबर 28% पर है, डाउन 7 पॉइंट्स. नेशनल 27%, डाउन 2 पॉइंट्स. ग्रीन्स 14%, up 4 points. New Zealand First, 13%, up 1 point. ACT, 9%, up 1 point. Opportunities Party, 6%. और Te Pāti Māori 2% पर है. तो Opportunities Party जो है ये वापस उस threshold में 5% threshold में दिख रही है. और अब अगर देखें 2023 जो elections जब हुए थे उस समय पर लेबर जो है 26.9% पर थी, अभी 28% पर, यानी उसके मिलान में थोड़ा ज़्यादा है. लेकिन जून में जो स्ट्रेटजी पोल हुआ था उससे अगर देखें तो 7 percentage points जो है लेबर नीचे गया है. नेशनल इसने 2023 में 38.1% ऑफ द वोट्स जो है ये जीते थे. और अभी का जो पोल है उसमें 11 पॉइंट्स नेशनल पार्टी नीचे गई है. डिटेल्स और भी हम आपको देते रहेंगे.
0: Let's go.
7: Straight from the heart. Unlock your property's true sale value with NZPMI. Your

0: Show with Vijay and Pooja.
1: Tubo jao, papio. Tubo jao.
0: Throwback. Brought to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction.
2: Throwback से पहले स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट में आइए जावेद अली और उनके साथियों का बहुत ही खूबसूरत ये गाना हम सुना रहे हैं, इसे आप एंजॉय करें। इसके बाद आज का थ्रोबिक हम लेकर आएंगे।

0: to you by 0800 Rachna. Idhar udhar jaane se bachna. Call karo 0800 Rachna. That's 0800-722-462 for first home buyers, investors, business loan, commercial loan or construction. दो बातें।
1: आज की पहली बात, किसी ने कहा है कि शतरंज का शौकीन नहीं था इसीलिए धोखा खा गया। वो मोहरे चल रहे थे, मैं रिश्तेदारी निभा रहा था। और आज की दूसरी बात, शब्दों का खेल भी अजीब है। नाम तो जल है लेकिन बुझाता आग को है। और करें सोचे इसके बारे में और बाकी का दिन अच्छा गुजारे। हम कल मिलेंगे आपसे ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

Hello, namaskar and a very, very good morning to you people. How are you? 10:03 hone wale hain as I speak. Kaise hain aap? How have you been? How has the Monday taken its toll on you? Ya phir are you back into the groove? Bhai, dekho, aisa hai ki hafta aise chutkiyon mein nikalne wala hai kyunki tyoharon ka mausam hai aur aise mein agar aapka birthday is pe aa jata hai na to oh ho ho sone pe suhaga. By the way, is tyohar ke chakkar mein main kal Ayushman Khurana ka birthday bhul gayi. To maine socha program ki shuruaat definitely main iske saath karne wali hoon. By the way, ek cheez aur jo mujhe aapko batani thi about our music stations, about our podcast Trend Makers mein ek musical podcast jo hai Sandy aur Rusbe karte hain jahan पे वो डेडिकेशंस और पोएटिक लिरिसिस्ट या फिर एक्टर्स या कुछ जो भी आइकॉनिक सिंगर्स वगैरह होते हैं उसमें उन्होंने शायद कल सेलिब्रेट भी किया था आयुष्मान खुराना का बर्थडे. तो टेक्स्ट कीजिए TM ट्रेंड मेकर्स और ट्रेंड मेकर्स रोवा पे ढूंढिएगा, देखिएगा आपको वहाँ पर कुछ शायद आपकी पावर पैक्ड म्यूजिकल जर्नी में वो हर गाना जो है एक थीम पे बेस्ड है, क्या आपको पसंद आता है या नहीं आता. तो चलिए जब उस थीम की बात ही करते हैं तो आपको आज मैं ले आती हूँ एक ऐसे गाने की तरफ जो खुद कल बर्थडे बॉय के लिए बजा था और आई थॉट दिस इज अ टाइम व्हेन आई शुड प्ले दिस पर्टिकुलर सॉन्ग फॉर यू. कशिश फूड्स के सौजन्य से आपके लिए आ जाता है माय टाइम मेरे साथ कशिका के साथ 10 से 12 बजे मंडे टू फ्राइडे. एंड नॉट टू फॉरगेट ना थोड़ी देर बाद ऑफिस शाउट आउट का भी वक्त आने वाला है. तो कहाँ से सुन रहे हैं 5599 पे टेक्स्ट करें 6 वर्ड स्टोरी में. याद है ये पूरा हफ्ता हम वो डिवाइन फीलिंग्स के बारे में बातें करने वाले हैं तो डेफिनेटली रखिए क्योंकि मैं आपकी स्टोरीज जो हैं ऐड करने वाली हूँ To my story on Insta later. बचाओ क्या?

0: एक्सपर्ट्स अड्डा
1: पहुंच चुकी हूं मैं एक्सपर्ट अड्डा में और एक्सपर्ट के पास भी पहुंच चुकी हूं जो आ जाती हैं हर ट्यूसडे के दिन हमारे साथ साथ एंड अवारा कॉस्मेटिक्स एंड लेजर क्लिनिक से नीलू आ जाती हैं. थैंक यू सो मच. एंड शिवानी फ्रॉम हैमिल्टन, आपका टेक्स्ट आया है. सॉरी नीलू, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? हेलो नीलू. नीलू जी गायब हो गई. नीलू जी की आवाज इतनी मीठी मीठी प्यारी प्यारी आई. एंड लेट मी सी.
2: हाय कशिका,
1: गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू?
2: गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू डूइंग?
1: आई एम वेरी वेरी फाइन, थैंक यू. एंड सॉरी, मैंने कहा कि मैं आपसे आज मुझे खुद पूछना है कुछ. एंड आई थॉट आई वांटेड टू चेक विद यू कि कैन यू डू स्किन पिगमेंटेशन ट्रीटमेंट, यू नो, स्पेशली व्हेन पीपल हु आर वर्किंग आउटडोर्स. And I've just got a text from somebody else also that I am also working in a courier company and I travel a lot. So मुझे भी लगता है कि मेरा भी यही question होगा. And then they say क्योंकि because outdoor काम होता है, मेरा भी outdoor काफी रहता है, तो एक pigmentation आने लग जाती है. तो how does that work?
2: बहुत अच्छा question है कशिका. Yes, most of us are on the go, especially आपका भी जो profession है या जो tradies और वगैरह landscaper बहुत आते हैं. क्योंकि नेचुरली आप अपना प्रोफेशन तो नहीं छोड़ सकते हैं, बट जो मैं हमेशा एजुकेट करती आई हूँ कितने सालों से हम लिसनर्स को कि लेयरिंग ऑफ द स्किन इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज अनदर थिंग वी विल टॉक लेटर. बट यस, आप पिगमेंट का ट्रीटमेंट वाइल वर्किंग आउटडोर्स भी ले सकते हैं. जिस दिन ट्रीटमेंट लिया है उस दिन थोड़ा सा अवॉइड करने को मैं बोलती हूँ, बिकॉज अब जो लेटेस्ट ट्रेंड है, अगर आप सही क्लिनिक्स में जाते हैं जिनमें कि ओनर्स को, कॉस्मेटोलॉजिस्ट को एक तो एक्सपीरियंस हो, दूसरा उनको पता हो कि स्किन को थिन या पील नहीं करना है. अब जो पीलिंग कॉन्सेप्ट है ना कि मैं गई और मेरी तो स्किन बहुत पील हो गई और मेरा तो पिगमेंट निकल गया, वो अब डर्मेटोलॉजिकली इट्स अ रॉन्ग स्टैंडर्ड ऑफ ट्रीटिंग अ क्लाइंट. तो अगर आप कहीं भी जाते हैं जहां पे स्किन पीलिंग, आपको मैं करती हूँ पीलिंग क्योंकि मेरी ग्रीन पील बहुत पॉपुलर है, बट ओनली ऑन एक्ने स्कैन.
1: अच्छा,
2: बाकी पिगमेंट हो गया किसी को, या एक जमाना था मेरा 20 साल पहले जब मैं बहुत पीलिंग करती थी पिगमेंट की स्किन पे भी, बट अब वो टोटली आउटडेटेड है क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल में इतना चेंज आ गया है आफ्टर कोविड. स्किन का बैरियर और स्किन की स्ट्रेंथ तो खत्म ही हो गई, हमारी इम्यूनिटी भी कितनी कम हो गई है कशिका.
1: आई नो.
2: सिमिलरली स्किन की भी इम्यूनिटी अब खत्म हो रही, तो स्किन अपने आप में ही पतली हो रही है. और उस पतले पे आप कमाल करें कि उसको और पतला करें फील करके. तो जहां पर भी पीलिंग अगर पिगमेंटेशन की हो रही है, अब वो डर्मेटोलॉजिकली नहीं अप्रूव्ड है.
1: अच्छा,
2: क्योंकि आपकी स्किन को वो और पतला करेगा. तो जहां भी आपको लगता है मैंने वो ट्रीटमेंट ले लिया वो पील हो गई, पता करें वो कौन सी आप पे लगा रही है सॉल्यूशन. अगर ट्रांसेमिक है, आपका कोजिक है, एजलेइक है, तो ये पील नहीं करता है बल्कि स्किन के आपके सेलुलर रिन्यूअल को अच्छा करके स्किन को स्ट्रेंथ देता है.
1: Okay.
2: तो आप अपना काम करते हुए भी पिगमेंटेशन ट्रीटमेंट आराम से ले सकते हैं, बिकॉज हमारा ग्लूटाथियोन के जो हम ट्रीटमेंट करते हैं और एजलेइक के करते हैं वो बहुत पॉपुलर है इस मौसम में. मेरे पास बहुत लैंडस्केपर यंग बच्चे बहुत आ रहे हैं लेटली, और लड़कियां जो कोरियर चलाती हैं वो बहुत है, और काफी फर्क पड़ा उनको. प्लस देना एजुकेट देम स्किन केयर कैसा करना है और आपको कैसे लेयरिंग करना है. इन बिटवीन द ट्रैवलिंग आप क्या रीअप्लाई कर सकते हो, सनब्लॉक लगा सकते हो, बिट ऑफ वैसलीन लगा सकते हो. तो ये बहुत चीजें अब आ गई हैं, और पानी जरूर बहुत ज्यादा पिए. तो कुछ सीरम और आई टेल देम टू मेक लाइक अ होम किट काइंड ऑफ अ थिंग व्हेन दे आर ट्रैवलिंग अ लॉट, स्पेशली ट्रेडीज को. एक तो थोड़ा सा सनब्लॉक में हल्का सा हाइलुरोनिक सीरम मिला लें, और उसका थोड़ा सा हल्का सा वैसलीन मिला लें. प्रोफेसर रामबाण,
1: रिपीट अगेन, आई एम राइटिंग.
2: तो तुम्हें टिप मिलेगी नहीं ऐसी कशिका.
1: नहीं मतलब वी हैव टू कम टू यू इन ऑर्डर टू टेक द टिप, ये बोल रही हो?
2: नहीं यार, आई ऑलवेज बिलीव. नहीं नहीं, कॉफी पीएंगे ना इकट्ठे, उसका मिला कि कशिका मिलती नहीं है, इस बार मिलेंगी तुम.
1: ठीक है, आई मिस दैट राइटिंग, बट समथिंग रिलेटेड
2: टू योर राइट. बट थोड़ा सा सनब्लॉक में थोड़ा सा हाइलुरोनिक सीरम मिलाए, और उस जो स्पेशली जो लोग बहुत आउटडोर है, और उसमें हल्का सा वैसलीन मिला के उसका छोटा सा ट्रैवलिंग पॉट में बना के रखें अपनी गाड़ी में.
1: परफेक्ट.
2: तो ये मेरे क्लाइंट्स बहुत, उसको बहुत फर्क पड़ा है कईयों को, क्योंकि स्पेशली लैंडस्केपर्स, सो दे लव दिस फॉर्मूला. तो बट ये कि थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी कि अप्लाई तो करना पड़ेगा. एक मेरे इतने अच्छे क्लाइंट है, मैडम जी इतना तो नहीं होगा. अच्छा. मैं कब फिर भाई जो होगा वो कर ले.
1: नहीं, ठीक है, चलो. आई थिंक दिस इज रियली मेकिंग सेंस, एंड थैंक यू सो मच. जो आपका भी रिप्लाई आया एंड आपने भी टेक्स्ट किया. वैसे एक बात तो है, जाने से पहले भी मैं फेस्टिव सीजन की बात कर रही हूँ, और कहाँ जा रहे हो आप बिना हमें बताए कि आपका क्या ऑफर चल रहा है?
2: ऑफर बहुत अच्छे चल रहे हैं. हमारी बॉडी मसाज तो बहुत ही अच्छी चल रही है कशिका जी, बिकॉज आई थिंक पूरे कंट्री में मैं बोल सकती हूँ वी आर दी ओनली वन हु आर giving you the Shankara Naturals from US, full body massage Abhyanga, just for $69 for the festive season.
1: Wow.
2: वो बहुत हमारा पॉलिसी है, हमारी ट्रेंड है आयुर्वेदा इन इंडिया ओनली, which is amazing.
1: Hmm.
2: Then I have got lip is for $10, chin is for $10, whole face is $39 on a package though, the term and condition hai. But I can say that laser hair removal and the body massage used to be the cheapest in the town at the moment. I can say that, I believe.
1: Wow.
2: So it is working very well with good quality. So aaiye aur skin ke treatments, ab time chalu ho jayega festive, sahi lijiye treatment jo ki skin ko acha kare aur sundar kare.
1: Exactly. और सुंदर बनाने के लिए आपको पहुंचना है at level 1 सिल्विया पार्क शॉपिंग मॉल, जहां पर अवाना कॉस्मेटिक्स एंड लेजर क्लिनिक है और साथ साथ ऑर्मिस्टन मॉल में भी हैं. इनका टोल फ्री नंबर आप लिख सकते हैं 0800-128-821, और साथ साथ avana.co.nz की वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो वहां पर आपको इनकी और भी ऑफर्स मिल जाएंगी, शायद ऑनलाइन शॉपिंग करने का मौका भी आपको मिल जाएगा. So a big thank you to you, Neelu, and अगले हफ्ते आपसे फिर बात होगी.
2: बिल्कुल कशिका जी, thank you. गणपति बप्पा मोरिया, enjoy the festive season and we'll see you again.
1: Thank you so much. Look after yourself too. Bye.
2: Thanks. Bye bye. My time with Kashika. आजकल चल रहा है बहुत न्यूज में,
0: आप ही तो नहीं. 80s के रेट्रो गाने.

0: rock and roll. Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद. Bring home everyone's favorite Shan Foods recipe mixes. बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला, रेसिपीज चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है. तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपर मार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए. शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए.
2: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
3: Indelible Homes, your building expert.
1: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With multiple branches across Auckland and Hamilton, ये हमेशा आपके पास है. Go Bananas Childcare's 12th birthday offer, 6 months completely free and the following 6 months 50% off on fees for all ages. Offer ends 30th September. Limited spaces, first come, first served. तो जल्दी join करो और enjoy करो special offers. Call 0800 46 26 26 today. Terms and conditions apply.
4: सुनो, आज फिर प्रॉपर्टी एजेंट्स का फोन आया. घर बेचने को कह रहे थे.
5: बेचना तो कभी भी बेच सकते हैं, लेकिन मार्केट में उतना मिलेगा नहीं. डेवलप करना बेहतर लगता है, पर पैसों का डर है.
4: इसीलिए NZPMI से बात कर लो, वो फीजिबिलिटी देखते हैं और प्लानिंग से फंडिंग तक सब संभाल लेते हैं.
1: हर प्रॉपर्टी बेचना जरूरी नहीं, आपकी जमीन की असली वैल्यू उसके डेवलपमेंट में हो सकती है. आज ही NZPMI के पॉल से बात कीजिए. NZPMI, टुगेदर वी बिल्ड सक्सेस. कॉल पॉल ऑन 0800-4NZPMI.
6: सोना संसार पापा टोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे.
7: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं, समझे?
6: सोना संसार पापा टोटो, जहां था वहां अभी भी है. शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स, पापा टोटो.
8: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा टोटो. सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर gold.
9: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
10: Office shout out.
11: In fact, ये shout out अब जा रहा है Hamilton की ओर. Thank you, Shivani. And आप जब मुझे ये मैसेज आता है ना इस तरह का, एक बार पहले भी शायद किसी ने कहा था, दिल लव द प्लेलिस्ट, और आपने कहा यू आर अमेजिंग काशिका, आई लव योर चॉइस ऑफ सॉन्ग्स, मेक्स माय डे. चीयर्स शिवानी फ्रॉम हैमिल्टन. क्या बात है, थैंक यू सो मच शिवानी, यू मेड माय डे. इन फैक्ट थैंक्स, आई एम श्योर आप रुबा ऐप के जरिए हमें सुन रही हैं, लेकिन रुबा ऐप के जरिए हमारे डिफरेंट म्यूजिक स्टेशंस को भी आप सुन सकती हैं, साथ साथ लुत्फ उठा सकती हैं, चाहे वो 80s के जूक बॉक्स है, 60s 70s का हम रिवाइंड है, फीजी कीर्तन संग्रह है, या फिर फीजी भजन है, या हमारे पंजाबी हिट्स हैं, या राहत फतेह अली खान का म्यूजिक स्टेशन. आप ये कोई भी स्टेशन डेफिनेटली सुन सकती हैं साथ में. मुझे तो अब आप सुन रहे हैं तो मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट हो गया, मुझे बहुत ही केयरफुल होके गाने बजाने पड़ेंगे. तो चलिए, ये गाना आपको, अगला गाना, अगले दो गाने आपको मैं डेडिकेट करती हूँ. इंजॉय.
9: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

वैसे अगला गाना जो मैं लेकर आ रही हूँ वो आयुष्मान खुराना ने इस फिल्म के साथ डेब्यू किया था। अब मैं ये क्यों बता रही हूँ आपको, क्योंकि देखा जाए द न्यूएस्ट प्रीमियम एप्पल वैरायटी जिसका नाम है जोली इन वियतनाम, ये अपने एक्सपोर्ट्स के लिए तैयार होने वाले हैं। एंड इस एप्पल कंपनी के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने बताया ये लार्ज एप्पल्स जो हैं बहुत स्वीट हैं, जूसी हैं, परफेक्ट फॉर फैमिली एंड डिज़ाइन टू शेयर, अब विच मीन्स दे आर वेरी वेरी गुड टू शेयर। ना इंटरेस्टिंग बात मैं आपको क्यों बता रही हूँ ये कि आप कह रहे वियतनाम कहाँ तुम पहुँच गई हो, लेकिन ये जो है दरअसल ग्लोबल मार्केट को टच कर चुकी है। वाई हाउ, इनकी कंपनी के बहुत बड़े प्लान्स हैं टू इंक्रीज प्रोडक्शन इन न्यूजीलैंड यू नो बाय 2030। अब आप सोच सकते हैं इन एप्पल के कलर्स जो है ना एकदम लाल टमाटर के जैसे हैं, और ये कहा जा रहा है कि ये कैंटरबरी प्लेन्स पर इनको ग्रो करने जा रहे हैं। इनके पास एक लाइसेंस है ऑफ 273 हेक्टेयर्स ऑफ जोली एप्पल्स आउटरोआ में, और कहा जा रहा है लगभग ग्लोबली करीब ये 2035 तक सब ये डिलीवर करना भी शुरू कर देंगे। भाई एप्पल्स खाने ही पड़ेंगे, देख के इतने जूसी इतने डिलिशियस दिख रहे हैं। सो द न्यूएस्ट प्रीमियम ब्रांड जोली जो है ये अब हमें यह कुछ सालों में एक्चुअली क्या पता अब यहाँ पे वैसे भी मिलता हो, याद रखिएगा ये ब्रांड द बीट ऑफ बॉलीवुड वर्ल्ड्स बेस्ट हमारी गुड ब्रांड्स नहीं है।

0: ईट बेटर लिव बेटर और बहुत कुछ ऐसा होता है हमारी कम्युनिटी में जो हमें लगता है कि शायद हम मिस आउट कर जाते हैं. तो आप किसी और तक ये पहुंचाना चाहते हैं तो हम आपकी आवाज़ बनने के लिए तैयार हैं. buzz@hamfm.com पे आप हमें ईमेल कर सकते हैं और हम आपकी खुशियों में शामिल हो सकते हैं, आपके लिए एक प्लेटफॉर्म बन सकते हैं अगर आपका इवेंट फ्री है. जैसे कि श्री राम मंदिर में गणेश उत्सव जो है आज से लेके 20 तारीख तक मनाया जाने वाला है. हर रात 7:20 से लेके 9 बजे तक और फाइनल डे 20 तारीख को ये पूजा करने वाले हैं सुबह 9 बजे से, और फिर गणेश विसर्जन दोपहर 12 बजे से होगा. और साथ साथ 7 दिन का श्रीमद् भागवत कथा जो है ये शुरू हो चुकी है कल से लेकर 20 तारीख तक 7:30 से 9:30 बजे तक भारतीय मंदिर में. तो यहाँ 100 साल और पिछवाई जहाँ पे ब्रजराज रसिक डॉक्टर श्री कृष्ण किंकर जी जो हैं श्री धाम वृंदावन के नाम संकीर्तन वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर थे हैं, और इनके साथ ये एक स्पिरिचुअल जर्नी आप महसूस कर सकते हैं. नॉट श्योर भारतीय संगम भी गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट करने वाले हैं. एक दिन की इनके कमाल की सेलिब्रेशंस हैं जो 19 सितंबर के दिन सुबह 11 बजे से ये करने वाले हैं. द ताकापुना वॉर मेमोरियल हॉल जहां पर गणेश पूजा, महाप्रसाद, कल्चरल इवेंट, ढोल ताशा और फिर क्लोजिंग सेरेमनी होगी. वेद प्रचार वीक है जहां पे 28 सितंबर से लेके 4 अक्टूबर तक 32 ग्लासगो एवेन्यू पापाटोय में 6:20 से ये इवेंट होने वाला है, जहां 30 साल इस एनिवर्सरी के एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आर्य समाज इन न्यूजीलैंड उसका सेलिब्रेशन होने वाला है. तो डेफिनेटली आप यहां पे भी पहुंच सकते हैं.
1: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन. प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी. हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म. डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन.
2: Spruce your backyard for spring at Trade Tested. Smash the winter grime with a Karcher water blaster. Get a Hyundai chipper in to shred the branches or deal to the weeds with a fancy Greenworks electric garden sprayer. Be first up, best dressed this spring at Trade Tested.
3: Great news. Flu vaccinations are now free for all children aged 6 months to under 5 years. It's not too late to help protect your little ones from serious illness this flu season. So book now with your healthcare provider or visit bookmyvaccine.nz.
4: My Time with Kashika. Brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better. Dream Diary.
0: सो ड्रीम डायरी में एक्चुअली क्या हुआ था कि कल आपकी जब कॉल आई थी ना उस समय ये एक हम बात कर रहे थे कि किस तरह से उन्हें गणेश जी जो थे उनको सपने में आए थे. एक चीज़ होती कि एक ये स्वप्न शास्त्र जो होता है इसमें अगर आपके जो स्पिरिचुअलिटी लेवल्स होते हैं वो एलिवेट हो जाते हैं. एक ट्रेडिशन जो होता है वो एक अंदर से आपका डीप इनर फीलिंग जो होती है, आपकी कॉन्शियसनेस जो होती है उसके साथ आप वो ड्रीम जो है आपकी बिल्ड होती है. प्रिसाइसली दैट इज़ वाई आप किसी ना किसी भगवान को अगर अपने उस रूप में उनको देखते हैं तो दैट कैरीज अ लॉट ऑफ यू नो वेट इन वॉट एवर यू आर ड्रीमिंग ऑफ. कोशिश कीजिए कि अगर जैसे आपने गणेश जी को देखा ही विघ्न हरता है, ऑब्स्टिकल्स हटा देते हैं. लक्ष्मी जी को अगर आप सपने में देखते हैं तो वो वेल्थ के लिए मानी जाती हैं. सरस्वती जी को देखते हैं वो नॉलेज के लिए आपको माने जाते हैं. तो एवरी गॉड हैज़ देयर ओन स्पेसिफिक थिंग जहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि आप जब उन्हें सपने में देखते हैं तो कुछ ना कुछ सिम्बलाइज ज़रूर करते हैं. तो कोशिश कीजिए अगर आप कुछ सपने में देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप बताइए. जैसे कि आपका भी सपना आया कि आपको मतलब कल था आपका कि हनुमान जी आपके ड्रीम में आए थे, तो आपने कहा कि एक आपका डिवोशन और एक उनका डिवोशन मैं कह सकती हूँ एक सेल्फलेस सर्विस जो उनकी थी वो एक आपको रीअश्योरेंस देता है कि एक कोई डिफ़िकल्ट टास्क है जिसे आपको कंप्लीट करना है विद डिटर्मिनेशन. आपको दृढ़ निश्चय कर लेना है जिस तरह से हनुमान जी ने किया था. वो हर स्ट्रगल में अगर आप कोई स्ट्रगल कर रहे हैं वो आपके लिए सपनों में आते हैं और आपको ये बताते हैं कि भाई ठीक है आगे चलो, ये सिग्नल दे रहे हैं कि बिल्कुल सीधे सीधे बढ़ते चले जाओ. और ये रिप्रेजेंट करते हैं प्रोटेक्टिवनेस, आपके अंदर एक करेज जताने की बताने की कोशिश करते हैं. सो व्हेन यू वेक अप जेन्युइनली and you dream of something like this. So I feel that it's a very humbling experience.
4: Dil se, dil tak. Unlock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800 4NZPMI.

0: ब्रॉट टू यू बाय 0800 रचना। इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना, दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन।
1: तो इसी के साथ मैं पहुंच चुकी हूं अपने थ्रोबैक के गाने की तरफ। थैंक यू टू रचना, 0800 रचना। लेकिन ये पर्टिकुलर मूवी एक ऐसी थी, और ये पर्टिकुलर आई थिंक मूवी ऐसी थी जिसके बाद फॉर सम पीरियड जूही चावला को एक सुपरस्टार बना दिया गया था। उनकी फिल्में बहुत अच्छी अच्छी चलने लग गई थी, हिट हीरोइन बन गई थी, और उनके ऊपर जो गाने आ रहे थे ना, एक से बढ़कर एक, जैसे कि ये

0: weekdays 6 to 10am.
1: Adore your floor for less with Flooring Extra's Affordable Floor Makeover Sale. Save on their best-selling range, including 15% off all Quickstep. Visit your local Flooring Extra showroom today.
2: Flooring Extra. Adore your floor.
3: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है। जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है। हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है। We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations. 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927-88600.
4: होम लोन के साथ थोड़ा कैश भी पाना चाहते हैं? नया होम लोन लेना हो या मौजूदा लोन का रिव्यू करवाना हो, स्क्विरल आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त डील कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। जानिए पावर ऑफ द स्क्विरल इफेक्ट। squirrel.co.nz.
5: हे नेहा, कांग्रेचुलेशंस ऑन योर फर्स्ट होम। तूने तो कहा था कि दो दो बैंक्स ने लोन देने से और एक फेमस ब्रोकर ने तो केस लेने से ही मना कर दिया था। ये घर कैसे?
6: अरे ये तो लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला का कमाल है। एक रियल एस्टेट वाले ने उन्हें सजेस्ट किया, मैंने उन्हें फेसबुक पर ढूंढा और डायरेक्टली कॉन्टेक्ट किया।
5: नेहा अब तो मुझे भी उनसे मिलवाओ।
7: फर्स्ट होम बाया बनना है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है तो आज ही कॉल करें लॉजिक फाइनेंस के गुरु कैंडोला को ऑन 0800 लॉजिक गुरु।
8: Check. Brought to you by Maan Tyres. For all kinds of tyres and mechanical services, open 7 days. Call Maan Tyres on 0800-00-00-10.
0: Hum News. Brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with logic.
9: Morning, I'm Glenn Stewart with the latest at 11. Nurses at Tauranga Hospital's emergency department are declaring a state of emergency. More than 100 staff have signed a letter to the Te Whatu Ora chief executive saying the gap between patient demand and their resources is widening. The nurses' organisation says their members have been asked to assess and treat some patients in hallways. Routine cognitive testing has been ditched for older Kiwi drivers. Previously, it was a standard practice for anyone over the age of 75, but new evidence shows people should be assessed individually by a health practitioner. Minister for Seniors Casey Costello says cognitive screening tools can't reliably predict whether someone will be safe on our roads. It seems like businesses in Rotorua are still getting to grips with new parking tech in the CBD. The council's seeking public feedback after frustration from retailers over updated machines affecting foot traffic. Melanie Short from the Rotorua Business Chamber reckons it's still early days.
10: It's only been a few months. There definitely have been some new tech introduced. The feedback we're getting is that it's better than it was, but people are still getting used to the new format.
9: And ASB's chief executive is stepping down. Victoria Short will leave the bank later this year after almost 9 years at the helm. In sport, rugby league with Machinery House and a league of their own, and premiership winning coach Shane Flanagan thinks the Warriors made a mistake by not resting players in the lead up to the NRL finals. He's told the Buy Round podcast they should have been happy just making the top two.
11: Two home semis, not resting players, didn't get the minor premiership. No one remembers who won the minor premiership except whoever won it. They've gone backwards one step now.
9: And in football, Leeds United have moved into third in the English Premier League with a 4-1 win this morning over Newcastle at Elland Road.
0: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill.
3: Hum par shok suchnaye aap tak late hai. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations.
12: सूचित किया जाता है कि सतीश चंद, शर्मिला, शोभना और नीता के पिता सावित्री के पति सुरेंद्र चंद की मृत्यु फाय ठाकरे हॉस्पिटल में हो गई. अंतिम संस्कार कल यानी कि 16 सितंबर को 1 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रीमेशंस में किया जाएगा. जानकारी श्रद्धांजलि के लिए 0273646393 पर आप संपर्क कर सकते हैं. सूचना दोबारा सुने. सतीश चंद, शर्मिला, शोभना और नीता के पिता सावित्री के पति सुरेंद्र चंद की मृत्यु वाई टैकरे हॉस्पिटल में हो गई. अंतिम संस्कार कल दोपहर 1 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रीमेशंस में किया जाएगा. ज्यादा जानकारी के लिए 0273646393 पर आप संपर्क कर सकते हैं. सूचित किया जाता है के रातुमारा रोड नाम्बुआ फिजी के स्वर्गीय रामलाल के पुत्र एवंडेल के प्रकाश लाल के पति ऑकलैंड के शिवनेश लाल तथा सिडनी ऑस्ट्रेलिया के शिवनील लाल के पिता फिजी के फॉर्मर नसीनो और सुवा सॉकर रिप्रेजेंटेटिव एवंडेल के सुनेश लाल की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई. अंतिम संस्कार गुरुवार के दिन दोपहर 1 बजे मैनाकॉ मेमोरियल गार्डन्स में किया जाएगा. सूचना और श्रद्धांजलि के लिए 02231-04961 पर आप संपर्क कर सकते हैं। सूचना दोबारा सुने। रातुमारा रोड नाम्बू ऑफिजी के स्वर्गीय रामलाल के पुत्र एवनडेल के प्रकाश लाल के पति, ऑकलैंड के शिवनेश लाल तथा सिडनी ऑस्ट्रेलिया के शिवनी लाल के पिता, फिजी के फॉर्मर नसीनो और सुवा सॉकर रिप्रेजेंटेटिव और एवनडेल के सुनेश लाल की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार गुरुवार के दिन दोपहर 1 बजे मैनकाओ मेमोरियल गार्डन्स में किया जाएगा। जानकारी श्रद्धांजलि के लिए 02231-04961 पर आप संपर्क करें। सूचित किया जाता है कि बिनेश सुमेर, आत्माराम, स्नेह लता और बेला सिंह की माँ, उषा सुमेर की सास, भूतपूर्व लवकाला बे सुवा निवासी स्वर्गीय राम सुमेर की पत्नी जशोदा कुमार की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार कल 3:30 बजे एंड फ्यूनरल होम एनॉन्सेड क्रीमेशंस में किया जाएगा। जानकारी श्रद्धांजलि के लिए 02149-6321 पर आप संपर्क कर सकते हैं। सूचना दोबारा सुने। सूचित किया जाता है कि बिनेश सुमेर, आत्माराम, स्नेहलता और बेला सिंह की माँ, उषा सुमेर की सास, भूतपूर्व लवकाला बे सुवा फिजी के स्वर्गीय राम सुमेर की पत्नी जशोदा कुमार की मृत्यु ऑकलैंड में हो गई। अंतिम संस्कार कल 3:30 बजे एंड फ्यूनरल होम एंड ऑनसेट क्रीमेशंस में किया जाएगा। जानकारी श्रद्धांजलि के लिए 01496-6321 पर आप संपर्क कर सकते हैं।
13: शोक सूचनाएं वीकडेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे, शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी।

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: It feels like 15 degrees right now and the highs of 17, overnight temperature of 9. आज का forecast बताया जा रहा है कुछ एक आध showers जो हैं वो शाम तक खत्म हो जाएंगी. 6:12 पर sunset बताया गया है.
0: My time with Kashika brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
2: Mid morning maza.
3: Ladies and gentlemen, dil thaam ke baithiye kyunki aa rahi hai.
1: तो याद रहे मेरी आज की जो सिक्स वर्ड की स्टोरी है, इट इज़ इनफैक्ट इस पूरे हफ्ते मैं डिवाइन जो है यू नो स्टोरी चाहती हूँ आपकी. कोई अब ये डिवाइन स्टोरी आपकी सिक्स वर्ड्स में किस तरह से आप इसे इसकी रचना कर सकते हैं ज़रूर बताइए मुझे. आपकी जो एक आर्टिस्टिक या आपका क्रिएटिविटी किस तरह से कहाँ तक खोद के दौड़ता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द वीक मेरी पूरी कोशिश है कि मैं एक इंस्टाग्राम की रील बनाऊं और आप सबकी स्टोरीज उसमें मैं ज़रूर ऐड करूं. वेलकम ऑन माय टाइम. मेरे साथ मिड मॉर्निंग मज़ा में भी आप मेरे साथ हैं काशिका के साथ. आपकी रिमाइंडर क्लॉक 12 बजे तक आपका मेरा साथ बना रहेगा और 10 से 12 बजे का ये सफ़र मंडे टू फ्राइडे कशिश फूड्स के सौजन्य से आपके लिए मुमकिन हो जाता है. थोड़ी देर बाद कुछ और बातें लेकर आपके लिए हाजिर हो जाऊँगी. याद रखिए आयुष्मान खुराना का बर्थडे मैं सेलिब्रेट करने की कोशिश कर रही थी, कल भूल गई थी बप्पा के चक्कर में. लेकिन हाँ, बप्पा इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. लेकिन एक आध गाना मैंने आयुष्मान खुराना का ऐड करा है. अगर आपको लगता है कोई गाना मुझे ऐड करना चाहिए मैंने मिस आउट कर दिया तो ज़रूर बताइए. बजाऊँ
4: It's a unisex song.

0: एक बात तो है कि एक न्यूजीलैंड के पेरेंट्स का एक ट्रेंड चेंज हो रहा है, जहाँ पे वो ऑनलाइन ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं टू द ट्रेडिशनल होममेड बर्थडे पार्टीज। अब फॉर जनरेशन बच्चों की पार्टीज हम लोग कैसे मनाते थे, अरे एक प्लास्टिक का टेबल क्लॉथ लगाते थे बैकयार्ड में और उसके बाद फिर हम खाना पीना वो सब कुछ लगा के और डेकोरेशन वगैरह करते थे, और ये कुछ DIY अब चीज़ें जो होती थी हमारे पास होती नहीं थी। लेकिन आज DIY काफ़ी अब बढ़िया होने लगा है। अब एक चीज़ और है जो केटरिंग जो है आउटसोर्स होने लगे है। गूगल ट्रेंड्स के हिसाब से न्यूजीलैंड का जो एक जो इन्फॉर्मेशन आई है सर्च के ज़रिए पता चलता है कि इवेंट्स पे केटरिंग इज शोइंग अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट 2021 अगस्त से लेके अगस्त 2026 तक। ये जो एक इंटरेस्ट है फॉर द इवेंट फूड ट्रक्स जो हैं उनकी बढ़ गए हैं, ओवरऑल ग्रोथ हो गई है। एंड ये एक सीजनल जो किड्स की बर्थडे पार्टी होती है ये पार्टी प्लानिंग के लिए बहुत बहुत काम में आती है। अब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये क्वेरीज जो है फ्रॉम अ ट्रेडिशनल पार्टी जहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें अपने घर पे कुछ रेडी करते थे लेकिन नहीं, ये चीज़ें बढ़ती चली गई, बिगड़ती चली गई और उसके बाद सवरती चली गई। फूड ट्रक्स वगैरह 2026 में अपना हाईएस्ट एक इंडेक्स पे पहुंच गए थे, जहां समर पार्टीज में लोगों ने सोचना शुरू किया कि व्हाई नॉट कॉल अ फूड ट्रक एंड लेट देम कम एंड कुक फॉर यू। अब ये फूड ट्रक्स का इंटरेस्ट जो है 2022 से हल्का हल्का शुरू हुआ था बट इट रीच इट्स पीक। अगस्त 2026 में पता चलता है कि फूड ट्रक्स हैव डबल्ड सिंस 2021 और ऐसे में पार्टी फूड जो है उसमें कहा जाता है कि ये चीज़ें जो घर में बनाने वाली ख़त्म होती चली गई। एक फूड ट्रक मोस्टली पहले रिजर्व होता था फॉर नाइट मार्केट्स या स्ट्रीट फेस्टिवल्स एक्सेट्रा, लेकिन नाउ पीपल हैव स्टार्टेड ट्राइंग टू गेट दैट काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस। ये ट्रेंड ऐसा चेंज हुआ है, हैसल फ्री हो जाते हैं केटरिंग का, और एक कॉन्सेप्ट जो है जहाँ पे आप पहले केटरिंग वगैरह भी होती थी लेकिन आप फूड ट्रक लाते हैं कहते अच्छा चलो यहीं फूड ट्रक पे से खाओ। इनफैक्ट यहाँ मीडिया वर्क्स में भी इसी तरह का कुछ होता है जहाँ पे हमारे पास फूड ट्रक्स जो होती हैं आ जाती हैं जब हमारी कुछ पार्टीज़ होती क्रिसमस पार्टीज़ वगैरह होती हैं, एंड इट इज़ सो मच ऑफ डिफरेंस। ये शिफ्ट जो है रिफ्लेक्ट करता है ऑफ द चेंजिंग रियलिटी ऑफ अ मॉडर्न फैमिली लाइफ। डिमांडिंग वर्क स्केड्यूल्स होते हैं, प्रेशर होता है, ट्रेंडी सोशल एक हमें हमें एक्सपेक्टेशंस जो हमारी चलती हैं उन चीज़ों को माइंड में रखते हुए एक व्हाई नॉट ट्राई समथिंग डिफरेंट। एंड घर पे बनाना अब मुझे लगता है आउटडेटेड हो चुका है। चलो सिक्स वर्ड स्टोरी की बारी आ रही है, बताओ।
1: Keep calm because Punjabi swag is on.

0: It's a mum wanting a free kid's haircut for her adult son. It's another chewing gum and hair mishap. It's someone asking if frosted tips are back in fashion. There's a lot on the line starting a business. To see how ANZ can help, search ANZ How To. Eligibility criteria, T's and C's apply.
1: Check out these fresh deals from New World North Island. Get pork shoulder roast bone-in, $9.99 per kilo. Or Dole Bobby bananas, $3.79 each. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
2: It's normal to feel low sometimes. Just like how the weather changes, so can our moods. Pay attention to your feelings. Reach in and check how you're doing. Reach out and talk to someone you trust. If you need to talk with a trusted professional, Asian Family Services is here to support. Call the Asian Helpline on 0800-862-342 for free, confidential support. If you or someone you know is in immediate danger, please call 111 or emergency services.
3: Commonwealth Vault keep your precious belongings safe and secure. With the value of gold, bullion and precious metals at an all-time high, it's more important than ever to ensure your assets are protected from theft and natural disasters. When you entrust your valuables to Commonwealth Vault, you have peace of mind, knowing they'll be safe, secure and protected. Commonwealth Vault, securing your valuables for a lifetime and beyond at the historic Public Trust Building on Oxford Terrace. Details at commonwealthvault.co.nz.
4: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better. Six word story.
5: तो मेरी सिक्स वर्ड की आज जो स्टोरी है इट इज़ वेरी प्रिटी, इट्स वेरी वेरी ब्यूटिफुल एंड अ बिग थैंक यू टू 1184. भाई कभी कभी आप लोग साथ में जब लिख देते हैं ना कि अंडर प्राइवेसी एक्ट नाम नहीं बताओ, बट एक सिक्स वर्ड स्टोरी शायद आपके लिए बहुत मायने रखती होगी. लेकिन हाँ, ये इस हफ्ते एक डिवाइन स्टोरीज मुझे चाहिए. सो आपने लिखा फॉरगिवन, हील्ड, रिडीम्ड, क्राउन्ड, सेटिस्फाइड, रिन्यूड. फॉरगिवन, हील्ड, रिडीम्ड, क्राउन्ड, सेटिस्फाइड, रिन्यूड. ब्यूटिफुल, लवली, दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग. वैसे टाइम भी आ रहा है जहाँ पे हमें अपने इलेक्शन के राइट्स को रिन्यू करना है, यानी कि बड़े बड़े जो प्रोमिसज हैं, डिसीशंस हैं, रियल कॉन्सिक्वेंसेज क्या है इस साल के जो इलेक्शन हैं, एक पोलिटिकल नॉइज जो है उसमें स्ट्रेट आंसर्स अगर आपको चाहिए तो आउट टू रिवर स्पीक्स इलेक्शन स्पेशल ऑन ड्राइव शो. ये होने वाला है आने वाले थर्सडे के दिन शाम 5 बजे. एक्ट पार्टी के लीडर डेविड सिमर जो है लाइव ज्वाइन करने वाले हैं फॉर द पॉलिसीज, प्रायोरिटीज और उनका विजन न्यूजीलैंड के बारे में. अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है डेविड सिमर के रिलेटेड तो आप उनसे पूछ सकते हैं. 5599 पे ड्राइव लिखिए, अपना क्वेश्चन पूछिए और फिर ट्यून इन हो जाएगा थर्सडे की शाम को 5 बजे, क्योंकि डेविड सिमर शायद आपके क्वेश्चंस के आंसर्स का रिप्लाई देंगे. आउट टू योर स्पीक्स योर क्वेश्चंस देयर आंसर्स. दिस इज गोइंग टू बी रियली एन अमेजिंग वन.
4: टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स.

0: Time with Kashika.
1: Wow.
2: How?
1: Adbhut.
3: तो बात कर रहे हैं गणेश उत्सव के बारे में जो 15 सितंबर यानी कि आज से लेकर 20 तारीख तक 7:20 से 9 बजे तक ये चलने वाला है और गणेश विसर्जन जो है 20 तारीख को किया जाएगा. राम मंदिर आप पहुंच सकते हैं और साथ साथ 7 दिनों की श्रीमद् भागवत कथा ये कल से शुरू होगी, 20 तारीख तक चलने वाली है और भारतीय मंदिर में 7:30 से 9:30 बजे तक इसका प्रवचन जो है आप सुन सकते हैं. नॉट शो भारतीय संगम जो है गणेश चतुर्थी 19 तारीख को लेकर आने वाले हैं. 11 बजे से टाकापूना वॉर मेमोरियल में आप पहुंच सकते हैं और बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम यहां पर रहने वाला है. 11 बजे से लेकर 4 बजे ढोल ताशा के साथ क्लोजिंग सेरेमनी होगी. वेद प्रचार हफ्ता जो है ये सेलिब्रेट किया जाने वाला है 28 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर तक 32 ग्लासगो एवेन्यू पापाटोटो में 6:20 पर. यहाँ पे प्रोग्राम की जो हाईलाइट होगी वो 30th एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस होंगी ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आर्य समाज इन न्यूजीलैंड. कमिंग अप नेक्स्ट, रेस्क्यू मी, रिसाइकल मी.

भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर

0: आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: Reliance Ventilation System.
2: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
1: Moisture और ventilation का problem लगता है।
2: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है।
1: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं।
3: Contact Reliance Ventilation System on 0800-787-111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.
4: Check out these fresh deals from New World North Island. Get pork shoulder roast bone in, $9.99 per kilo. Or Dole Bobby bananas, $3.79 each. Now that's New World value. Sizes, limits, exclusions apply.
5: Get the family kitted out for less at Rebel Sport. Save 20% on all Nike clothing and 20% off all Nike adult running shoes. Plus, there's 15% off All Blacks Greatest Rivalry fan gear. Gear up for less, only at Rebel Sport. See online for T's and C's.

0: रेस्क्यू मी रिसाइकिल मी में मैंने इस हफ्ते राजमा का चैलेंज उठाया है, और ऐसे में अगर आपके घर में राजमा बच जाता है तो आप ये जो बीन्स हैं इनको आप एक तरफ रख दीजिए, राजमा को एक तरफ रख दीजिए। अब क्या करना है, आपको बासमती चावल लेना है, उसको भिगो लेना है, और फिर आपको छोटे छोटे या एक्चुअली लंबे अनियंस लेके सौते कर लीजिएगा, और फिर आपको उसके अंदर राजमा ऐड करने हैं। जैसे ही वो हल्का सा थोड़ा थोड़ा गुलाबी पिंक से ऐसा ब्राउनिश की तरफ पहुँचने लगता है ना प्याज, फिर उसमें मसाले डाल के और फिर उसमें आपने राजमा ऐड कर दिया। राजमा ऐड करके थोड़ा सा उसको भूनिए, और भूनने के बाद उसमें चावल जो है आपने भिगोए हुए हैं वो ऐड कर दीजिए। देखिए आपके लिए राजमा का पुलाव क्या बन के निकलता है। ऑनेस्टली टेलिंग यू दिस रियली समटाइम्स आपको लगता होगा शायद कि इतना ईजी है। ईजी है भैया, बहुत ईजी है। कभी खाली माइंड को सोचना पड़ता है कि किस तरह से आपको उसकी तरफ लेके जाना चाहिए। एक चीज़ तो है, यू नो दैट वेन एवर वी आर देर, हमारे कुछ लेफ्ट ओवर्स जो होते हैं उनकी रेसिपीज हम कभी जब शेयर करने की कोशिश करते हैं, आई एम नॉट वेरी श्योर कि कैसे चलता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट डज वर्कआउट कि हम लोग उसके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेते हैं। एक और खबर अभी जो आ रही है, ऑकलैंड और वेलिंगटन की लॉन्गेस्ट पीरियड बताया जा रहा है ऑफ द प्रॉपर्टी टू सेल इन ऑगस्ट लास्ट मंथ, एंड वेलिंगटन लोएस्ट एवर इस अगस्त का सेल्स काउंट। तो रियल इस्टेट इंस्टीट्यूट ने ये इन्फॉर्मेशन दी है कि ऑकलैंड ने रिकॉर्ड किया 54 डेज की सेल कम्पेयर टू द 10 ईयर्स एवरेज ऑफ अगस्त ऑफ ओनली 43। वेलिंगटन का जो मीडियन था वो 60 पर था, बट कम्पेयर टू 10 ईयर्स एवरेज इज एट ओनली 41। अब इस तरह से जो है कि ये प्रॉपर्टीज जो हैं जब बिकती हैं और ख़रीदी जाती हैं, ये परसेंटेज जो काफ़ी हद तक अब लो दिखाई दे रहा है, एंड वी रियली डोंट नो ये मार्केट प्राइस इतना लो होने के बाद अब आगे क्या होने वाला है। वी रियली डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग टू बी द थिंग, बट इट कैन बी अ स्टेबल मार्केट फॉर बोथ बायर्स एंड सेलर्स रिलेटिवली। कि आपको पता है कि भाई इस मार्केट में आपको इतना ही मिलने वाला है, ठीक है। सो अगर आप कुछ बोरो कर रहे हैं लोन, या आपकी जॉब की सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ है, दिस इज़ द रियल टाइम। अब जनरल इलेक्शंस भी आ रहे हैं, तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो है इन्फ्लुएंस करती है मार्केट के ऊपर। लेट्स सी कि ये गाइडेंस किस तरह से प्रोफेशनल्स आपको बता सकते हैं कि क्या आपको नेक्स्ट मूव लेना चाहिए।
1: दिल से दिल तक, अनलॉक योर प्रॉपर्टीज ट्रू सेल वैल्यू विद NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स। फॉर अ फ्री साइट असेसमेंट विजिट nzpmi.co.nz और कॉल 0800 4NZPMI।

0: यू बाई 0800 रचना। इधर उधर जाने से बचना, कॉल करो 0800 रचना, दैट्स 0800-722-462 फॉर फर्स्ट होम बायर्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन और कंस्ट्रक्शन।
1: तो चलिए फिर इसी के साथ साथ कीजिए स्वीकार कशिका का नमस्कार। आज का दिन कहलाता है मंगलवार और आपके साथ साथ अब थोड़ी देर बाद आ रहे हैं तैयार होकर नन अदर देन केतन, इनका साथ ज़रूर दीजिएगा, बहुत टैलेंटेड है। और मैं अब यहाँ से चलती हूँ, कल सुबह 10 बजे आपसे मुलाकात करती हूँ। मेक श्योर आप अपनी 6 वर्ड की स्टोरी रेडी रखिएगा, ओके और राइट, बिकॉज आई लव टू हेयर फ्रॉम यू कि आपके हिसाब से क्या फीलिंग्स होती हैं। एज आई सेड दैट कभी कभी बहुत सारे वर्ड्स चाहिए होते हैं, कभी कभी बहुत कम वर्ड्स में भी आप कुछ बहुत ज़्यादा बोल देते हैं, ओके और राइट। सो लुक आफ्टर योरसेल्फ, दिस इज़ गोइंग टू बी काशिका साइनिंग ऑफ फॉर द डे। हाँ, मौसम थोड़ा सा बदलने वाला है, थोड़ा मौसम आगे चल के फ्राइडे सैटरडे के दिन ठीक नहीं रहेगा, एज वी वर डिस्कसिंग ओवर द कॉल। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल, बट अभी के लिए मैं चलती हूँ, कल सुबह 10 बजे फिर मुलाकात करती हूँ। टेक केयर, बाय।

0: उसने तन्हा छोड़ दिया, हवाओं की तरह मैंने भी रुख मोड़ दिया। बराबरी का खेल रहा इस दफा यारो, मैंने उसका उसने मेरा दिल तोड़ दिया, दिल तोड़ दिया।
1: मार्च 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
2: रुस्बे, टिकट्स बुक हो गए।
3: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
2: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
3: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
2: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
4: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
5: हेलो एवरीबॉडी।
1: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
6: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
1: टेक्स्ट ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुस्बे, ओनली ऑन हम।
7: Why switch to Tower? Get covered in minutes and enjoy 2 months on us when you buy new comprehensive car insurance online. Use promo code 2 months. T's and C's and eligibility criteria apply. Excludes GST and levies. Switch to Kiwi. Switch to Tower.
1: When India comes to town, Aotearoa ka feel hi kuch alag ho jata hai. Tickets ab available hai nzc.nz par. Be there. Kyunki ye sirf cricket nahi, ye hai Black Caps versus India.
8: हैवान इंसान नहीं होता, पर हर इंसान हैवान बन सकता है।
9: अंधा होने से बुरा पता है क्या होता है? बेवकूफ होना।
8: हैवान स्टारिंग अक्षय कुमार, सैफ अली खान एंड बोमन ईरानी।
10: अपने बदले की आग में और कितने मासूमों की जान लोगे तुम?
9: ये आखिरी
8: हैवान नाउ शोइंग इन सिनेमास। डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फोरम फिल्म्स। रेटिंग TBC।
11: Online person, phone person, or I want to speak to a real person. MTF Finance gets it. You can apply online, give them a call, or visit one of their 55 local teams around New Zealand. And because MTF knows finance isn't one size fits all, they'll talk about it the way that works for you. However you'd like to talk about your next loan, MTF will meet you there. Search MTF Finance today. Lender criteria and checks, terms, conditions and fees apply. See mtf.co.nz/terms. You're gonna see.
12: Brought to you by Mann Tires. For all kinds of tires and mechanical services, open 7 days. Call Mann Tires on 0800 00 00 10.
2: Hum News. Brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with logic.
13: Good afternoon, I'm Glenn Stewart with the latest at midday. Workers in Lower Hutt are walking off the job over a pay offer that stops short of the living wage. ETU members at Pact Packaging have been presented an extra 66 cents for the first 12 months. The union says it's not enough to keep a family's head above water, as most workers earn less than $28 an hour. The strike is set for 2 hours starting from 1 p.m. Pest numbers in New Zealand's second largest national park have fallen to near undetectable levels. Only one rat has been caught in Kahurangi across more than 1,300 traps checked recently. Tracking tunnels from July also recorded no rodent detections. Rotorua's business chamber says it's too early to judge the full impact of a new parking system. The council is seeking public feedback after updating machines in July. CEO